103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई 2026। श्रोताओं, इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का ये प्रसारण अब आरंभ होता है।

श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और

0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। दिन की बेहतरीन शुरुआत करने से पहले आइए साथियों वंदन अभिनंदन करें उस माटी का जिसका कण कण है पावन। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए देश वंदना।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए पेश है पंडित भीमसेन जोशी की आवाज में कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम के आज के संक में लीजिए पेश है अगला भक्ति गीत हरिओम शरण की आवाज में।

0: हाँ बेटा,
1: आप ये अपने अटैची क्यों जमा रहे हैं?
0: मैं 10 दिन के टूर पर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो लौटते हुए मेरे लिए जीन्स और टॉप जरूर लाना।
0: अरे ये तो मैं तुझे यहीं से दिलवा दूंगा।
1: आप जा कहाँ रहे हैं?
0: बेटा वो जगह दूर जंगलों में है, वहाँ हमारे यहाँ जैसे बाजार नहीं है।
1: ओ, तो पापा आपने एक जरूरी चीज तो रखी ही नहीं।
0: जरूरी चीज? अरे वो क्या?
1: अब भी लाती हूँ।
0: पता नहीं क्या ला रही है।
1: ये भी रख लीजिए।
0: अरे ट्रांजिस्टर, मेरी अच्छी बिटिया, ला दे मुझे।
2: घर से दूर भी अपनों के साथ, जब हो रेडियो पास।
3: श्रोताओं, इसके साथ ही आराधना कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है खेती की बात कार्यक्रम के अंतर्गत फल फूल और सब्जी उत्पादन में नई तकनीक और नवाचार, इस विषय पर जानकारी। वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का है, लीजिए सुनिए।
4: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। आप मन सुना था वा खेती के बात कार्यक्रम। आज ये कार्यक्रम में हमन बात करबो एक बहुते जरूरी और समय के मुताबिक विषय के ऊपर, जोन हमें फल फूल और सब्जी उत्पादन में नया तकनीक और नवाचार। आज के समय में किसान भाई बहनी मन अगर कम जमीन में घलो ज्यादा उत्पादन और बढ़िया आमदनी चाहत हवे तो नवा तकनीक और नवाचार ला अपना के बढ़िया कमाई कर सकत है और ये हर बहुत जरूरी हो गए है। तो चलो जाना था ये नवा तरीका मन के बारे में।

0: संगी हुआ, हमार देश में फल फूल और सब्जी के मांग दिनों दिन बढ़त जात है। ऐसन हमा किसान मन अगर आधुनिक तकनीक के उपयोग करही त उत्पादन के संगे संग गुणवत्ता और आमदनी खलो बढ़ सकत है। तो सबसे पहली बात करत हन उन्नत किस्म के बीज और रोपा के, त हमेशा भरोसा मन स्त्रोत ले प्रमाणित बीज या पौधा के उपयोग करना चाहिए। एकर से फसल मजबूत होते, बीमारी कम लगते और उत्पादन भी बढ़िया मिलते। दूसर महत्वपूर्ण बात है ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग। ड्रिप सिंचाई ले बूंद बूंद पानी सीधा पौधा के जड़ तक पहुंचते और एकर ले पानी के बचत भी होते और खातू घलो आसानी ले दे सकत हन। मल्चिंग के उपयोग ले जमीन के नमी बने रहते और खरपतवार कम उगते और फसल भी स्वस्थ रहते। अब बात करत हन संरक्षित खेती, जैसे कि पॉली हाउस और शेड नेट हाउस के। ये तकनीक ले मौसम के असर कम होते और किसान मन बेमौसम भी साग भाजी और फूल के खेती करके ज्यादा कीमत पा सकत हे। त संगवारी हो, आजकल नर्सरी प्रबंधन में घलो नवा तकनीक अपनाए जात हे। प्रो ट्रे में पौधा तैयार करे ले पौधा मजबूत बनते, रोपाई में नुकसान कम होते और फसल जल्दी तैयार होते। अब बात करत हन मृदा परीक्षण के। खेती करे के पहली अपन खेती के माटी के जांच जरूर करवाओ। माटी जांच के रिपोर्ट ले पता चलते कि खेत में कौन पोषक तत्व के कमी है और ओकर हिसाब से फिर खातू माटी डाले जाते। तक खर्चा घलो कम होते और उत्पादन भी बढ़ जाते। एक और जरूरी बात है संगी हुआ, वो है संतुलित पोषण प्रबंधन के। तो गोबर खातू, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद और रासायनिक खातू के संतुलित उपयोग करे ले जमीन के उर्वरा शक्ति बने रहते और सूक्ष्म पोषक तत्व के घलो जरूरत अनुसार उपयोग करना चाहिए। तो संगी हुआ, आज के समय में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन यानी IPM बहुत जरूरी हो गए। फेरोमोन ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप, जैविक कीटनाशक और लाभकारी जीव के उपयोग ले रासायनिक दवाई ऊपर निर्भरता कम हो जाते और लागत घलो घट जाते। तो साग भाजी और फल में ग्राफ्टिंग और डाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसन है तकनीक ले भी कम जमीन में ज्यादा उत्पादन मिला थे। ये तकनीक आमा, अमरूद माने बिही, लिमाऊ, पताल और भाटा जैसे फसल पर बहुत अधिक सफल साबित हो है। अब फूल के खेती में कट फ्लावर उत्पादन जैसे गोंदा हो गए, गुलाब हो गए, जरबेरा हो गए और रजनीगंधा के खेती ले किसान मन बढ़िया आमदनी कमावा थे। शादी ब्याह हो गए, पूजा पाठ हो गए, है ना, तो फूल के तो ये सब में बाजार में 12 महीना मांग बने रहते। अब बात करत हन डिजिटल तकनीक के। तो आज किसान मन मोबाइल के माध्यम ले मौसम के जानकारी, बाजार के भाव, खेत संबंधी सलाह और सरकारी योजना के जानकारी आसानी ले पा सकत है। एकर ले सही समय में सही निर्णय लेना आसान हो जाते। तसंगी हुआ, कटाई के बाद फसल के सही ग्रेडिंग, पैकिंग और भंडारण घलो बहुत जरूरी है भाई। बढ़िया पैकिंग ले बाजार में बढ़िया दाम मिलते और नुकसान कम होते। अगर किसान भाई मन समूह बना के सीधा बाजार या उपभोक्ता मन तक अपन उपज पहुँचाही त बिचौलिया मन के भूमिका कम हो जाते और किसान भाई मन सीधा ओकर लाभ मिलते और मन के आमदनी बढ़ते। आज जरूरत है कि किसान भाई बहनी मन परंपरागत खेती के संगे संग नवा तकनीक और नवा चाला अपना के धीरे धीरे छोटे स्तर ले शुरुआत करके अनुभव हासिल करें और सफल खेती के दिशा में आगे बढ़ें। आज के कार्यक्रम में हम जाने के फल फूल और साग भाजी के उत्पादन में नवा तकनीक और नवाचार अपना के कम लागत में बढ़िया उत्पादन और अधिक आमदनी हासिल करे जा सकत है। तो संगी हुआ, यही संदेशा के संग के ये खेती ला अपना के निश्चित रूप से खेती और लाभकारी बनही। आपन से विदा लेवा थन। आज के खेती के बात में अटके, कल नवा विषय के संग फिर उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती की बात कार्यक्रम के अंतर्गत फल फूल और सब्जी उत्पादन में नई तकनीक और नवाचार इस विषय पर जानकारी। वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और साथियों की, लीजिए सुनिए।

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

लीजिए, पेश है फ्लैगशिप पर आधारित नौविहान कार्यक्रम के अंतर्गत स्मार्ट सिटी मिशन पर केंद्रित आज की जानकारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और साथियों की। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं।

नौविहान कार्यक्रम के एक नए अंक में सभी सुनने वालों का स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, नौविहान कार्यक्रम के आज के इस सफर में सबसे पहले आइए समझते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन आखिर है क्या। तो 25 जून 2015 को शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन एक बेहद महत्वपूर्ण मुहिम की तरह उभर कर सामने आया और इसे एक अभिनव पहल का रूप दिया गया। इस मिशन की शुरुआत ज़रूरतमंदों को किफ़ायती दरों पर आवास, स्वच्छ जल और प्रदूषण रहित पर्यावरण देना तय किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी, सुव्यवस्थित और टिकाऊ बुनियादी ढांचे एवं कुशल नागरिक सेवाओं के माध्यम से 100 चुने हुए शहरों में निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर से बेहतरीन बनाना इसका मुख्य लक्ष्य तय किया गया। इस मिशन के तहत ग्रामीण और पिछड़े हुए नगरीय इलाकों में पर्याप्त जल आपूर्ति, निर्बाध गति से बिजली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित आम नागरिकों को स्वच्छता प्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनी। श्रोताओं, बताया जाता है कि इस मिशन का लक्ष्य कुशल सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को सहजता और सुलभता प्रदान करना भी है। स्मार्ट सिटी मिशन के जरिए ई गवर्नेंस और सुरक्षा व्यवस्था की ओर से जागरूकता लाकर जनजीवन को सुरक्षित बनाना बेहद ज़रूरी है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं मजबूती से अपने अधिकारों और प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाकर एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से किसी विशेष हिस्से जैसे पुराने शहर या किसी नए क्षेत्र को मॉडल के रूप में विकसित किया जाता है और फिर पूरे शहर में तकनीकी समाधानों जैसे स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र को लागू किया जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा समान रूप से वित्तीय पोषण भी किया जाता है। कुल मिलाकर लब्बोलुभाव ये है साथियों कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी बहुत सारी योजनाएं जन कल्याण के लिए संचालित की जाती हैं जिनका सही समय पर लाभ उठाकर हम और आप लाभान्वित हो सकते हैं और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम ई दफ्तरों और नगर निगम के कार्यालय सहित आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं से मिलकर इस विषय से संबंधित अधिक से अधिक तफसील में जानकारी प्राप्त करें और इस विषय से संबंधित पोर्टल पर जाकर सूचना और आवेदन पत्र भी दर्ज करवाएं और इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करें कि किस तरह से हम आसपास की दुनिया को सुंदर और बेहतर बना सकते हैं। तो आज की बातचीत का विषय था स्मार्ट सिटी मिशन। नौविहान कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज सुबह प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। श्रोताओं, आज सुबह 8:30 पर अमराई कार्यक्रम में कलाकार होंगे सुरेंद्र मधुकर, ज्योति चौहान, राम कुमार राजपूत, सुशीला ध्रुव और इनके साथी। 10:00 का समय होगा तुहर कोट हमर गीत कार्यक्रम का, प्रस्तुति होगी मानस तिवारी की। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद और 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण हमारे ही केंद्र से किया जाएगा। इसके अलावा आज शाम के मुख्य आकर्षणों में सबसे पहले आप सुनेंगे शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। 5:05 का समय होगा चित्रपट संगीत का। संध्या 6:20 और 7:00 आप ईमेल करें कि सुने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाएंगे। और आज रात्रि 8:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरि हरण के गाए हुए कुछ चुनिंदा गैर फिल्मी गीत। रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा की हम खुशबू बिखेरेंगे।

श्रोताओं, इसके अलावा आज शाम 5:35 पर युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत में पहले आप सुनेंगे वर्ल्ड जूनोसिस डे और पशुजन्य रोग दिवस पालतू पशुओं से संबंधित विषय पर सजीव चर्चा। इसके पश्चात इसी कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमिता क्रम काप लेंगे आनंद। संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय होगा दलहनी तिलहनी फसल के रकबाला बढ़ावा। आगे इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता जिसका विषय होगा कृषक उन्नति योजना धान के बदले अन्य फसल। इस विषय से संबंधित जानकारी देंगी कृषि महाविद्यालय बिलासपुर की सहायक संचालक श्रीमती नीलिमा रमन और भेंटकर्ता होंगी मेहंगू भैया। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ।

श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचारों के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे आकाशवाणी दिल्ली की ओर।

0: एशिया देशस्य नव निर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुभियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। संधेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परम् असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्ता नगरे प्रधानमंत्री सुविशालं भारतीय प्रवासी समुदायं संबोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदेहल्यां आयोजितं सहकारिता मंत्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवस समारोहं अलंकरिष्यति। मंत्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रिय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगल प्रसंगे श्री शाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु द्वात्रिंशदधिक द्विशत अन्न संग्रह भण्डारानां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनं, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः ट्रिशु कल्चर इति सुविधायै भूमि पूजनम्, राष्ट्रिय सहकारी डेटाबेस NCD 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रायां श्रद्धालूनां महत्सम्मर्धः दृश्यते। यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेषु एव 650,000-तोप्यधिकाः जनाः पवित्रगुहामन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यदर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीय दिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटन दिवसे च 12,000-तोप्यधिकाः तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्ड चक्रवादवायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु, हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्णरूपेण वृष्टिः सम्भाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेवी वोचेस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे

0: और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के इस वक्त 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का अनुरागी नमस्कार। श्रोताओं, लोकप्रिय शायर स्वप्निल तिवारी का लिखा एक बेहतरीन शेर है कि सोचा ही न था गूंज सी मच जाएगी एक दिन, सोचा ही न था गूंज सी मच जाएगी एक दिन, मैंने तो यूं ही नाम पुकारा था तुम्हारा। जी हाँ, कुछ लोग अपनी अनुपस्थिति में भी इतनी ऊर्जा और ताजगी के साथ हमारी दुनिया में मौजूद रहते हैं कि उनके नाम को स्मरण करते ही उनकी संपूर्ण छवि उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व के साथ हमारे आसपास के फलक में अनुगुंजित होने लगती है। वैसे देश विदेश और हमारे समाज में ऐसे बहुतेरे व्यक्ति हुए हैं जो अपनी विशिष्ट पहचान के लिए, अपने गुणों के लिए, अपनी उपलब्धियों और अनगिनत योगदान और समर्पणों के लिए हमेशा हमारे रोल मॉडल बने रहते हैं। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति और इतिहास में देश विदेश के लिए अपना संपूर्ण समर्पण और शहादत देने वाले ऐसे ही वीरों एवं महापुरुषों को किसी न किसी उपाधि से सदैव सम्मानित किया जाता रहा है। फिर वो महात्मा हो, सर हो, या फिर भारत रत्न जैसी उपाधि ही क्यों न हो, ये उपाधियां उनके नाम के साथ ही उनके अभूतपूर्व कार्यों को भी सार्थक बनाती है। ऐसी ही एक उपाधि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मान देने और समूचे राष्ट्र को एकता एवं भाईचारे के बंधन में बांधे रखने के उद्देश्य से उन्हें दी गई थी, जो कि राष्ट्रपिता के नाम से लोकप्रिय एवं सर्वसम्मति से स्वीकारी गई। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए वर्तमान समय में भी राष्ट्रपिता की उपाधि या बोलचाल की भाषा में इस संबोधन का प्रयोग भावनात्मक अभिव्यक्ति, उनकी पहचान और उनके ही अस्तित्व का अभिन्न अंग बनकर हमें प्रेरित किया करती है। लेकिन राष्ट्रपिता के नाम से उन्हें संबोधित किए जाने के पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है, जिसका जिक्र आज हम आपसे करना चाहेंगे। श्रोताओं, हम आपको बतलाते चलें कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सार्वजनिक उद्बोधन सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। वो दिन था 6 जुलाई, जी हाँ, यानी आज ही का दिन 1944 को सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण के माध्यम से उन्होंने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और आज़ाद हिंद फौज रेडियो के लिए उनका आशीर्वाद भी मांगा। इस घटना के बहुत बाद में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। इसके बाद ये उपाधि भारत की राष्ट्रीय पहचान बन गई। इस घटना को याद करते हुए आज हम कार्यक्रम की शुरुआत में ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, चाचा नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृतियों को करते हैं प्रतिपल नमन वंदन। और इस वक्त सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।

की आज की यातायात व्यवस्था अर्थात ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे, आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी बिलासपुर की सभी सड़कों, सभी चौक चौराहों से लेकर प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग जैसी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहन भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन सड़कों से बिलासपुर जिले का सभी स्थानों से यातायात संपर्क बना हुआ है, तब यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, सड़कों में सभी को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो, इस दिशा में शासन स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षित यातायात के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे, किंतु दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं,

0: दिखाई दे रहे हैं। इन सड़कों से बिलासपुर जिले का सभी स्थानों से यातायात संपर्क बना हुआ है। तब यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, सड़कों में सभी को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो, इस दिशा में शासन स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षित यातायात के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे, किंतु दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। फिर भी विडंबना इस बात की है कि लोग इससे बचने के लिए यातायात के सुरक्षा मानकों की उपेक्षा कर अंधविश्वास या टोटके आदि पर विश्वास करते हुए इसका सहारा लेना चाहते हैं। तमाम वाहन चालक तमाम प्रकार के वाहनों से ठसाठस भरी सड़क में उपेक्षापूर्ण एवं बड़े ही उतावलेपन से खूनी रफ्तार में अपना वाहन चलाते नहीं भगाते हैं और सड़क में सुरक्षा के लिए अपने वाहन में नींबू मिर्ची धागे में पिरोकर वाहन में लटकाए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार मालवाहक एवं यात्री वाहक वाहनों में ओवरलोड के लोग आदि हो गए हैं। क्षमता से अधिक माल से भरे वाहन में चालक का पर्याप्त नियंत्रण नहीं रहता, वाहन असंतुलित रहता है। वैसे ही यात्री बसों में सीट के अलावा बोनट में भी चालक की ओर पैर कर सवारी बैठी होती है, जिससे चालक को वाहन चलाने में असुविधा होती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, किंतु सुरक्षा के लिए वाहन के सामने जूता या चप्पल लटका कर रखते हैं। इतना ही नहीं, तमाम वाहन चालकों की नजरें शराब के नशे में झुकते जाती हैं। हर पल खतरा मंडराते रहता है, जबकि वाहन में लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह। दोस्तों, दुर्घटना से ये टोटके नहीं सावधानियां बचाती है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे आज का ट्रैफिक अपडेट, और इस ट्रैफिक अपडेट को सुनने के पश्चात चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में थोड़ा सा और आगे। प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई यानी आज के दिन को विश्व जूनोसिस डे के रूप में व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि प्रतिवर्ष कुत्ते या बंदरों के काटने पर अलग अलग तरह के संक्रमणों का सामना आम इंसान को अक्सर करना पड़ता है। जानवरों से फैलने वाली किसी भी विशिष्ट बीमारी के लक्षणों और बचाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने और जानवरों के संपर्क में आने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोने, समय पर टीका लगवाने और सड़क पर घूमते हुए या पालतू जानवरों से सुरक्षित रहने के संबंध में बहुत छोटी छोटी सी ऐसी जानकारियां हैं जो साझा करने की समय समय पर आवश्यकता है, और आज का दिन इन्हीं जानकारियों को एक दूसरे से साझा करने का बहुत ही सुंदर दिन है। रेबीज, कोविड-19, बर्ड फ्लू और इबोला जैसी लगभग 60% बीमारियां केवल असुरक्षित ढंग से जानवरों के संपर्क में आने से अनजाने ही फैल जाती है, जिसका निवारण भी आवश्यक है। वैसे आज के दिन को महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के पहले टीके की सफलतम खोज और टीका लगाने की याद के रूप में भी बहुत ही सार्वजनिक स्तर पर, खुशहाल तौर पर और व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। 6 जुलाई 1885 को फ्रेंच रसायन शास्त्री लुई पाश्चर ने रेबीज से पीड़ित व्यक्ति के दिमाग में सूजन पैदा करने वाले और पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले संक्रमित कीटाणुओं को रोकने के उद्देश्य से इस टीके की खोज की, और उसके इस आविष्कार के परिणाम स्वरूप जनमानस को बेहद लाभ पहुंचा, जिससे कि इस रोग से जूझते असंख्य लोगों को राहत मिली, तसल्ली मिली और उन्हें ये विश्वास

भी हुआ किन रोगों से मुक्ति मिल सकती है। तो हमारे आसपास की दुनिया में बहुतेरे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसे कुछ अभूतपूर्व कार्य किए जिनका लाभ आज भी हम उठा रहे हैं। वैसे श्रोताओं, इन दिनों मौसम में थोड़ी सी नरमाहट आ चुकी है जिसका अनुभव आप और हम दोनों ही महसूस कर पा रहे हैं। वाकई भीषण गर्मी के बाद बूंदों की झड़ियों का यूं पिछले कई घंटों से लगातार लगना हमारे मन को, जीवन को, खेत खलिहान को तृप्त कर रही है। ऐसे में मानसून की फुहारों के साथ ही हम पर अधिक से अधिक अपने आसपास पौधों के रोपण की जिम्मेदारी भी निश्चित तौर पर बढ़ गई है। हरियाली न केवल आंखों को अच्छी लगती है बल्कि हमारे दिल को, हृदय को भी तो सुकून पहुंचाती है ना। तो ज़रूरी ये है कि इस मौसम में हम खूब सारे पौधे खुली ज़मीन पर रोपें और उनकी देखभाल भी करें ताकि प्रकृति के समक्ष हम अपनी थोड़ी सी सकारात्मकता दर्ज कर सकें और इन खूबसूरत बूंदों का आनंद उठा सकें। आनंद की जब बात आती है तो भारतीय संस्कृति का ऐसा कोई पर्व, ऐसा कोई दिवस, ऐसा कोई महोत्सव, ऐसा कोई मन का सुख नहीं होता जिसे हम गीत संगीत के माध्यम से व्यक्त ना करें। तो चलिए इस वक्त सुनते हैं। लरजती इन बूंदों से छमाछम बरसती एक बेहद प्यारी सी मधुर सी तान इस गीत के माध्यम से।

श्रोताओं, वैसे तो हर सुबह दिन नहीं बदलता, बल्कि वो इंसान ही बदल जाता है जो कल तक गमजदा हो, दुख से घिरा हो, अभावों से परिपूर्ण हो या फिर अवसाद से घिरा हुआ हो। इसलिए तो कहते हैं कि सूरज का उगना ही केवल दिन का बदलना नहीं होता, विचारों को बदलते ही हमारे आसपास का संपूर्ण वातावरण ही बदल जाता है। कुछ लोग शिकायतों के साथ सुबह उठते हैं और कुछ इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन हमारा है। आशाएं हमारी हैं, सपने हमारे हैं, हौसले हमारे हैं। अब अगर देश की बात की जाए तो देश के लिए साथियों, हम तो यही कहते हैं कि कोई नगमा कौमी एकता के नाम का भी अब गुनगुनाया जाए, कोई नगमा कौमी एकता के नाम का भी अब गुनगुनाया

नया जाए, जुबां पर भाईचारे की मिठास को अब सजाया जाए। वतन परस्ती किसी एक के बस की बात नहीं साथियों, आओ परस्पर मिलजुल कर शाने तिरंगा का रोशन मुस्तकबिल संवारा जाए। ये भावना इसलिए आज आप तक पहुंचा रहे हैं कि देश की सुरक्षा, देश की गतिविधि, राष्ट्र का विकास हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे छोटे छोटे से दायित्व हमारे राष्ट्र को गौरव प्रदान करते हैं। वैसे आज का दिन बहुत सारी मिलीजुली ऐतिहासिक घटनाओं के जरिए भी हमको परिपूर्ण, संपन्न और एक अलग तरह की खुशी दे रहा है। 6 जुलाई 1901 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में एक संभ्रांत परिवार में जन्म हुआ भारत के महान शिक्षाविद, विधिवेत्ता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व कार्य किया ही, बल्कि अपने समय में इन्होंने लोगों को पढ़ने लिखने और जागरूक होकर अपने देश की समस्याओं पर तनिक ठहर कर सोचने समझने की भी सलाहियत प्रदान की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। संसद में अपने भाषण के दौरान भी उन्होंने धारा 370 को समाप्त करने की बात को लेकर आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कश्मीर को लेकर एक नया नारा दिया, नहीं चलेगा एक देश में दो विधान, नहीं चलेगा एक देश में दो विधान, दो प्रधान दो निशान। अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया, या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त करूंगा, या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा, या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। ये वक्तव्य थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, आवाम के नाम, अपने देश के भाई बहनों के नाम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्त्रियों को शिक्षित, सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में अद्वितीय योगदान दिया है। ऐसे समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और महान विचारक को उनके जन्मदिन पर हम करते हैं शत शत नमन। और इसी क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को पढ़ते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर सामने आए उस दौर में जगजीवन राम, इन्होंने समाज में फैली छुआछूत की प्रथा को बहुत कड़े रूप में इसका पुरजोर विरोध किया और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ 1935 में एक लीग की स्थापना भी की और तत्कालीन सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनकर अपना योगदान श्रम मंत्रालय को दिया। आज जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि है, उनके जागरूकता और उच्च संवेदनशीलता के लिए हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, प्रतिपल नमन करते हैं। हमारे वीरों की धरती हमेशा अमर रहे, हमारा दिन अच्छा बने, हम सार्थक काम करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब दीजिए विदा, आपकी अपनी अंतरा को नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम यादों के छरोखे से।

श्रोताओं, यादों के गलियारों से हम चुनकर लाए हैं वो बेश कीमती मोती जिनकी चमक कभी कम नहीं हो सकती। जी हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल स्वर में गूंज उठी शहनाई फिल्म का गीत। भरत व्यास के लिखे बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। लीजिए, पेश है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में धूल का फूल फिल्म का गीत। रचना साहिर की है और संगीत एन दत्ता का।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, यादों के झरोखे से इस सफर का अगला बेश कीमती तराना हम आपकी नजर कर रहे हैं। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में नूर जहां फिल्म से, रचना शकील बदायूनी की लिखी हुई है और धुन बनाई है रोशन ने। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों के साथ हम लगातार बने हुए हैं आपके साथ और इस वक्त आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम यादों के छरोखे से। जी हाँ, इस कार्यक्रम में लीजिए अब पेश है लता मंगेशकर की आवाज़ में लव इन टोक्यो फिल्म का ये गीत। वो लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत से सवारा है इस गीत को शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, आज की सुबह रिमझिम फुहारों से भीगी हुई एक बेहतरीन सी सुहानी सुबह है। आज मौसम में एक अलग तरह का नूर है। आज कोहरे की रंगत कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। ऐसे खुशनुमा मौसम में एक और प्यारा सा गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल स्वर में दिल तेरा दीवाना फिल्म से। वो लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत उषा खन्ना का है।

श्रोताओं, यादों के झरोखे से इस कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए, सुनिए तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ों में छाया फिल्म से। शब्दों के मोती पिरोए हैं रजिंदर किशन ने और संगीत से सवारा है इस गीत को सलील चौधरी ने। लीजिए सुनिए।

तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ों में छाया फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इस अंतिम गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। चलते चलते कार्यक्रम संबंधी एक जानकारी हम आपको देते चलें। श्रोताओं, आज रात 8 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम चल पढ़ेला जाबो हमारे ही स्टूडियो से। इस कार्यक्रम का आनंद आप उठाएंगे। इस वक्त सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचारों के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे आकाशवाणी दिल्ली की ओर।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू।

0: रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सीमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।

0: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
2: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
4: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन

0: अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी

0: अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। इंडिया टू चेयर अंगटाड्स 9th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन जिनीवा। India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffer stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
3: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state

0: साथियों, अमराई कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेंद्र मधुकर, ज्योति चौहान, राम कुमार राजपूत और सुशीला ध्रुव के साथ ही साथियों की आवाज़ों में कुछ मीठे मीठे से लोकगीत। तो कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेंद्र मधुकर और ज्योति चौहान की आवाज़ में, लीजिए सुनिए।
1: छत्तीसगढ़

अमराई कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आपने सुना सुरेंद्र मधुकर और ज्योति चौहान की आवाज़ों में। लीजिए पेश है रामकुमार राजपूत और सुशीला ध्रुव के साथ उनके साथियों की आवाज़ों में कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, अमराई कार्यक्रम के आज के संक में हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेंद्र मधुकर, ज्योति चौहान, रामकुमार राजपूत और सुशीला ध्रुव की आवाज़ों में कुछ पारंपरिक लोकगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत, ज्योति चौहान और सुरेंद्र मधुकर की आवाज़ में।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: श्रोताओं कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए राम कुमार राजपूत और सुशीला ध्रुव की आवाज में अमराई कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, अमराई कार्यक्रम के आज के संक में आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मधुकर, ज्योति चौहान, रामकुमार राजपूत और सुशीला ध्रुव की आवाज में कुछ मीठे मीठे से लोकगीत। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत सुरेंद्र मधुकर और ज्योति चौहान की आवाज में।

श्रोताओं, ये है हमारी और आपकी आकाशवाणी। सुबह के 9 बजे हैं। अब से लेकर सुबह के 10 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर स्वागत आप सभी का। यह है राजनीति फिल्म का गीत। मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजें। प्रीतम का संगीत, इरशाद कामिल ने बोल लिखे।

राजनीति फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजें थी, इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आज 6 जुलाई है, आज वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जा रहा है। हर वर्ष ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसे मनाने का ये उद्देश्य उन बीमारियों के प्रति लोगों को सचेत करना जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि 6 जुलाई को लुई पाश्चर ने रेबीज के टीकेकरण का पहला सफल प्रयोग किया था। जूनोटिक रोगों के उदाहरण है रेबीज, बर्ड फ्लू, कोविड 19 और आदि आदि बीमारियां, जिसकी उत्पत्ति को लेकर अभी भी वैज्ञानिक का अध्ययन जारी है। इससे बचाव के उपाय हैं पालतू पशुओं का समय समय पर टीकाकरण, सुरक्षित भोजन और बीमार पशुओं के तुरंत जांच कराना। विश्व जूनोसिस दिवस हमें ये याद दिलाता है कि पशुओं से फैलने वाले रोगों से हम बचे रहें, स्वच्छता का पूरा ध्यान दें, समय समय पर टीकाकरण बेहद जरूरी है और सचेत रहें हमेशा।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन, सचेत टंडन के आवाजों में ये गीत आपने सुना। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था और सचेत टंडन, परंपरा टंडन ने मिलकर संगीत तैयार किया था। चित्रलोक कार्यक्रम आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपको गीत सुनवाएंगे।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपका ब्रेक के बाद फिर स्वागत।
1: मॉडर्न दुनिया, मॉडर्न जमाना, भूल जाओ मर्दों किस्सा पुराना। हिटलर शाही अब न चलेगी, दाल तुम्हारी।

सब कुशल मंगल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू कक्कर और वंदना सक्सेना की आवाज़ें थीं। समीर अंजान ने इस गीत को लिखा था। साथियों, हरे भरे लहलहाते पेड़ पौधे, सुंदर बहती पुरवैया, ये सभी कितने सुंदर लगते हैं ना। और इन पेड़ पौधों की छाँव में बैठने और इन्हें निहारने में बड़ा अच्छा लगता है। बैठकर देखिए साथियों, इन दिनों 1 से 7 तारीख तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वन महोत्सव सप्ताह हमें प्रकृति के प्रति अपने जिम्मेदारी का एहसास कराता है। और इस वर्ष केवल पौधा ही न लगाएं, बल्कि उसके संरक्षण का भी संकल्प लें, यानी उनके देखभाल के, उन्हें सींचना, उन्हें संवारना, उन्हें निहारना, सब कुछ करते रहिए। पेड़ स्वच्छ हवा, शीतल छाया और आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित भविष्य है। तो आइए हरियाली बढ़ाएं और धरती को मुस्कुराने का अवसर प्रदान करें।

लापता लेडीज फिल्म का ये गीत आपको श्रेया घोषाल की आवाज में सुनवा रहे हैं। स्वानंद किरकिरे गीतकार हैं और राम संपत संगीतकार।

धीमे धीमे चले पुरवैया लापता लेडीज फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत ने इस गीत को संगीत से संवारा था।

एनिमी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आवाजें ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन और रीना गिलबर्ट और यशिका सिक्का की थी। अब इसी गीत के साथ ही सविता सिंह को आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सकुशल, स्वस्थ और सानंद रहिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार प्रोग्राम सुनिए थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं दो दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षत कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहाँ पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माता जी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन। अब मेरे पिताजी और माताजी वहाँ काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रहे थे। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
0: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
1: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में।

0: परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पूना में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना आशीष सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं अपने डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो आशीष सेन साहब एक दिन मिल गए, और मुझे याद आया कि तो मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, हम 24 दिन में ख़त्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था, और उस ज़माने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ़ नहीं था ज़्यादा, डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौटकर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादा मुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तो गलत जगह पे पॉज लेता है, जी गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर आशीष सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोलता है लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो, और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूँ मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई। मनोखी रात

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस जमाने में भी ज्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी। मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज्यादा आसान है। पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे, वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है। जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था, वो प्लेस किया करते थे उस जमाने में, और जो उससे मेरा तलफ़ुज़

ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज़ ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूँ मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूँ।

श्रोताओं, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार रायपुर से रिले किए जाएंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। रायपुर में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले सफलतापूर्वक लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी प्राप्त सुझावों को शीघ्र नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के रूप में लागू किया जाएगा। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकास परक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत निम्न दाब घरेलू बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है। पावर कंपनी ने पात्र उपभोक्ताओं से 30 सितंबर तक योजना का लाभ लेने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि एक महीने बढ़ाने की घोषणा की थी। रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में 200 सीटर छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार तथा अन्य आवासीय परिसरों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन आज किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता

0: करेंगे। नए छात्रावास और आवासीय परिसरों के निर्माण से विद्यार्थियों और चिकित्सकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं कैंसर भवन के विस्तार से प्रदेश में कैंसर उपचार सेवाएं और मजबूत होंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कल विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई को उनके गृहग्राम गनियारी में श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि गनियारी के शासकीय हाई हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तीजनबाई ने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इस बीच कल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए रासायनिक खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। 30 जून तक 13,16,000 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरकों का भंडारण किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। जुलाई में छत्तीसगढ़ को 46,500 टन डीएपी की अतिरिक्त आपूर्ति भी मिली है। अब तक किसानों को 7,27,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद वितरित की जा चुकी है, जबकि लगभग 5,89,000 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडार अभी भी उपलब्ध है। सरकार ने कहा है कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के इस वक्त 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। आज की प्रस्तुति है मानस तिवारी की। लीजिए सुनिए।

0: आवा शुरू करी थन कार्यक्रम जेखर नाव है तुम्हार गोठ हमर गीत।
1: हेलो,
0: आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम तुम्हार गोठ हमर गीत ले हम बोला थन।
1: नमस्कार, मैं मुकेश स्वर्णकार गोठियावत हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से।
0: का हाल चाल है आपके, सुनावा।
1: हाल चाल बढ़िया है, यहाँ पानी गिरत है। मैं गुरु जी हूँ, पहले पांचवी तक के लड़का मतलब पढ़ा हूँ।
0: अच्छा, कहाँ है पद स्थापना आपके?
1: नंदन वन हथबंध मैं महादेव घाट अमलेश्वर में रहता हूँ, रहने वाला।
0: तो अभी अमलेश्वर महा?
1: कई बार मैं फोन लगा के कोशिश करे हूँ, लेकिन सर दो तीन रविवार के मोर लगवे नहीं करी, जैसे आज लगी से।
0: चलो, बहुत अच्छा लगी इसकी आज आपके फोन लग गए। का बात करे बर आप मन फोन लगाए है तेला गोठियावा मुकेश?
1: का है कि बहुत समय से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही से, कल इंद्र देव मस्त पानी बरसा ही से।
0: पानी गिरे ले मौसम थोड़ा ठंडा हुईस और हमन ला राहत मिलीस। संगे संग किसानी के काम बूता जेन है तेन पानी के अगोरा में रुके रहीस, वो काम बूता मन गति पकड़ ली।
1: हाँ, काम वो तभी बढ़िया होते हैं।
0: कई जगह भी पानी की कमी है, तो हम उम्मीद करत हन कि उन्हों इंद्रदेव प्रसन्न हो ही और उनको खेतला भर दी। चला, बहुत अच्छा लगी मुकेश स्वर्णकार जी आप ले गोट बात करके। आप मन हमने फोन लगाया, आप मन के बहुत बहुत

0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद। हेलो,
0: तुम्हर गोठ हमर गीत कार्यक्रम ले हम बोलत हन।
1: कतिया पारा जूना बिलासपुर ले सुशील देवांगन बेला सूर्य बोलत हूँ।
0: जय हो सुशील भैया, का हाल चाल है सुनावा?
1: सब बने बने है, मस्त हम, स्वस्थ हम, आशीर्वाद है। ये पानी गिरी से ना, धीरे धीरे गिरी से तो जी और जुड़ाई से, नहीं तो गर्मी में तो अतका आफत हो गए रहे। का पूछिया, ऐसे लगा कैसे पानी गिरी तो जी शांत हो ही।
0: हमर संग संग किसान भाई मन जेन है उमन पानी के अगोरा म रही, उमन ला भी बहुत राहत मिली, सो खेती किसानी के काम भी अब गति पकड़ लिए है।
1: कहा है तिवारी जी, अभी किसान मन अतका कन परेशान हो गए हैं, पानी गिरी के नहीं, पानी गिरी के नहीं। हरा भरा गंज खेत है, हरा भरा गंज पेड़ है, खेत में घर बनाओ था, मेड़ के पेड़ मन का काटा था, तो ये हमरे गलती है तिवारी जी। और वो का भुगतान का तो हम ही का तो भुगते न पड़ेगी।
0: अभी अच्छा समय है कि हम पौधा रोपण करी और अपन आसपास खेत के मेड़ मा तीर तखार मा पौधा रोपण करके हरा भरा सुंदर वातावरण।
1: हाँ, ये सही बात बताया आप। और हमारे श्रोता भाई मन का भी जागरूक होना चाहिए। यदि बरसात शुरू हो गए, कम से कम एक एक थी पेड़ का लगाही ना, तो लाखों पेड़ है तो तैयार हो जाएगी तिवारी जी। और ये जतका कन गर्मी हमन झेला था ना, आने वाला समय में ना हमारे लड़का मन का इतना नहीं करेल पड़ी, और जागरूक हो वो।
0: सुशील भैया, बहुत अच्छा लगी आपसे गोट बात करके। आप मन हमला फोन लगाए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। अही गोट बात के संग आवा सुनी दुखीराम मरकाम और उषा ओरकेरा के स्वर मा ए गुरतुर गीतला।

0: हेलो,
1: तुम्हार गो ठमर गीत कार्यक्रम ले हम बोलत हन।
0: जय राम भैया। रोशन जमन भैया भी लगल ले।
1: का हाल चाल है रोशन भैया, सुनावा।
0: बस बढ़िया है भैया, पानी वानी गिरत है 2 दिन हो गए लगातार। हाँ बढ़िया है, मौसम मस्त है अभी
1: तो। अभी मौसम ठंडा हो गए और खेती किसानी के काम जोर पकड़ ली, पानी गिरे ले संगे संग। रोशन भैया, ये समय पौधा रोपण करे के अच्छा समय है।
0: हाँ भैया,
1: है ना। और जौन हिसाब से गर्मी पड़ी से और पानी के किल्लत होते और पानी गिरे में भी अबेर हो,

0: ओला देखत हुए हमन ला चाही कि हम अपन आस पास पेड़ पौधा लगाई ओकर जतन करी अपन आस पास के जगह ला खेत ला तीर तखार ला हरियर बनाए।
1: हाँ भैया। हाँ।
0: और रोशन भैया अभी का चलत है आप मन
1: बस भैया रेडियो सुनत हवा अपन काम करत करत तीन चार हफ्ते तक नहीं लगा रहे हैं फोन लगाए तो लग गिस
0: नहीं बहुत अच्छा लगीस। बुनाई वाला काम भी चलत है आप मन के।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: और बाहर जात रहा जम्मू कति
1: जात भैया तीन सालों घर है बुनाई वाला काम है कहीं हो जाते कमाई से नहीं जाता बाहर।
0: बहुत अच्छा बात।

0: और बाहर जात रहा जम्मू कती
1: जात भैया 3 साल घर है बुनाई वाला काम है हो जाते कमाई नहीं जाते बाहर।
0: बहुत अच्छा बात है आप अपन श्रम करके इहे अपन गुजार बसर कर। बहुत अच्छा लगी रोशन भैया आप ले गोट बात करके आप मन हमला फोन लगा आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया धन्यवाद।
0: आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम तुम्हर गोट हमर गीत ले हम बोलत हन।
2: भैया नमस्कार गा।
0: नमस्कार।
2: योगेश जांगड़े बोलत हन भैया सिरवा बांधा बेमेतरा ले।
0: का हाल चाल है योगेश भैया आपके गांव सिरवा बांधा के सुनावा।
2: बढ़िया हन भैया ये देख तो पानी भी गिरल धर ली पहली परेशान होत रहे गिरबे नहीं करत है कही के
0: थोड़ा देरी हो है पानी आए मैं इसे मौका।
2: हाँ 15-20 दिन थोड़ा से देरी हो गया है भैया खेती बाड़ी काम में घलो।
0: तो अभी जैसे आप बतावा था कि आपके गांव के बढ़िया पानी आ गए तो खेती किसानी के काम के का स्थिति है भैया।
2: शुरू करत रहे भैया पानी ज्यादा गिर दे है खेत डोली खारमन भरेल धर ले रही से तो 2-4 दिन अभी थोड़ा समय लगी।
0: अच्छा पानी उतर ही तब काम शुरू हुआ है।
2: हाँ।
0: कौन वाला धान बोता भैया आप मन।
2: अब हमारे यहाँ तो सरना वो महमाया ज्यादा डला थे भैया हमन तो ओनारी करते हैं। हाँ कई जन रोपा घलो लगाते। हाँ अब हम तो बहुत दिन से जुड़े हैं भैया 12-13 साल होगी सही। और सुने पर तो बहुत से कार्यक्रम सुनते लेकिन कौन इन कार्यक्रम में ज्यादा मन लगा के सुनते हैं।
0: कौन इन कार्यक्रम में आप मन के विचार है वो औ श्रोता मन तक आसानी से पहुंच जाते
2: है।
0: हाँ। ना बहुत अच्छा लगी योगेश भैया आपसे गोट बात करके आप मन हमला फोन लगाया आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अही गोट बात के संग आवा सुनी एक किसानी गीत ला जेला स्वर देहे है भागवत सप्रे।

0: हाँ, मैं बागबहार रसिक बोला था, पन्नालाल सेन।
1: का हाल चाल है पन्नालाल भैया, सुनावा।
0: हाँ, सब बढ़िया है। धान वान खेती किसानी चला थे सर। सर्विस में हूँ, जिला सहकारी बैंक में सुपरवाइजर हूँ सर।
1: कहाँ है पोस्टिंग आपके?
0: पोस्टिंग और बागबहार में है सर।
1: अच्छा,
0: गुटापाली है सर, वहाँ चंडी माता विराजे है। वो चंडी माता, हाँ, वहाँ रोज के शाम के भालू है, वो आरती समय आते।
1: कतका जुआर होते आरती? वहाँ
0: आरती 7 बजे होते सर।
1: कैठी भालू आते वहाँ ले?
0: तीन, एक ओकर माँ है और 2 बच्चे है, 3 भालू आते सर।
1: ये बागबहरा ले कितना दूर पड़ते?
0: 5 किलोमीटर है सर।
1: अच्छा,
0: तीर्थ स्थान एक और है खल्लारी माता। हाँ, वो भी है सर, वो भी 5 किलोमीटर है बागबहरा से। एक आध बार माता के दर्शन पर आओ।
1: बिल्कुल भैया, जरूर आओ। और पन्नालाल भैया, वहाँ खेती किसानी के का स्थिति है?
0: खेती किसानी अब बिल्कुल रोपा वगैरह के तैयारी चला सर। आज तो जो पानी गिरा थे, अब बिल्कुल अब खेती किसानी में लग जाए किसान मन। हाँ, पानी के देरी भी आज पानी गिरा सर।
1: आप मन के काम जेन है वो समय पे पूरा हो जाए, बहुत अच्छा उत्पादन हो। पन्नालाल भैया, आप मन हमला फोन लगाए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी, धन्यवाद।
1: तुम्हार गोठ हमारे गीत कार्यक्रम ले हम बोला थन।
2: मानस तिवारी भाई साहब ला हमार वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम भैया?
2: वंदे मातरम सर, वंदे मातरम।
1: रामचंद काफिर भाई बोला था ऐसे लगा
2: था। वाह सर, वाह सर, एकदम भगवान बरोबर पहचान है सर।
1: सुनावा रामचंद भैया।
2: बस बरसात के मौसम आ गए, झमाझम यहाँ तो धमतरी में बारिश होते भैया।
1: गर्मी ले भी राहत मिलीस और खेती किसानी की काम भी जोर पकड़ लीस?
2: हाँ भैया, खेती किसानी पर तो बहुत ही अमृत है। अभी जो पानी बरसात गिरी तो दिवाली कुन आते आते बढ़िया फसल के लिए बढ़िया है।
1: सही बात है। और हमर अंचल माँ कृषि जैन है वो बहुत महत्व रखते हरेक के जीवन।
2: हाँ, हाँ।
1: रामचंद भैया, आप कौन कौन कार्यक्रम हमर पसंद करता हमर केंद्र के?
2: सभी प्रोग्राम पसंद करते हैं। आप जो रजनीगंधा पेश करते हो बढ़िया बना के, शेरो शायरी डायलॉग बोल के पेश करते हैं, वो अति उत्तम लगते है। और सभी प्रोग्राम में यानी ईमेल की गूंज हो गया, फरमाइशी माटी गीत और जो अमृत धारा है, यानी सभी सुनते हैं। युवाणी हो गया, महिला जगत हो गया, फोन इन प्रोग्राम हो गया। अब ऐसे है कि हमन तो जुन्ना श्रोता है ना, हमला तो रेडियो के जन्म घुट्टी पुलाई हुए हैं। अगर एक चीज ला हाथ गोड़ लगनी चलावो तो ऐसे लगे कि कोई प्रोग्राम लगनी सुना था, इसलिए सब प्रोग्राम हमारे बल शरीर के महत्वपूर्ण अंग है।
1: बहुत बढ़िया
2: बात है। चिंतन है, हमें भी चिंता हट जाते सर। बड़े के बढ़िया भजन वगैरह सुनो जो आप मन पेश करते, आराधना शरीर के अंग है एक प्रकार से हमारा आकाशवाणी बिलासपुर जो है।
1: बहुत सही बात कहे हो
2: रामचंद्र। तो कोयला नींद कर सकन।
1: सभी के अलग अलग महत्व है और अपन अपन उपयोगिता और सार्थकता है।
2: जी जी,
1: है ना। बहुत अच्छा लगी रामचंद्र भैया आप ले कोट बात करके, आप मन हमारा फोन लगाए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओके सर, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
1: वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आवाज सुनी रामायण वस्त्रकार और अनुपमा मिश्रा के स्वर में एक गुरतुर गीतला।

कार्यक्रम निर्माण मा तकनीकी सहयोग दिहिन गौरी शंकर कौशिक, कार्यक्रम संयोजन करिन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और एकरे संग दया मयाला अंतस्मा राग के कार्यक्रम समाप्त करे के अनुमति देवा मानस तिवारी ला जय जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। आज की प्रस्तुति थी मानस तिवारी की। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के इस वक्त 10:30 हुए हैं। लीजिए, पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए पेश है उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से। रचना मजरू की है और संगीत जतिन ललित का। इस गीत के लिए जिन साथियों ने फरमाइश लिख भेजी है उनके नाम हैं रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, प्रियंका, पूजा, लिल्लू, ऋतु, ऋषभ सिंह। शांतिनगर भाटापारा से रमज़ान खान, सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज अल्फेज खान, सादिया खान, हजरुन निशा। बिल्हा से शेख नासिर और महजबीन बानो। बालोद से हमारे साथी हैं शिवकुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष। और डोंडी बालोद से नमित कुमार गौतम, पीहू, प्रियंका, नीतू और मुरली गौतम। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू ने भी इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है। लाहौद से हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर कुमार, राजकुमारी पटेल। दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी, प्रीतम कुमार। पोड़ी लाफा से विद्यानंद, त्रिवेणी, रानी, बबली, सुमन, मंटू, मिष्टी, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्णा, अंशु साहू। सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। धमतरी से इस गीत की फरमाइश भेजी है रामचंद्र माखीजा, सविता, स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार और इनका पूरा माखीजा कुटुंब। तो इनकी पसंद पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से।

श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, पेश हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर के युगल स्वर में विजय फिल्म से। शब्दों के मोती पिरोए हैं निदा फाजली ने और संगीत से सवारा है इस गीत को शिवहरि ने। पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। माटापारा से हैं बचकामल मोतीलाल पसंद ब्रिगु, विनय ठाकुर, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, राधेश्याम, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा, पीपरपारा पलचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी, योगिता, नितिन, वंशिका,

रायगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभैये, तन्मय अनिष्का राधिका, बागबहरा से पन्नालाल सेन, तारा कौशल, खुशबू सेन और यवतमाल विदर्भ से संतोष खड से विनोद खड से, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ज्योति, रेयांश दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार अमलेश्वर से ही, मिथिलेश तारिणी, सूरज सुजला और अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, कीर्ति, संध्या, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश, लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज, और भाटापारा से इसी गीत को पसंद किया है दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ और नीरज रावत ने। तो इन सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है विजय फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं कार्यक्रम में लीजिए पेश है सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजों में वारिस फिल्म का गीत, वर्मा मलिक की रचना, उत्तम जगदीश का है संगीत और पसंद इस गीत के लिए हमारे इन श्रोताओं ने हम तक लिख भेजी है। भाटापारा से हैं मिलऊ मानिकपुरी, संतोष संदीप, अजित लक्की, भार्गव विनय और विवान मानिकपुरी। भाटापारा से ही है बिरछा मानिकपुरी, संजना संगीता अंजलि और चारू मानिकपुरी। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू और रविंद्र खुशी रौनक सेन। जांजगीर से राम नारायण कश्यप, कविता देवी, कुसुमलता, खुशबू कुमारी और बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत, वीरेंद्र व्रजकांत। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा सारदा, दामिनी वर्मा। तखतपुर से दिलीप जैमुन रामायणी और भुवनेश्वर कोल। सांकरा से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी, नेहा मिलिंद प्रणय, रुद्रांश और देवेंद्र प्रताप साहू। कोरबी से मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुनीता, सुमित, सोमू, मंजीत, मानस राज और बसीबार से हैं शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, रामप्रसाद, आंचल चंचल चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार। शांतिनगर पाली से संतोषी कोरम, आरती पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश और चंद्रशेखर ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो वारिस फिल्म का गीत इन सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए सुनिए।

0: श्रोताओं, आपकी पसंद ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाने से पहले इस वक्त हम सुनेंगे आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, प्रस्तुत है बिलासपुर जिले की आज की यातायात व्यवस्था अर्थात ट्रैफिक अपडेट्स। आप बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे, आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी बिलासपुर की सभी सड़कों, सभी चौक चौराहों से लेकर प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग जैसी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहन भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन सड़कों से बिलासपुर जिले का सभी स्थानों से यातायात संपर्क बना हुआ है, तब यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, सड़कों में सभी को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो, इस दिशा में शासन स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षित यातायात के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे, किंतु दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। फिर भी विडंबना इस बात की है कि लोग इससे बचने के लिए यातायात के सुरक्षा मानकों की उपेक्षा कर अंधविश्वास या टोटके आदि पर विश्वास करते हुए इसका सहारा लेना चाहते हैं। तमाम वाहन चालक तमाम प्रकार के वाहनों से ठसाठस भरी सड़क में उपेक्षापूर्ण एवं बड़े ही उतावलेपन से खूनी रफ्तार में अपना वाहन चलाते नहीं भगाते हैं और सड़क में सुरक्षा के लिए अपने वाहन में नींबू मिर्ची धागे में पिरोकर वाहन में लटकाए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार मालवाहक एवं यात्री वाहक वाहनों में ओवरलोड के लोग आदि हो गए हैं। क्षमता से अधिक माल से भरे वाहन में चालक का पर्याप्त नियंत्रण नहीं रहता, वाहन असंतुलित रहता है। वैसे ही यात्री बसों में

0: सीट के अलावा बोनट में भी चालाकी और पैर कर सवारी बैठी होती है, जिससे चालक को वाहन चलाने में असुविधा होती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, किंतु सुरक्षा के लिए वाहन के सामने जूता या चप्पल लटका कर रखते हैं। इतना ही नहीं, तमाम वाहन चालकों की नजरें शराब के नशे में झुकते जाती हैं। हर पल खतरा मंडराते रहता है, जबकि वाहन में लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह। दोस्तों, दुर्घटना से ये टोटके नहीं सावधानियां बचाती हैं। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज का ट्रैफिक अपडेट, और अब कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए। पेश है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में, अंदाज़ फिल्म से। समीर की रचना, नदीम श्रवण का है संगीत, और पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। गिर्रा पलारी से वीरेंद्र, सोनू आशीष, कपिल। बठेना से बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति, रेखा, धनेश्वरी। सारागांव से सुजान वर्मा, सोहत्रा, आयुषी, कृत वर्मा। औरंगाबाद से राजेश पाटिल, शीतल, राजदीप, राशि। जांजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई, ठगिया देवी, अंजुलता, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी, प्यारेलाल मिश्रा। दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, शावेंद्र। और अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी, आरती कैवर्त। भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा। बुड़गहन से हमारे साथी हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति। कतियापारा चूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, कान्हा, आदित्य। चाटीडी से गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी और निधि देवांगन। भाटापारा से हैं पंचू यादव, दादू यादव। और बावली से इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है कमलेश, हारेंद्र और सुशील ने। तो इनकी पसंद पर लीजिए पेश है अंदाज फिल्म का ये गीत।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में अभी आपने सुना अंदाज फिल्म का गीत, और इस अंतिम गीत के साथ ही आपकी पसंद ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं, सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और रामदुलारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
1: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है। लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, सोने को स्टार

0: डस्ट क्यों कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है?
1: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूँ आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
2: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी।
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी।
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
0: जी।
2: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में

0: विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
1: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है, आज के समय में विद्यार्थियों में एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है,
0: जी,
1: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
0: जी,
1: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार के नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
0: जी।
1: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा, और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
0: जी,
1: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
0: जी,
1: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
1: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
0: जी।
1: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
0: जी
1: विद्यार्थी को
0: संकोच
1: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
0: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
1: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
0: जी,
1: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
1: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
0: जी।
1: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
0: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
1: जी, रिजल्ट से
0: जी।
1: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली

0: प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं।

0: सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आपको चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, ये जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थी में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशन है, छोटी छोटी जो चीजें रहती है, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य में एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को

0: देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है
1: जी।
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार
1: जी,
0: सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है
1: जी,
0: हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, तो बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है, होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ होती है,
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ होता
0: तो,
1: है,
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी,
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम है या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की

0: कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें। और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल, नियमली हम बनाए टाइम टेबल, हम एक बनाए, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8444-0632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए, और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दी।

0: दीजिए। कल फिर मिलेंगे।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT

जी हाँ श्रोताओं, ये है आपकी और हमारी प्यारी आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। अब से लेकर 11:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और ठीक 11:55 पर प्रादेशिक समाचार के लिए हम एक बार फिर से जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से, और उसके पश्चात 12 से लेकर 5 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वक्त जुड़ते हैं विविध भारती से।

सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर के बोल आप सुन रहे थे। साजिद वाजिद का संगीत दीवाना एल्बम के इस गीत में और कार्यक्रम रंग तरंग विभिन्न भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं शंकर महादेवन को ब्रेथलेस में।

शंकर महादेवन की आवाज में ब्रेथलेस एल्बम से आपने ये ब्रेथलेस गीत सुना। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर महादेवन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब सुनिए ये गीत।

0: कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे चालबाज फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: गणेश हेगड़े की आवाज में आप सुन रहे थे उन्हीं के एल्बम का ये गीत, जिसे मनोज संतोषी ने लिखा और गणेश हेगड़े ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आपको याद दिला दें कि शाम 4 सेहतनामा के अंतर्गत सुन सकते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। फिलहाल कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत।

ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰੱਬ

ਰੱਬ ਰੱਬ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰੱਬ ਰੱਬ।

ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਕਹਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਛੂਈ ਮੂਹੀ ਛੂਈ।

trapper.

0: ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ ਛੂਈ ਮੂਈ
1: दर्दी रब रब। इस एल्बम से आपने सुना दलेर मेहंदी को, जंगा नंदपुरी ने इसे लिखा और जवाहर वट्टल का संगीत इस गीत में आपने सुना। बस दो मिनट, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये प्रहसन है जिसे आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन मदन बिहारी का, माफ कीजिएगा, लेखन मदन बिहारी शरण दीप का, निर्देशन श्याम सुंदर प्रसाद का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस समय रंग तरंग। और आपको ये भी बता दें कि रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता परीक्षित साहनी पर, ये आप सुन सकते हैं। और अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे और मौसम विभाग ने आज रायपुर दुर्ग सहित प्रदेश के 10 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहलें सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी प्राप्त सुझावों को शीघ्र नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के रूप में लागू किया जाएगा। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकास परक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कल विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई को उनके गृहग्राम गनियारी में श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि गनियारी के शासकीय हाई हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तीजनबाई ने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई।

रह गए और खेतों में पानी भरने लगा। रायपुर और बिलासपुर में कई स्थानों में जल जमाव की खबर है। इस बीच मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में 154 मिलीमीटर, दुर्ग में 181 मिलीमीटर और भिलाई में 115.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद, बालोद, धमतरी, गरियाबंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बस्तर संभाग के युवाओं के लिए कल 7 जुलाई को जगदलपुर के शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज आड़ावाल में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों के लगभग 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। और मौसम विभाग ने आज रायपुर, दुर्ग सहित प्रदेश के 10 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता

0: कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज में दीदार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत, और आप समझ गए होंगे यादों की महफिल कार्यक्रम में याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन के मौके पर।

0: मुकेश की आवाज में आंसू और मुस्कान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे इंद्रवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन पर।

पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के।

पवित्र पापी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, प्रेम धवन के बोल और उन्हीं का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और आज हम अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उन्हीं की फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में आप सुन रहे थे एमजी हशमत के बोल। रविंद्र जैन का संगीत तपस्या फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें अब सुनवा रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों से गीत। आइए सुनते हैं वंदना फिल्म का ये अगला गीत, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की।

असद भोपाली की रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, रवि का संगीत वंदना फिल्म के इस गीत में। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में अनोखी रात फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल, रोशन का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें हम याद कर रहे थे जन्मदिन पर अभिनेता परीक्षित साहनी को। कार्यक्रम के इस भाग में याद करते हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि पर।
3: हर तरफ अब

हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और अब हम याद कर रहे हैं पुण्यतिथि पर निर्देशक चेतन आनंद को।

किशोर कुमार की आवाज में कुदरत फिल्म से गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज में ही रांझा फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल, जिसमें अब हम याद कर रहे हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं की फिल्मों के गीतों से।

तस्वीर हटाए होगी, हर तरफ मुझको।

मोहम्मद रफी, भूपिंदर मन्ना डे और तलत महमूद की आवाजों में हकीकत फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में समय हम याद कर रहे हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं की फिल्मों के गीत से। आइए अब कार्यक्रम में अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, हंसते जख्म फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें, कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत।

हस्ते जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत, और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं रोजाना हम एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उसी में छिपे होते हैं वो शब्द जिनसे कार्यक्रम में गीत शामिल होते हैं, जिनसे संबंधित जो भी गीत होते हैं वही हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं और उस टेक्स्ट या इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लगाना होता है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत शामिल होंगे। और आप अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते हैं कमेंट्स के जरिए। तो हमारे जो भी श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें बता दें www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप ये हमारा पेज पा सकते हैं और वहां पर आप को सारी पोस्ट मिल जाएंगी और भी जो भी कार्यक्रम आते हैं विविध भारती की उन सभी की पोस्ट भी आपको वहां मिलती है और कार्यक्रम का विवरण भी आपको वहां मिल जाएगा झरोखा के अंतर्गत। तो इस तरह से आप हमारे पेज से जुड़ सकते हैं और जो साथी फेसबुक पर ही हैं जिनका अकाउंट है वो फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी में लिखा यानी हिंदी में लिखा हुआ है और आपको मिल जाएगा ये पेज। और अभी हम आपको बता देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की इबारत क्या है। तो आज की इबारत है चलते चलते इस जीवन में कई रास्ते खुलते जाते हैं, चलते हुए हम किसी से दूर भी होते हैं और किसी के पास भी खींचे जाते हैं। हमारे पांव की सुंदरता भी तो चलते जाने में है क्योंकि रुकना नहीं चलना ही नियति है। अगर हम रुक जाएं या अगर हम रुके तो ये समय ही चला जाएगा, वक्त जो ये गया हाथ से फिर कहां कोई इसे पाएगा। दो चार कदम आप चले और कुछ हम भी चलकर पहुंचे आप तक। देखिए चलते चलते आपकी और हमारी मुलाकात हो गई इस सुरीले मोड़ पर। तो ये है आज की इबारत जिनसे शब्द आप चुन सकते हैं जिनसे आज के कार्यक्रम में गीत शामिल होंगे। अब देखते हैं कि आपकी गीतों की लिस्ट और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मैच करती है। हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि आज की इबारत पढ़कर शिव मंगल सिंह सुमन की कविता की पंक्तियां याद आ गई। गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दूर दूर खड़ा, जब आज मेरे सामने है इतना रास्ता पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। वैसे तो मैं हर रोज शाम को चलने जाता हूँ लेकिन आज सुबह बाय कार सूरत से धोराजी की ओर चल पड़ा हूँ। चलते चलते मेरे नहीं सुमन जी के गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना, ऐसा हमारे साथी का कहना है। तो हम ये जानना चाहते कि भाई चलना तो वाकई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलना जो सांकेतिक रूप में है वो जीवन चलने का नाम जैसे गीतों में हमें समझ में आता ही है, लेकिन पहली बार किसी को चलना सिखाना यानी किसी बच्चे को जब हम चलना सिखाते हैं तो बड़ा ही प्यारा सा लगता है ये काम। और जब वो चलना सीख जाता है तो वो रुकता ही नहीं है, बहुत देर तक तो सिर्फ चलता ही रहता है। तो आपने

क्या किया है? ऐसा प्यारा काम किसी छोटे बच्चे को चलना सिखाया है या आपको किसने चलना सिखाया, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और कार्यक्रम में चलते हैं पहले गीत की ओर। बताना है किस फिल्म का गीत है।

पाकिजा फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, कैफे आजमी के बोल गुलाम मोहम्मद का संगीत। और हमारे बहुत से श्रोताओं ने लिख भेजा है सही जवाब और ये भी कहा है कि उनके लिस्ट में तो ये गीत था ही। और ये जानकर हमें बड़ी खुशी है कि आपके लिस्ट और हमारी लिस्ट पहले गीत में ही मिल गई है। आगे जरूर देखा जाएगा कि कौन कौन से गीत आपके लिस्ट में से शामिल होते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज का गद्यांश जीवन में चलते रहने की बात लेकर आया है। जीवन का वास्तविक आकर्षण उसकी गतिशीलता में छिपा है। चलते रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें या दुख महसूस ना करें, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी पड़ाव पर ठहरे नहीं। चलते रहने की इस कला में धैर्य, आशा और स्वयं पर विश्वास

सबसे बड़ा संबल है आगे बढ़ते रहने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण गुण है स्वीकार्यता। वहीं हमारे एक और साथी ने लिखा है कि आज के सफर के मर्म को चरितार्थ करती भारत है, संस्कृत में चरैवेति चरैवेति यानी चलते रहो, श्लोक की वास्तविकता है बहता पानी रमता योगी, ठहर जाए तो विकार अवश्यंभावी है, जीवन सफर में चलते रहने वालों की ही प्रगति पथ प्रशस्त रहती है और अंततः लक्ष्य हासिल होता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सफर जिंदगी का ये कारवां यूं ही चलता रहा, जहां कुछ लोग दूर छूट जाते हैं और कुछ दिल के पास आ जाते हैं, कदमों की खूबसूरती भी ठहरने में नहीं बल्कि लगातार चलते रहने में ही है, जो रुक गए हम तो ये कीमती वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा जो फिर कभी लौट कर नहीं आता, कुछ कदम आप चले कुछ दूरी हमने तय की और इस तरह हमारी मुलाकात हो गई। हमारी कौर साथी का कहना है चलते रहना नियति है और गुजरा वक्त अक्सर दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता, जीवन का कटु और शाश्वत सत्य गतिशीलता ही है, से कर्मयोग काल निरंतरता और पुरुषार्थ के रूप में गहराई से समझे जाने की जरूरत है, दूसरे गहन अर्थ में जीवन बहती नदियों सा या किसी चक्र जैसा है, जैसा कि इन दोनों से यही ज्ञान मिल रहा है कि निरंतर गतिशील रहने में ही उनका असर बरकरार रहता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा मन करता है कि कुछ देर के लिए ठहर जाए, क्या ऐसा या कोई ऐसा समय आपके जीवन में आया हमें बताइए, और ये भी बताइए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया जिसमें आपको लगा कि भाई इनके साथ कुछ देर ठहर जाना चाहिए, तो आप हमें बताइए कि रुकने का मन कब किया आपका। और साथ ही हम नहीं रुक रहे हैं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है कि किसकी आवाज में गीत, कौन से फन से।

साथी कहते हैं कि गीत ही जीवन का आधार है, माफ कीजिएगा, गति ही जीवन का आधार है, ठहराव तो बस एक हार है, संघर्षों से ही निखरता इस जीवन का श्रृंगार है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कदम बढ़ाते रहते हैं, इतिहास वही रचते हैं जो लहरों से टकराते रहते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चलना ही जीवन का दूसरा नाम है, अब जब आपके कदम सही दिशा में उठते हैं तो चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपकी निरंतर मेहनत और सही दिशा उसे सच कर देती है। सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप रुकने के बजाय कितनी लगन से अपने रास्तों पर आगे बढ़ते गए। हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, उसने कहा दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें, मंजिलें प्यार की होंगी तय चलते चलते, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रही ये जिंदगी, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सफर में चलते ही तो जाना है, जीवन का नाम ही चलना है, जहां रुके वहीं सांसें रुक जाएंगी, हंसते मुस्कुराते जीवन के सुख दुख को भी चलते रहेंगे तो जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, रुक जाना नहीं तू कहीं।

लगी। ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सफर में चलते ही तो जाना है, जीवन का नाम ही चलना है, जहां रुके वहीं सांसें रुक जाएंगी, हंसते मुस्कुराते जीवन के सुख दुख को भी चलते रहेंगे तो जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये गीत इन्होंने लिखा। और साथ ही बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे। एक और साथी लिखती है कि सचमुच जीवन आज फिर एक बार आपके साथ चलने का भाग्य मिल गया। सचमुच जीवन में हर घड़ी चलते रहने का बड़ा महत्व है, निरंतर चलते रहने से हर मुश्किलें और असफलता का डटकर सामना करने का दृढ़ मनोबल पाते हैं, नई संभावनाओं को अपनाकर पुरानी बातें छोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसी अर्थ का एक सुंदर मराठी कविता याद आ रही है, कायदा पाड़ा गतीचा काल मागे लागला, थांबला तो संपला, धावत्याला शक्ति यही आणी रस्ता साफ पड़े। आज की भारत बहुत प्रेरणादायी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये मार्गदर्शक संदेश दे रही है। हम तो अपने साथी से कहेंगे कि जो भी वो दूसरी भाषा में लिखकर भेजते हैं कुछ कविताएं, तो उसका अर्थ भी जरूर लिख दें ताकि सभी को पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लेकिन एक और बात हमारे साथियों ने कहा कि चलते चलते सफलता मिलती है, चलते चलते रास्ते मिलते हैं, लेकिन ये सोचिए कि मान लीजिए हमें सफलता मिल गई और चलते चलते कहीं किसी मार्ग पर कहीं रास्ते में हमें असफलता का सामना करना पड़ा, तो कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। फिल्म का नाम और नायिका कौन है बताइए।

अनामिका फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और इस फिल्म में नजर आती है नायिका के रूप में जया भादुड़ी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से शिष्य श्यामल बनी प्रकृति के सुंदर प्रसन्न सुहाने नजारे को देखकर दिल कहता है रुक जा रे रुक जा। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन पथ पर मेरी बेटी के आगमन ने जीवन सफर की दशा और दिशा बदल दी। उसकी एक मुस्कान में मानो जीवन लक्ष्य छुपा था। आज वो 37 साल की ही कार्यरत है, कल स्वयं ड्राइव कर दूर घुमाने ले गई। मेरी दैनंदिनी जीवन बेटी ही है। वहीं हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे साथियों ने कहा कि कह रहे हैं कि उन्होंने चलने के महत्व को बताते हुए एक बात लिखी और कहा कि चलते रहना तो जीवन का सफर है। जीवन की तुलना हमेशा बहने वाली नदी से की जाती है। एक नदी अविरल बहती है, समुद्र में लहरें लगातार गतिशील रहती हैं, हवा एक पल के लिए भी नहीं रुकती। प्रकृति का नियम है कि जो ठहर गया उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना, चुनौतियों को पार करना और हर बदलाव को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन है। मनुष्य का जीवन भी कर्म प्रधान है। जीवन के सफर में सुख दुख धूप छांव और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि हम किसी एक पड़ाव पर रुक जाएं तो जीवन का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। हमारे एक और साथी ने बताया कि मैं हर रोज शाम मेरी शॉप के आगे की खुली जगह में वॉक करता हूँ। संडे की शाम मेरे घर के पास वॉक करते करते घूम लेता हूँ। वॉकिंग टाइम मेरी जेब में मोबाइल में विविध भारती सेवा के गीत बजते रहते हैं। तो बिल्कुल हम भी आपके साथ यानी कि वॉक कर रहे हैं, उसे भी नोट किया जाना चाहिए। जो भी उस वक्त आपके साथ हैं विविध भारती पर बने हुए, उन्होंने भी आपके साथ वॉक की है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। और हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई यूं ही कोई मिल गया था सरी राह चलते चलते। बहुत बार कुछ अनजान लोग चलते चलते मिल जाते हैं, उनके साथ चलना भी बड़ा सुखद होता है, ये जानते हुए कि शायद दोबारा फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी। राह चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनका जो साथ रहता है वो हमेशा याद रहता है, और दिल से उनके लिए शुभकामना भी निकलती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कई बार वॉक करने जब हम जाते हैं तो भी बहुत से लोगों से हमारी पहचान होती है, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, तो उनके पास जाकर कैसा लगता है आपको? कभी कभी तो हम वॉक करने के बाद बैठकर कुछ देर बात भी करने लगते हैं और वक्त यूं गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाकर आपका वक्त यूं ही गुजर जाता है? हमें बताइए। और साथ ये भी बताइए कि जो गीत अब सुनवाने वाले हैं वो किसने लिखा है।

नीला आकाश फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे, जो जवाब हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही दिया। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, मंजिल मिले या ना मिले हर कदम हमें कुछ नया सिखा जाती है। रास्ते बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जो मुस्कुराते हुए चलता रहता है वही जिंदगी के हर सफर को यादगार बना लेता है। जिंदगी ठहरने से नहीं, चलते रहने से महकती है। हर नया कदम एक नई उम्मीद लेकर आता है और हर सफर हमें अपने बारे में कुछ ना कुछ बताता है। वही हमारे साथी ने बताया कि मेरी बेटी ने थोड़ी देर से चलना सीखा था, क्योंकि वो एक भरे पूरे परिवार में पली बड़ी है, इसलिए सब उसे दिन भर गोद में ही लिए रहते थे। फिर जब मेरे पापा उसके लिए एक 3 पहियों वाली गाड़ी लेकर आए, तब उसने चलना सीखा। उस यादगार दिन की तस्वीर आज भी मेरे पास है। वहीं हमारे एक साथी ने भी कथा ये याद किया कि हम जब छोटे थे तो लकड़ी की 3 पहियों वाली गाड़ी होती थी, एक खरीद ली जाती थी तो कई बच्चों के काम आती थी, बाद में तरह तरह के रंग बिरंगे वॉकर आने लगे। जिंदगी किसी मंजिल का नहीं बल्कि चलते रहने का नाम है, ऐसा हमारे एक साथी का कहना है, और हर कदम हमें एक नई कहानी से मिलवाता है, हर मोड़ कोई नया एहसास दे जाता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निरंतर चलते रहना ही जीवन की रीत है, चलते हुए ही जिंदगी में अनेक मोड़ आते हैं जहां से जिंदगी का फलसफा बदल जाता है। चलते हुए जीवन के सफर में अनेक साथी मिलते हैं जो जिंदगी भर याद करते हैं या जिंदगी भर याद रहते हैं। और हमारे साथी ने बहुत से गीत लिखे हैं जिनमें से कुछ गीत तो शामिल हो गए हैं। हमारी कौर साथी कहती हैं कि जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत सफर है, जहां हर कदम हमें किसी नई मंजिल, नए रिश्ते और नए अनुभव की ओर ले जाता है। कभी चलते चलते कोई अपना मिल जाता है, तो कभी वक्त हमें जीवन के अनमोल सबक सिखा देता है। राहें बदलती रहती हैं, मोड़ आते रहते हैं, लेकिन जो मुसाफिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहता है वही जीवन की असली खूबसूरती को महसूस कर पाता है। हर मुलाकात एक नई याद बन जाती है और हर सफर दिल में एक नई धुन छोड़ जाता है। इसलिए जीवन का संदेश यही है कि रुकना नहीं, चलते रहना है, क्योंकि मंजिल से अधिक खूबसूरत वो सफर होता है जो हर पल हमें कुछ सिखाता है। तो चलते तो रहना है, चलते चलते हमारे पांव की खूबसूरती देखना भी बहुत जरूरत है, खूबसूरती से ज्यादा मजबूती। तो किस तरह से मजबूत बनाते हैं आप अपने पैरों को, चलते चलते तो बनाते ही हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए किस तरह के जूते चप्पल आप लेते हैं ये बताइए। कभी कभी हम बहुत ही सुंदर दिखने वाले चप्पल जूते ले लेते हैं और उससे पांव में होती है तकलीफ। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का है।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना और चलते रहने की बातें हो रही हैं आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में, क्योंकि चलना ही जिंदगी है ऐसा हमारे साथियों का भी मानना है। और हमारे साथियों से हमने ये भी पूछा था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर या जिसके साथ थोड़ी देर बैठकर आपको वक्त का पता ही नहीं चलता और ऐसा लगता है कि भाई ये वक्त कहाँ चला गया। तो इस तरह के लोगों की बातें हमारे साथियों ने कही है। हमारी एक साथी कहती है, एक बड़ा ही प्यारा दोस्त जिसके साथ बात भले ही ना हो पर उसका साथ हमेशा साथ रहता है, मानो वो हमसे हर समय बात कर रहा हो। प्यारा सा एहसास ही इतना प्यारा होता है कि मानो वो हमारे आसपास ही है, और कभी कभी उसकी बातें इतनी अपनी सी होती हैं मानो वो हमारी ही बात कह रहा हो। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि जिंदगी का सफर यूं ही नहीं कट जाने वाला, हम सफर साथ हो तो रास्ते यूं ही कट जाते हैं। बहुत से मित्र छूट गए, कुछ राह बदल गए, सफर ये VBS के साथ सुहाना हो गया है। वहीं हमारे एक और साथी ने बताया कि कॉलेज के लास्ट ईयर में एग्जाम के बाद हमें सभी दोस्तों से बिछड़ने पर ऐसी ही इच्छा हुई थी कि काश ये समय और हम यहीं रुक जाएं, पर ऐसा संभव कहां, जीवन तो बहता पानी है, चलता रहता है। आज भी उन सबसे टच में है, कभी कभी मिलना जुलना हो जाता है। मोबाइल के आविष्कार को शत शत नमन की बातचीत होती रहती है। वाकई मोबाइल के जरिए तो हम अपने साथियों से सबसे मिल लेते हैं और बातें कर लेते हैं, कितना ही अच्छा ये वक्त होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कोई साथ बैठा है बातें कर रहा है तो वो ना जाए, कुछ देर के लिए रुक जाए, और ऐसे में हम उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश भी करते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप किस व्यक्ति के साथ कुछ और देर बिताना चाहते हैं और उसे रोकना चाहते हैं और उसे आवाज देते हैं? कौन सा गीत गाते हैं उस वक्त, ये भी हमें बताइएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम लोग सोमनाथ और द्वारिकापुरी की यात्रा पर गए थे तो हमारे साथ के लोगों से 7 दिन में इतना मेल मिलाप हो गया थी। यात्रा के बाद अलग होते समय बहुत दुख हो रहा था, करीब 80 लोग थे। तो ये भी एक तरीका होता है जब हम अलग अलग सफर के दौरान मिलते हैं, लेकिन इन दिनों तो आपस में बने रहना, आपस में मिलते जुलते रहना, बातें करना आसान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ है और राह में किसी खास व्यक्ति से सफर बाधित हो रहा है तो समझौता कर जाएं, त्वरित फैसले से नुकसान हो सकता है। हमारे एक और साथी को कछुए की याद आ गई, कछुआ और खरगोश की वो जो कहानियां हैं उससे उन्हें याद आ गया कि कछुआ निरंतर चलता रहता है और अंत में उसकी जीत होती है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति को रोकना चाहते हैं ज्यादा देर और चाहते हैं कि कुछ पल ऐसा निकले जिसमें समय ना बीते और बातें चलती रहें। तो हमें बताइए कौन है वैसा व्यक्ति, और ये भी बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत सुनवा रहे हैं।

उदित नारायण और साथियों की आवाज में आपने सुना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत आनंद बख्शी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। और हमने अपने साथियों से बहुत से हमारे एक साथी कह रहे कि भाई इसमें तो रुकने की बात है, चलने की बात कहाँ है, लेकिन रुका कितनी अच्छी तरह से जा रहा है ये तो देखिए। और हमारे इबारत में रुकने वाला शब्द भी तो शामिल है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ताजमहल को देखने के लिए बहुत चलना पड़ता है। ताजमहल फिल्म का ये गीत सुनकर उन्हें याद आया है। तो हम ये बताएं कि बहुत से जो ऐसे स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनको देखने के लिए बहुत चलना ही पड़ता है। और जब भी हम सखी सहेलियां किसी कार्यक्रम में इसकी जानकारी देते हैं तो आपको बताते ही हैं कि एक आरामदायक फुटवेयर आप साथ में लेकर जाएं, क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा। और कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं चले गए घूमने के लिए और आपको इतना ज्यादा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं था और किसी तरह से आप चल के जाकर देखने के लिए गए किसी नज़ारे को या किसी दर्शनीय स्थल को और आपको बहुत आनंद आया और ऐसा लगा कि चलना हमारा सार्थक हो गया। या कभी ऐसा हुआ है कि आप चले ही नहीं और उस जगह की सैर ही नहीं की, तो दोनों बातें हुई हों तो हमें से साझा कीजिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जूते अब हमारे शौक के अधीन नहीं है, उम्र के उतरार

में पापा ये पहनो ये वाला अच्छा लगता है कि उनकी मर्जी से शासित होते हैं। जितनी खर्च पोशाकों में उम्र भर की होंगी उतनी बच्चे मेरे लिए दो जोड़ी जूते पर कर देते हैं। भाई बड़े ही खुश नसीब हैं आप, ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि जूते और चप्पल अपने पैरों को फिटाए ऐसे लेने चाहिए, छोटी हाइट वाले हील लेने चाहिए जो चलने में दिक्कत ना हो। तो ऊंचे लोग टेपर हील वाले पसंद करते क्योंकि हाइट ज्यादा ना दिखाई दे, ऐसा इनका कहना है। पर लेकिन हील वाले जूते लेने के लिए कह रहे हैं, मतलब छोटी हाइट जिनके, उन्हें हील वाले जूते ले लेने चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे कभी भी जीवन का या किसी समस्या का या बच्चों के विषय में कोई फैसला लेना होता है तो अपनी धर्मपत्नी के पास बैठता हूँ, सारी बात समझाता हूँ और साथ में दोनों अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अगर धर्मपत्नी कोई सही सुझाव देती है तो मैं यही कहता हूँ कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे लाइट वेट जो जूते होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि सुबह 3 किलोमीटर पैदल घूमने जाते हैं और आते हैं, शाम को साइकिल में भी इतना ही घूम आते हैं। भाई हमारे श्रोताओं की सेहत का राज तो आज खुल रहा है क्योंकि वो बता रहे हैं कि कितनी वॉक कौन कर रहा है और सारे के सारे श्रोता वॉक करने पर जा रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई दौड़ने जा रहा है। भाई वाह, हमें तो आपसे सीख लेनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल वॉक करने से ही बहुत से लोगों से जान पहचान हो गई है, बहुत ज्यादा किसी के बारे में जान पहचान नहीं है, लेकिन हम टहलने के बाद कुछ देर बैठकर खाना बनाना, फल सब्जियों के भाव, घुटनों और पैर के दर्द के बारे में और भी कुछ बातें करते हैं, हंसते हैं, फिर ताजी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ अपने अपने घर को लौट आते हैं। हमें तो पूरा यकीन है कि जब इस दर्द की बातें होती होंगी तो उसकी दवा भी समझ में आती होगी, बहुत से लोग सुझाव भी देते होंगे। हमारे एक और साथी का कहना है कि सुबह की वॉक सिर्फ सेहत ही नहीं, नए रिश्तों और नई मुस्कानों का भी जरिया बन जाती है। राह चलते जब नए लोग मिलते हैं तो कुछ पल की बातचीत भी दिन को खुशनुमा बना देती है। कभी कभी अनजान चेहरे भी जीवन में अपनापन और नई सकारात्मक ऊर्जा भर जाते हैं। एक और साथी का कहना है कि मैं प्रतिदिन सुबह 1 से 1.5 घंटे तक हमारी क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। खेल पूरा होने के बाद हमारी टीम के कुछ खिलाड़ी रुकते हैं तो उनके साथ बातें करते करते वक्त कहाँ कट जाता है पता नहीं चलता। तो इस तरह से हमारे सभी साथी खेल से या फिर वॉक से सेहत से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और आप हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि भाई समय तो बीतता ही जाता है और सही समय पर किया गया सही काम भी काम आता है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि सही काम ये है कि गीत सुनवा देते हैं। बताइए किसकी आवाज में गीत है।

गोलमाल फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आपने आवाज बिल्कुल सही पहचानी। हमारे एक साथी ने बताया कि माँ शारदा शक्तिपीठ मेहर गया था, वहां पर लगभग 1000 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया था। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक साइकिलिंग से शुरू करते हैं, फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं काफी लंबे समय तक। अब रिटायर बैंकर हैं, 69 ईयर के हैं और उन्हें हमेशा अच्छा लगता है ये करना। वही हमारे एक साथी का कहना है कि उन्होंने 6000 स्टेप का एक बंधन रखा हुआ है। हमारे और साथी जो हैं वो भी बता रहे हैं सब अपनी अपनी व्यायाम की बातें करने लगे हैं अब तो। ऐसा हमें लगा कि भाई आप इतनी अच्छे से चलते फिरते रहते हैं और वॉक करते हैं, योग करते हैं, ये सारी बातें हमारे साथी बताने लगे और स्वस्थ रहने के नुस्खे भी अब आने लगे हैं। अब हमें पता चल रहा है कि आपका जीवन इतना आनंदमय कैसे रहता है, किस तरह से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब आप चलते हैं, जाते हैं, कहीं घूम फिर कर आते हैं तो आपके मन में भी एक अलग सी ऊर्जा रहती है, अलग सी सकारात्मकता रहती है जो हमें आपके कमेंट्स के जरिए मिलती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चलते चलते जीवन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। कुछ लगे लोग राह में मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ याद बनकर दिल में बस जाते हैं। सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, हर मोड़ पर कोई ना कोई एहसास हमारा हम सफर बन जाता है। वैसे हमारे साथी का कहना है कि भाई मैं तो सारे दिन चलती रहती हूँ और घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, रेडियो में गाने चलते रहते हैं और मेरा हाथ बराबर चलता रहता है, कुछ भी करते हुए उनका हाथ काम में लगा रहता है। हमारे एक साथी ने बताया कि मेरी बेटी पूना में पढ़ रही थी, जाते जाते ट्रेन में एक लड़के से उसकी मुलाकात हो गई। हम लोगों को बताया भी, वो अक्सर यूं ही ट्रेन में मिलते रहते और उन दोनों ने शादी करने का निश्चय कर लिया। हम लोगों के लाख विरोध के बाद भी शादी हो गई और दामाद बहुत ही अच्छा और शरीफ है। तो इस तरह से जो ट्रेन में हम सफर मिला वो जीवन में हम सफर बन गया, बहुत ही अच्छी बात। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 5 अधिकतम 8 किलोमीटर वॉक करते हैं, सुबह 5:30 से 8 बजे तक, 5 तो कम से कम चलते ही है। और एक साथी कह रहे हैं कि सुबह योग और रात को खाने के बाद टहलने जाते हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा में नाइग्रा फॉल देखने के समय उन्हें ऐसा लगा कि उनका दिल ये कह रहा था कि वापस ही नहीं आना है, वहीं रुक जाएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में हाई हील सैंडल किस उम्र तक पहननी चाहिए महिलाओं को। भाई ये सवाल तो किसी भी महिला के लिए पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जिसकी जितनी भी श्रद्धा भक्ति हो कह सकते हैं, या कहें कि जिसके पैर जितनी इजाजत दें, जो अपने पैरों को अच्छी तरह से संभाल सकें, वो उम्र का तो कोई इसमें सीमा रही नहीं, आप अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। वही हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने ताजमहल 15 बार देखा है, तो अब तो आपको पूरा याद हो गया होगा ताजमहल की कहाँ जाने से क्या क्या होता है। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये जिंदगी बड़ी अजीब है, मंजिल का लालच देती है और सारी उम्र इंसान को सफर में रखती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गुरुजी के आश्रम में जाते हैं, वहां के वातावरण में ऐसी शक्ति होती है कि कुछ देर वापस लौटने का मन नहीं करता। एक साथी ने कहा कि उन्हें एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और आपने पूछा कि किसी के साथ रहने से अगर वक्त ठहर जाए तो गाना जब भी आता है तो मुझे मेरे पतिदेव जो इस दुनिया में नहीं है उनकी याद आती है और मेरे लिए वो ये गाना हमेशा गाते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस गीत के जरिए उनकी याद एक बार फिर हमने दिलाई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाना नानी जब आते थे कुछ दिन रुकते थे और फिर जब वो जाने लगते तो हम बच्चे रोते थे।

दिन जब हम लोग स्कूल जाते तब वो चुपके से जाते थे। अच्छा ये बताइए कि नाना नानी के जाने से तो ऑलमोस्ट सभी रोया करते थे, क्योंकि साथ में जाने का मन करता या एक अलग ही प्रेम जो मिलता था। लेकिन ये बताइए कि स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे, स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे और नहीं जाने के लिए कितने लोग रोते थे, ये बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसने लिखा ये गीत।

घर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे गुलजार के बोल, और यही हमारे सवाल का सही जवाब जो आपने भी दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे बचपन से एक हसरत थी कि गोलकुंडा हैदराबाद का किला देखूं, और वो इच्छा पूरी हुई। वहां पर पहाड़ बहुत ऊंचा था, उस पर चलना आसान नहीं था, लेकिन मैं गया और प्राचीन कला को देख कर आनंद आया। वही हमारे एक साथी का कहना है कि 11 गीत की लिखी हुई इबारत में से 9वां और 11वें नंबर पर लिखा गीत शामिल हुआ। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्कूल जाना बड़ा ही अच्छा लगता था, नहीं रोए कभी भी।

और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सरल सरल सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हार्ड सवाल पूछें, सरल सवाल में इतना मजा नहीं आता। तो बिल्कुल आप बताइए कि कौन सा मुश्किल सवाल होना चाहिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार जब हम सब छोटे थे तब राजस्थान मामा जी के विवाह में कार्यक्रम में गए थे, तब माता चामुंडा देवी के मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर इतना ऊंचा है कि सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बड़े बूढ़े तो थक गए थे, हम बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था। एक और साथी कहती हैं कि मैं रोज स्कूल जाती थी, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, फुल अटेंडेंस होती थी मेरी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में तकलीफ होने के बावजूद डॉक्टर चलते रहने की सलाह देते हैं, एक लोहे की मशीन अगर बहुत दिन तक चलाई न जाए तो उसमें जंग लग सकती है, इसी प्रकार यदि मनुष्य रुक गया तो धीरे धीरे पैर की हड्डियां जाम होने लगती है, इससे थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही सलाह आपने दी। हमारे एक और साथी कह रहे कि उनकी बचपन से हसरत थी घूमने जाने की, ये तो हमने पढ़ ली। हमारे एक और साथी कह रहे कि मसूरी यात्रा के दौरान मैंने लैंडोर तक करीब 11 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई की। जब मैं वहां लैंडोर बेक हाउस पहुंची तो उसके मशहूर केक और पेस्ट्री खाए और स्वाद आज तक मुंह में बसा हुआ है। एक और साथी कहने कि मैंने मेरी दीदी की छोटी सी लड़की को बहुत चलाया जब वो 1-2 साल की थी। हमने किसके चलना सिखाया? हमारे चलते बोलते रहने के तब की गुरु तब माँ ही थी। माँ ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। जब बच्चे अचानक उठने की कोशिश करने लगते हैं तो माँ को ये समझ में आ जाता है कि वो चलना चाहते हैं और धीरे धीरे वो उन्हें पकड़कर चलना सिखा देती हैं। एक साथी कह रहे हैं कि समय और बादल के अलावा कोई ईमानदारी से नहीं चलता। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम जीवन और उसके अंतर हमें निरंतर सक्रिय रहने, चलने फिरते रहना जरूरी है। वैसे तो चलते चलते रहने के बहुत से गीत हैं, कुछ याद आ रहे हैं, इन्होंने गीतों के नाम लिख भेजे हैं, हमें पूरी उम्मीद है उसमें से कुछ गीत तो शामिल हो ही गए। अब कार्यक्रम का अंतिम गीत, हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत, किसकी आवाज़।

चलते चलते फिल्म से किशोर कुमार को आप सुन रहे थे और हम अलविदा नहीं कह रहे हैं, हालांकि वक्त हो गया है, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर तो रहता है आपके साथ दिन रात लगातार। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

0: त्रिवेणी। श्रोताओं को नमस्कार। आज की त्रिवेणी रिश्ते नातों पर आधारित है। दोस्तों, रिश्ते नातों के बिना परिवार समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का व्यक्ति से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ जाता है जब उनकी मुलाकात होती है। जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है, पहला रिश्ता माता से, पिता से, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़ता है। दादी, बाबा, चाचा, चाची, नानी, नाना, मामा, मौसी, बुआ, भाई, बहन, सब रिश्ते करीब आ जाते हैं, जिनसे मिलता है अपार ममता, प्यार और दुलार। ये रिश्ते नाते विश्वास, प्यार, व्यवहार, सुरक्षा, भरोसे से निखरते हैं। इनमें सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। बिना किसी भेदभाव के अपना पराया जैसी भावनाओं से परे मानसिकता का स्पष्ट होना आवश्यक है। इनमें मिलना मिलाना, आदर सम्मान का होना बहुत जरूरी है। आपसी बातचीत, संवाद, संतोष, धैर्य भी हो आपस में।
1: तेरा मुझे

दोस्तों, इन रिश्तों में प्रेम की धारा बहती है। रहीम जी ने भी कहा है कि रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रिश्तों में प्यार का होना बहुत जरूरी है। इनमें मतभेद हो जाए तो दूरियां बढ़ जाती हैं। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। बरसों तक ये रिश्ते नाते फलते फूलते रहा करते थे। तब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। बच्चे परिवार में कैसे बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। आज एकल परिवार हो गए हैं। बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। ये रिश्ते नाते बुआ चाचा भाई बहन मौसी मामा सब खत्म होते जा रहे हैं। रिश्तों की रौनक त्योहार उत्सव और मांगलिक कार्यों में बड़ी अच्छी लगती है। आज इनमें भी कमी आ गई है, या सब अपने आप में इतने व्यस्त होते जा रहे हैं कि शामिल होने में असमर्थता दिखाते हैं।

दोस्तों, आजकल रिश्ते नाते डिजिटल हो गए हैं। फोन, वीडियो कॉल्स या मैसेज से बधाई संदेश, संवेदना प्रकट करना बस दे दिया, उनका ये फर्ज पूरा हो गया। इनमें कितना अपनापन होता है या सिर्फ खाना पूर्ति, ये हम सभी अच्छी तरह से समझते हैं। जो पहले रिश्ते नातों का आपस में एक दूसरे से घर आना जाना होता था, मिलकर रसोई बनाना, एक साथ खाना, कितनी गप्पे मारना, सुख दुख में शामिल होना, परिवार को ताकत दे जाता था कि एक आवाज पर, एक तार, टेलीग्राम, चिट्ठी मिलते सब आ जाएंगे। आज इनमें भी कमी आ गई है। लोग रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरत से बनाने लगे हैं। कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन वे तब तक आपके साथ हैं जब तक उन्हें बदले में कुछ मिले। वक्त के बदलते दौर में हमें मिलकर इन्हें संभालना होगा। रिश्तों में फिर से मुलाकातों का, संवाद का दौर लगाना होगा। रिश्तों की मीठी यादों को साझा करें, वे फिर से लौट आएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड

इंग्लैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से

0: को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्व

0: तो पूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
1: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: जगन्नाथ तकानेन।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जगन्नाथ तकानेन।
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावरे ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
5: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6

0: प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सदाबहार नगमे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

किशोर कुमार की आवाज में फंटूश फिल्म का गीत आपने सुना, साहिल जाह्नवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, साहिल ध्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बंदनी फिल्म के इस गीत में संगीत सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको अंतिम गीत सुनवाते हैं, शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की आवाजें। ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत सुनिए, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस गीत के साथ नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को और मंजरी आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: तो दीपा तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को भीगा भीगा सा नमस्कार। जहां पर गर्मी पड़ रही है वहां पर हम कहेंगे कि मेरी आवाज से दीपा की आवाज से और हमारे जो सखी सहेली में गाने बजेंगे उसको मिला करके एक भीना भीना सा प्यारा प्यारा सा नमस्कार
0: है। बिल्कुल, और यहाँ तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है साथियों कि ऐसा लग रहा है कुछ हिस्सा इस बरसात का वहां चला जाए जहाँ अब तक बरखा रानी बरसी नहीं।
1: बिल्कुल है ना, बहुत जरूरी है सब जगह बैलेंस होता रहे वर्षा का तो ज्यादा ठीक है
0: जी।
1: क्योंकि यहाँ और तो लग रहा है बस अब रुक जाओ थोड़े दिन, सांस ले लें दो हमको, थोड़ा धूप हमें भी दे दो, ऐसी
0: कुछ ऐसा ही हाल है। और इस बदलते मौसम

0: मैं हम आशा करते हैं आप सब अपना बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, तो
1: बिल्कुल
0: आप अपने परिवार का और अपना सभी का स्वास्थ्य का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
1: बिल्कुल। और चलो दीपा, हम बता देते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन। सबसे पहले तो खान पान की बात, क्योंकि दीपा आ गई, मंजरी आ गई है, तो कुछ ना कुछ तो
0: कैसे
1: बने
0: नहीं हो
1: है
0: कि
1: ना।
0: बातें
1: बिल्कुल
0: भोजन पान की होगी।
1: होगी बिल्कुल, क्योंकि पंजाबी छोले आजकल हम लोग बताने वाले हैं और भटूरे साथ में, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। तो मेरे ख्याल से सबके लग रहा है, सबको स्वाद आ रहा होगा छोले भटूरों का, है ना।
0: शायद आ रहा होगा। और ये देखिए ना, इस मौसम में ऐसी कुछ चीजें, चटपटी और कुछ तली भुनी चीजों का को हम उसका आनंद ले सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो बिल्कुल
1: और
0: लेना भी चाहिए।
1: लेना भी चाहिए। और अब हम बात उसके लिए बात करेंगे, अगला विषय मेरा है वन महोत्सव, तो जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आज है कथा सुधा
0: जी,
1: में, कहानी का दिन है, तो आज दीपा कौन सी कहानी हम लेकर आए हैं?
0: आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो बहनों, दो बहनें, इस कहानी का हम सुनेंगे भाग एक।
1: जी
0: और फिर देखो महीने की ये शुरुआत है, शुरुआत के महीने में तो ऐसा होता है ना, जब सैलरी आती है या व्यापार में अगर आप हैं तो जो भी एक नियत आप पैसे जो घर पे लेके आते हैं, तो शुरुआत में तो जिसको सैलरी आपको देनी है दे देते हैं, घर में जो आपके काम करते हैं, जो मदद करते हैं उनको दे देते हैं, स्कूल की फीस वगैरह चली जाती है। उसके बाद 15 तारीख से ही फिर ऐसा लगता है खिंचातानी से कुछ शुरू
1: धड़कने बढ़
0: होने
1: जाती है कि भाई अब
0: लगी
1: बजट बनाए, फालतू
0: हाँ
1: खर्चा नहीं
0: क्या हो
1: करें।
0: रहा है क्या नहीं हो
1: हाँ
0: रहा है।
1: बिल्कुल, कोई कुछ कहता है तो नहीं भाई अभी रुक जाओ अभी
0: हाँ
1: नहीं।
0: सही बात
1: बचत
0: है।
1: करने के बारे में हम सभी सोचते हैं और महिलाएं खासकर सोचती हैं, हालांकि थोड़ा वो खर्चा भी थोड़ा करती है मनमर्जी की, लेकिन बचत के प्रति वो जागरूक भी रहती है। तो इसके
0: बिल्कुल
1: बारे में चर्चा
0: जी।
1: करेंगे, लेकिन देखो मौसम को हम लोग थोड़ा सब जगह भेज देते हैं गीतों के द्वारा, तो सभी सखियों और सखाओं को सुनाते हैं ये गीत।

0: नहीं रोक सके। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। इसको तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। मैं जानती हूं ये बेशर्म जो है,
1: उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। एक एक लाख के तो उसके दो लड़के हैं, भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है, खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बददुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो रामदुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
2: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोज देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन डी थ्री, ओमेगा थ्री, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस डिफिशिएंसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है
0: दीपा,
1: भाई।
0: बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं। हमारे साथ ही लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही महंगी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था। कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौरी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे। ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो है वो नम हो जाया करती थी और कहते मेरा मन सोचता था कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहाँ पे खर्चा करना है कहाँ पर नहीं करना है, तो समझ लो कि माता पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते चले जाते हैं, तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रख पाते हैं, तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एनजाइटी, टेंशन,
0: बिल्कुल
1: ये सब चीज़ें आई जाती है। और फिर सहेलियों के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी खत्म हो क्यों जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: होता है ना ऐसा?
0: बिल्कुल ऐसा होता है। और यही होता ना कि अक्सर हम जो है बिना योजनाएं बनाकर बनाए खर्च करते रहते हैं, और छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है, और बचत को टालने की आदत यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है।
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और सखियो, हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं, तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत, वो जरूर बताते चलिएगा।
0: बिल्कुल। और अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं दीपा कि उनकी आय का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए। और अब देखिए ना, कुछ खर्चे तो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी है, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह, जैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं घर में, दूध का बिल देना है, तो बच्चों की फीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले से ही राशि तय कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च से हम बच सकते हैं। यानी कि जब
1: बिल्कुल

0: आप सैलरी लेकर आए तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें,
1: हाँ
0: है ना।
1: इस तरह से
0: इस
1: भी
0: तरह
1: कर
0: से
1: सकते
0: बचत
1: हैं,
0: कर सकते
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते हैं, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए ज़रूरी खर्चों के बाद बचे रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांट कर देखना चाहिए, जैसे अभी आप बता रही थी। तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग रख दो, 11 से 30, 11 से 20 का अलग रख दीजिए, और फिर 21 से 30 का खर्च आप अलग अलग एक सेगमेंट बना करके अलग
0: हाँ,
1: अलग रख
0: वो
1: के
0: भी रख
1: ये
0: सकते
1: भी
0: हैं
1: करके हम देख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और अक्सर दीपा हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है, ऐसा होता नहीं है। और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी मिलते ही 20-30% राशि बचत के लिए जो हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है, और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती है, जो हम
1: बिल्कुल।
0: कटौती करते हैं। और दीपा, एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को,
1: बिल्कुल।
0: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया है, तो उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं कि
1: हटा
0: नहीं भाई, ये
1: सकते
0: हमारे
1: हैं
0: लिए
1: जी,
0: आवश्यक नहीं है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किलें, देखिए बोलना आसान होता है करना बहुत
0: करना बहुत
1: मुश्किल होता है,
0: मुश्किल होता है।
1: लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने की 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें क्या
0: क्या
1: नहीं करें,
0: करें,
1: और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोले कि हमें थोड़ा सा पैसा पैसे की जरूरत है, तो
0: बिल्कुल
1: आप प्लीज हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे।
0: बच जाएंगे। और दीपा देखो, पहले के समय में ऐसा होता था ना, महिलाएं जो है दादी नानी काकी लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देती थी, या अपने साड़ी के फलाने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए, या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी, और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 रुपए की से शुरुआत क्यों ना हो, शुरू किया जाए। और आप
1: बिल्कुल।
0: गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हम हाँ अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहां हम सिर्फ जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये खरीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतजार करिए, उसके बाद ही उसे खरीदने की सोचें। देखिए आवेग में आकर के बहुत चीज हम ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले
0: किसी
1: महीने ले
0: किसी की
1: लेंगे।
0: आदत होती है दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती तो नहीं लगता है, मतलब पैसे वाले की, अब कुछ कुछ तो कर ले कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कि आप रुकिएगा,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना
0: ऑनलाइन
1: करिएगा,
0: नहीं, बिल्कुल
1: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा,
0: बिल्कुल,
1: 12 घंटे के बाद
0: या
1: आपके
0: अभी
1: मन में वो जो उतावलापन
0: जी
1: है ना वो हम बिल्कुल कम
0: शांत
1: हो
0: हो जाएगा।
1: जाएगा।
0: और जब खरीदने का मन भी करे तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है। तो
1: बिल्कुल।
0: इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा, हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे चलाएंगे, ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन, बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है कोई, या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना हमें
0: जी
1: कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं। तो इस ये सब

0: भी आपका, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: बजट में शामिल करके रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और देखो मेरे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है, शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा। सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे जरूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं, मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, EMI, बच्चों की फीस वगैरह, फिर आता है राशन, और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयाँ। इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देखकर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
0: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना
1: जी
0: दीजिए।

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर। हाँ। तो हमारे साथी लिखती हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के ज़माने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज़्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी ज़रूरत पड़ा तो उसमें उसे निकाला जाता था, उसमें से

0: निकाला जाता था पैसा, हम बच्चों को डरवाया जाता था, उस डब्बे में कोई नहीं छूएगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकाल कर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
1: क्या बात
0: माँ तो
1: है।
0: माँ ही होती है आखिर, है ना।
1: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में तीन मित्र जरूरी हैं, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र, वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया। क्या बात है। और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं।
0: और
1: तो भाई
0: देखो,
1: इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
0: बिल्कुल। और एक हमारी साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था। पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर से उड़ जाता था पैसा, पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा कर रख देते और भूल जाए, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50-100 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते हैं। बहुत अच्छी सी सबने बात लिख
1: जी
0: के
1: बिल्कुल।
0: रखी है।
1: और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
0: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहां की बहुत मन को मोहती
1: जी
0: है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
1: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं यात्रा में जाते हैं ना।
0: और देखो, वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहां पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना, तो
1: बिल्कुल,
0: बड़ा मजा आएगा,
1: बहुत
0: है
1: मजा
0: ना।
1: आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से
0: और कोई
1: दिखती
0: बड़े
1: हैं,
0: खुरदुरे भी
1: और
0: होते हैं कि
1: कोई
0: उंगली लगाओ
1: जी
0: तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है।
1: बिल्कुल
0: तो भाई देखो, कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए। इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने, फलने, फूलने तक का ध्यान रखा जाए। पानी समय पर देना है उसको, कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी इनके द्वारा हुई थी, तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती है।
0: बिल्कुल। और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। जो वनों को बहुत काटते जाते तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं, लेकिन सुनते हैं क्या
0: एक गीत।

0: ये जो काली काली घटाएं है ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखा रानी इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे साथ ही लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज या सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहाँ पर चलाए जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विषय विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम, जामुन, अमरूद, नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है, वृक्ष जब लगे होते तो देखो लकड़ी की और लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जल जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियां, शहद, फल, जामुन, आंवला, बेल आदि, मेवे, मशरूम, बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद, लाख, राल, ये सब चीजें इन सब, घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए, और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहां पर, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी वो सब वहां पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से, उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए, और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
0: बिल्कुल, सफलता सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज आज अलग अलग तरह से आई है, पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ें?
1: कोई भी पढ़ सकता है,
0: पढ़िए आप पढ़िए।
1: चलिए, तो हमारे एक साथी लिखते हैं छोले भटूरे की रेसिपी। 2 कप काबुली चने रात भर भिगोए हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें, और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, आधा चम्मच छोला मसाला लेना है इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूनें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं, अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी, तलने के लिए तेल लेना है आपको, मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें,

0: आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें। छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो, और गरम तेल में मध्यम तेज आंच पर गरम तेल करें, और मध्यम तेज आंच होनी चाहिए, और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा सुनहरा तल लें। और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ चूल्हे के संग में परोसें।
1: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
2: अरे अरे ए,

0: तो साथियों, आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है।
1: लेकिन चलने से पहले एक बात बताते, हमारी सखी ने लिखा है जंगल की, जब हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहाँ पर उन्हीं पत्तों पर वहाँ की सब्जियाँ साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियाँ और जंगली पत्तों पर बैठ कर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है।
0: बिल्कुल, तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना, अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा।
1: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से, तो सभी को मंजरी वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेहत नमा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहत नामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, पीसीओडी, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव, तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है, ये आजकल यही है पीसीओएस।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
2: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी

0: पे तो इफेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये
1: जी,
0: बीमारियां।
1: तो पीसीओडी असल में क्या है? ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस
0: पीसीओडी
1: है?
0: एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्चे आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी। तो इसका बहुत ज्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का, 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है, और ज्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज्यादा दिखता है।
1: जी
0: ये जो डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये 3 फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। और ये 3 फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है,
1: जी
0: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं, और एंड्रोजन बढ़ने लगता है, और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है, और इरेगुलर सब हो जाता है।
1: जी, तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
0: हाँ, तो इसके लक्षण ही बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना, और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्केंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाना, कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3 3 महीने आते हैं, ये 6 6 मंथ भी नहीं आते हैं, और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं, वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है,
1: जी
0: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर,
1: ओ
0: चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड, वो सब होता है।
1: जी, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
0: हाँ, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस। पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं,
1: मेडिटेशन साथ में।
0: यानी हाँ वो थोड़ा, तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम। एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है, और
1: जी
0: डाइट।
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: अच्छा, एक प्यार का नगमा।
1: एक प्यार का नगमा है मौजू की रवाने, सुनते हैं ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: गाने के बाद डॉक्टर आशालता, आपने जिक्र किया था कि पीसीओडी यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। हाँ, पहले जांच पद्धति बताइए। हाँ, किस तरह
1: तो
0: से ट्रीटमेंट,
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी,
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, पीपी, और उसमें कुछ आ गया 120 110 120 के आसपास तो HbA1c, ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है, इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत जरूरी है। और मेल पार्टनर में हम सीमेन काउंट, सीमेन एनालिसिस करते हैं।
0: और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी के जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या?
1: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी या IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर। और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक अच्छी सी टेस्ट रहता है
0: जी।
1: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज्यादा दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहा है तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
0: हाँ। तो ये भी इनफर्टिलिटी

0: भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं पीसीओडी और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर। और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब पीसीओडी का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इरेगुलर होता, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
1: यूटेराइन फाइब्रॉइड और सीस्टी जो है, तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को। अगर उसका साइज ज्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
0: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
1: यूएचजी में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है,
0: जी तो
1: सोनोग्राफी के माध्यम है उसको।
0: जी तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
1: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट नहीं देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है उसकी।
0: जी तो एक गाना और सुने, आपकी पसंद का
1: अजीब
0: कौन सा?
1: दास्ता,
0: अजीब दास्तां है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती हाँ। छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसमें, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा।
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे, जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली। जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है ऐसा मुझे लगता है। और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
0: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए?
1: डाइट
0: किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते,
0: 35%
1: हाँ। तो डाइट में, डाइट ही बहुत जरूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत जरूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज
0: जी,
1: और बच्चियां लड़कियां खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे, तो टाइम पे सोना है, उठना है पीसीओडी में, पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी

0: थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाई आलमंड, वाइटेक ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले
1: हाँ
0: सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं।
1: हाँ
0: लेकिन
1: हाँ
0: उपमा, पोहा, शीरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है।
1: हाँ
0: और हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: जैसे सभी मेथी, पालक ये सब। और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमेन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शुगर। शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते हैं। शुगर, मैदा, वाइट जो चीज़ें, राइस जैसे,
1: जी
0: हाँ। और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो। तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन D3 हो
1: जी
0: गया,
1: जी
0: विटामिन
1: जी
0: डी ये
1: और
0: बोलते हैं।
1: विटामिन डी
0: हाँ,
1: धूप से
0: सन,
1: ही मिलता है,
0: हाँ,
1: और
0: सनलाइट, हाँ,
1: आजकल धूप की बहुत कमी
0: बहुत
1: है।
0: कमी है।
1: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता
0: ऐसी,
1: नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से। आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई
0: हाँ,
1: और गाना।
0: नहीं, जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है।
1: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान
0: हाँ,
1: है।
0: तो और क्या
1: और
0: क्या डाइट्स ले सकते हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे
0: जी,
1: कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया।
0: चॉकलेट
1: हाँ,
0: नहीं ले
1: आर्टिफिशियल
0: सकते।
1: स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीज़ें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं खाना
1: नॉइस, हाँ
0: चाहिए
1: नहीं खाना चाहिए,
0: समोसे के
1: उससे
0: शौकीन के
1: ट्रांसफैट की,
0: लिए, मुश्किल
1: हाँ
0: है।
1: हाँ ये ट्रांस फैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड,
0: जी।
1: नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर एक बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी
1: हाँ,
0: महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या
1: वो
0: करना
1: फ्रूट्स
0: चाहिए?
1: से नेचुरल शुगर मिल जाती है
0: जी,
1: हमको। हाँ, तो फ्रूट्स
0: मतलब
1: इंटेक कीजिए।
0: जब अगर
1: हाँ,
0: शक्कर
1: खजूर,
0: छोड़े तो फल जरूर
1: हाँ
0: खाएं।
1: फल जरूर खाएं। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ,
0: जी
1: बिल्कुल गलत है।
0: हाँ।
1: शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है।
0: मीठा वो
1: और
0: भी है,
1: मीठा, हाँ,
0: नुकसानदेह है।
1: हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती
0: वो
1: है,
0: खा सकते
1: खा
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है,
1: हाँ,
0: तो
1: क्रॉनिक,
0: उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है, क्या
1: हाँ
0: निजात पाए,
1: क्रॉनिक
0: कैसे
1: स्ट्रेस
0: निजात
1: होता
0: पाए?
1: है। बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट
0: जी
1: की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं। बताइए कौन सा गाना
1: चलिए,
0: सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के।
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं।
1: हाँ।
0: जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए, इसके बारे में कुछ
1: अभी
0: कहिए
1: जो
0: आप?
1: है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है,
0: जल्दी आ जाता
1: हाँ
0: है,
1: जल्दी आ गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12 से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज्यादा डरने की चीज है, डरने की चीज।
0: तो क्या वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है, जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं, हाँ कोक ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
0: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता
1: हाँ,
0: है,
1: गर्भाशय में सिस्ट
0: तो
1: बन
0: ये
1: जाता है,
0: क्या तो समस्या है और इसका इलाज कैसे होता
1: गर्भाशय रहता गर्भाशय है, गर्भाशय के साइड में दो गर्भनलिकाएं रहती है, और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, 30, 28, 30। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं

0: है उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती
1: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है? क्या ऑपरेशन होता है या
0: है।
1: दवाओं
0: वो
1: से ठीक
0: सिस्ट
1: होता
0: तो
1: है?
0: नेचुरल सिस्ट, मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है,
1: जी,
0: होते
1: तो उसका कोई खतरा नहीं?
0: हैं, नहीं उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक
1: जी,
0: ठाक।
1: अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: सुर में यखियो
1: सुरमई अखियों में नन्ना
0: नन्ना
1: मुन्ना
0: मुन्ना
1: एक
0: सुनाई
1: सपना दे
0: सपना।
1: जा रहा। सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा लता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आईवीएफ तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जिसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ चलो, तो डायरेक्टली आईवीएफ नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफर होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं। नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देके ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर आईयूआई का सेटिंग करते हैं। आईयूआई भी नहीं हुआ तो
0: आईयूआई क्या है?
1: आईयूआई है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल लेते हैं। आईयूआई जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं, लैब में ये सब किया जाता है
0: और लैब से भी डोनेट,
1: हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है पेशेंट कौन है, पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज़्यादा लीगली होता है। और आईयूआई के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं आईयूआई हुआ तो वो फॉर आईवीएफ, आईवीएफ के तरफ जब जाते हैं तो आईवीएफ क्या होता है, तो आईवीएफ में ओम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: वो जो परक्टली
1: हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में
0: तो ट्रांसफर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
1: हाँ, पीरियड से सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर। हाँ। फर्स्ट तो इंजेक्शंस मेडिसिंस और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्रीबीज अंडा, और फिर बाद में
0: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, वो उस समय कैसे, फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
1: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है। हाँ। तकलीफ तो होती है उनको,
0: एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता?
1: एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है, और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
0: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है?
1: नहीं, अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
0: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
1: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन आईवीएफ जो फेल हो गया वो लास्ट है
0: जी,
1: लास्ट टप्पा है। आईवीएफ फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते
0: जी जी। तो पीसीओडी के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
1: हाँ होती है, पीसीओडी में पीरियड से ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है, कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है
0: जी,
1: ये भी होता है
0: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी और...
1: हाँ, नींद की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस।
0: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
1: हो
0: जाती है, और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
1: वो जेनेटिक

0: फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मनर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो
1: जी
0: महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
1: तो
0: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
1: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
0: इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
1: क्या कुछ
0: यूटेरस में
1: खतरा होता है?
0: हाँ, यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, और इसका कैंसर हो सकता है बाद
1: जी,
0: में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा।
1: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे
0: वैक्सीन
1: निजात?
0: उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है।
1: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और
0: हाँ,
1: कैंसर का डर पैदा होता है, तो
0: डर
1: ऐसा
0: पैदा
1: कहाँ तक सच्चाई है इसमें?
0: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है।
1: जी
0: कभी कभी ये पीसीओडी की तो सीस्ट पानी जैसे होता है उसका,
1: जी
0: हाँ कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
1: मतलब पानी,
0: सिस्टिक
1: हाँ,
0: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है
1: यूरिन के रास्ते से सफेद
0: यूरिन
1: पानी
0: के।
1: आता है ऐसा?
0: हाँ वो अलग चीज है, यूरिन के रास्ते जो सफेद पानी है तो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है।
1: जी,
0: हाँ
1: तो उसका क्या इलाज है?
0: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है।
1: जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये रात भीगी भीगी
1: ये रात
0: नरगिस,
1: भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है,
0: हाँ
1: सुनते हैं यही गाना।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती हैं, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर।
0: हाँ।
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं, हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है।

0: जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जैसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेज़र कर देते मशीन से, हेयर लेज़र रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
1: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
0: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
1: जी, तो इसका इलाज क्या है?
0: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
1: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
0: हाँ, इसका परीक्षण सेल परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल ये है ऐसा थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ट तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए। और महीने में एक बार तो भी सेल परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठी जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और ब्रेस्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
1: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मेमोग्राफी?
0: मेमोग्राफी कर,
1: तो
0: मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, FNAC, नीडल बायोप्सी।
1: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
0: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
1: और PCOD में मूड स्विंग बहुत होता है,
0: होते हैं।
1: तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का, कि अचानक किसी महिला को देखा है अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
0: मेंटल स्ट्रेस,
1: तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता
0: उसका
1: है?
0: उसका डाइट से ही, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसे है वो। इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है
1: जी,
0: एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए
1: जी,
0: अच्छे से किताब पढ़ो, अच्छे से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज़ तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, तो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, हॉबीज है कुछ, उस पर ध्यान दो।
1: और PCOD की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगी आप हमारे श्रोताओं को?
0: PCOD से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब PCOD का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से।
1: जी, कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
0: बस हैप्पी रहो, किसी को PCOD ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको PCOD, मेनार्क, मेनोपॉज, ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये PCOD आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब बाहर निकलने के लिए। पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक जीवन शैली।
1: डॉक्टर आशा लता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए सीए वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: ये साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सुनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, खड़गवा, झींगापारा, बोझा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, पेंडारी, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा, जिनिया, कनकपुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, घटगांव।

0: अतीढा, बाबा पहाड़, बरडान, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के दुलदुला, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये साजापानी, गट्टीबुड़ा, करडेगा, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, तीता पाकेर, सोनाजोरी, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, बिमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल की छाल, धरमजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 115 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, गेदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये गीत कुमारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा, एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भोड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरीकादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के सोना खान और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये फुरफुंदी, झालपानी, औराई, बरबसपुर, मुरुमडी, छताल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओर, ताराझड़, डडईपानी, कोलापारा, बुडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे सीए वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है कबीर सिंह, आवाज अरिजीत सिंह की है, बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है सचेत परंपरा ने।

कबीर सिंह, अभी आपने सुना इस फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत, बोल इरशाद कामिल के थे और संगीत सचेत परंपरा का था। लीजिए सुनिए अगला गीत सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार के युगल स्वरों में। बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और इस गीत को संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने। फिल्म है फन्ने खां।

आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म है फिल्लौरी। आवाज़ें रोमी और पावनी पांडे की हैं। बोल लिखे हैं अन्विता दत्त ने और संगीत शाश्वत सचदेव का है।

वीर जारा, लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर के युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीतकार हैं संजीव कोहली।

चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए आखिरी गीत अरिजीत सिंह और शाशा के युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने और संगीत से सजाया है मिथुन ने। फिल्म है हाफ गर्लफ्रेंड।

चित्रपट संगीत अभी आपने सुना। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। शाम के 5:35 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत।

युवा साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी शुभम पाठक। और साथियों कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है युवा जगत। साथियों बारिश की रिमझिम बूंदों ने मौसम को सुहाना कर दिया है, और इस सुहाने मौसम में बेसन के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। साथियों मानसून की शुरुआत अपने साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी लेकर आती है। इस मौसम में नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया, वायरस और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी हमें अनेक बीमारियों से बचा सकती है। सबसे पहले केवल स्वच्छ और उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिए। बाहर खुले में बिकने वाले कटे हुए फल और अस्वच्छ भोजन से बचें। भोजन को हमेशा ताजा और गर्म ही खाएं तो बेहतर रहेगा। साथियों बारिश में भींग जाने पर जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहनें और शरीर को अच्छी तरह सुखाएं। लंबे समय तक गीले कपड़े या जूते पहनने से सर्दी, खांसी और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। घर और आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि रुका हुआ पानी मच्छरों के पनपने का सबसे बड़ा कारण होता है। साथियों डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों से बचाव के लिए पूरी बांह के कपड़े पहने, मच्छरदानी या मच्छर रोधी उपायों का आप प्रयोग करें। साथियों इस मौसम में अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए संतुलित आहार लें। मौसमी फल सब्जियां पर्याप्त मात्रा में खाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित योग व्यायाम करें। यदि तेज बुखार, लगातार खांसी, उल्टी, दस्त या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दें तो स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें और जैसा चिकित्सक कहें उस रास्ते को अपनाएं। साथियों इस मानसून का स्वागत प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता के साथ करें। थोड़ी सी सावधानी हमें और हमारे परिवार को स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रख सकती है। साथियों आज की बात में हम बात करने जा

वर्ल्ड जूनोसिस डिप की, जिसमें आप सुनेंगे कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री बिलासपुर के सहायक आचार्य डॉक्टर दीपक कुमार कश्यप से, और साथ ही साथ ही आज का क्रम होगा कौशल विकास, जिसमें हम सुनेंगे गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न रिसर्च स्कॉलर्स के कौशल विकास पर उनके विचार। साथियों, आपसे बातचीत का क्रम यूं ही जारी रहेगा, पर समय हो गया है गाने का। आइए सुनते हैं फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे का यह गाना, जिसे अपने सुरों से सजाया है आशा भोसले, अलका याग्निक और उदित नारायण ने, बोल हैं आनंद बख्शी के, और संगीत से सजाया है राहुल शर्मा ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मुझसे दोस्ती करूँगा की ये गाना, जिसे अपने सुरों से सजाया था आशा भोसले, अलका याग्निक और उदित नारायण ने। साथियों, समय हो गया है वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में जानने का और अपनी जानकारी को बढ़ाने का। आइए सुनते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री बिलासपुर के सहायक आचार्य डॉक्टर दीपक कुमार कश्यप के साथ खास बातचीत का ये अंश। साथियों, पेश है आपके सामने वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में विशेष बातचीत।

0: युवा साथियों नमस्कार। साथियों आज 6 जुलाई को पूरे विश्व भर में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जा रहा है। साथियों इस दिवस का उद्देश्य लोगों के उन बीमारियों के प्रति जागरूक करना है जो जानवरों से मनुष्यों में या मनुष्यों से जानवरों में फैल सकती है। साथियों आज के समय में लगभग हर किसी के घर में किसी न किसी प्रकार का पालतू पशु उनके घर में रहता है। तो साथियों इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बिलासपुर के कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री बिलासपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार कश्यप सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका आकाशवाणी बिलासपुर के इस क्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू शुभम जी।
0: सर आप अपने बारे में सबसे पहले आकाशवाणी के श्रोताओं को कुछ बताएं, आप कहां से हैं, आपकी रुचि इसमें कैसे आई और आप क्या क्या करते हैं?
1: तो शुभम जी सबसे पहले जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि अभी मैं वर्तमान में पशु चिकित्सा पशु एवं पशुपालन महाविद्यालय बिलासपुर में कार्यरत हूँ। इससे पूर्व मैंने अपनी सेवा लगभग 11 साल मैंने पहले सूरजपुर में भी दिया था। सूरजपुर में अभी रिसेंटली मैंने 1 अप्रैल को यहाँ बिलासपुर ज्वाइन किया। इससे पहले मेरी अगर सेवाओं की बात करें तो इससे पहले मैं उत्तराखंड में, उसके बाद मैंने 3.5 साल करीब राजस्थान में और सन 2015 में मैंने छत्तीसगढ़ ज्वाइन किया जिसमें मेरे सबसे पहले पोस्टिंग सूरज। इसके बाद सूरजपुर में 2015 से 2026 तक मैंने मार्च तक वहाँ अपनी सेवा दी और 1 अप्रैल से अभी बिलासपुर रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया।
0: जी जी, तो लगभग आपने भारत के अलग अलग कोनों में अपनी सेवाएं दी है, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको इतने जगह का अनुभव रहा होगा और आप अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सर आज वर्ल्ड जूनोसिस डे पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो सर सरल भाषा में यदि बात करें तो वर्ल्ड जूनोसिस डे क्या है?
1: तो वर्ल्ड जूनोसिस डे का मीनिंग ये होता है कि हम जनरली उन बीमारियों के बारे में जानते हैं जो समानता हम देखते सुनते हैं और जो बहुत प्रचलित, और जूनोसिस एक ऐसा बीमारी है जो मुझे लगता है कि इसमें अभी अवेयरनेस, जैसे कि आज हम कार्यक्रम आप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों की आवश्यकता है क्योंकि इसके बारे में जानकारी बहुत कम और जानकारी के अभाव में ये बीमारी आसानी से फैल जाए। और इसका अगर हम रिसेंट उदाहरण लें तो सबसे प्रमुख उदाहरण के तौर पर कोरोना पा सकते हैं, देख सकते हैं कि इससे हम कितने प्रभावित थे। इससे हमारी आर्थिक संबंधित हर तरीके से हमारे बहुत प्रभावित किया इस बीमारी ने। और ये भी एक प्रकार का जूनोसिस बीमारी, आपको बताना चाहूंगा कि ये बैट से ओरिजिन होता है, बैट मतलब चमगादड़ से होता है और हमको पता नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि हम अपने घर के छतों में अंधेरे जगहों में जब ये चमगादड़ अपने निवास बनाते हैं तो हमको ये पता नहीं होता कितने खतरनाक होते हैं। और धीरे धीरे ये अपने अंदर ऐसे ऐसे वायरसेस को अपने अंदर प्रभावित रख लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो समय पड़ने पर वो किसी भी मनुष्य को काटने के दौरान ये ट्रांसमिट। तो सबसे पहले जूनोसिस को अगर हम कहें कि जूनोसिस होता क्या है, तो जूनोसिस वो बीमारियां होती है जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों तक फैलती है जिसको हम जूनोसिस कहते हैं। और ये जूनोसिस इसलिए इम्पोर्टेंट है जानना हमको क्योंकि ये हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी, तो हम उसमें और पशुओं के बीच हमारा जो लगाव है वो हमेशा निरंतर बना रहता है, इससे चांसेस ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे में सिंपल से इसकी बात कहें तो इसके जो अलग अलग तरीके होते हैं फैलने, तो इस माध्यम से हमारे शरीर में आ सकते हैं, जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है कि सीधे संपर्क में आने पर, तो हम जानते हैं कि आज के टाइम में हम गाय, कुत्ते, बिल्ली है ना, बहुत सारे जो जानवर जिसको हम अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए पालते हैं, तो हम पैट से कांटेक्ट में जनरली घर पे रखते हैं। होता ये है कि जब हम उसको टच करते हैं तो उस दौरान उनके शरीर से बहुत सारे ऐसे ऐसे पदार्थ का श्रावण होता है जिसमें ये वायरस बैक्टीरिया जो

0: बीमारियां जो करते हैं ये मौजूद होते हैं। जैसे अगर बात करें तो मांस है, दूध है, इसके अलावा आप पाएंगे कि उनके मूत्र है, मल है और सलाइवा थ्रूप होता है। तो ये सब माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से वो शरीर एक्सीडेंटली हमारे मनुष्यों के शरीर पे आ जाते हैं। और आपको बता दें कि हमको लगता जरूर है कि एक जीवाणु या एक वायरस जो विषाणु होते हैं यही कारक होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कारक होते हैं जैसे कि आपको बता दें कवक एक फंगस भी होता है जो रिंग वर्म आपने देखा होगा, इस शरीर में गोल चक्के चक्के निशान हो जाते हैं, यही एक जूनोसिस बीमारी का साइन। कवक भी एक माध्यम बनता है जो विषाणु और जीवाणु से अलग होता है। और आपको बता दें कि जीवाणु और विषाणु एक समय के बाद अपने आप को कवर भी हो जाते हैं दवाइयों के माध्यम से, लेकिन कवक को ठीक करने में हमको काफी लंबा समय लगता है। तो जैसे जीवाणु की बात करें तो जीवाणु में जैसे सबसे कॉमन बीमारी आप देखेंगे तो ये चीजें बहुत ऐसे प्रचलित नहीं है, लेकिन हम उसको जो वेटनरी की भाषा में ब्रुसोलोसिस कहते हैं। ब्रुसोलोसिस एक बीमारी है जो दूध के माध्यम से आती है, दूध या रक्त के माध्यम से, या जो प्रभावित जो पशु है संक्रमित पशु है उनके माध्यम से आती है। तो ये मनुष्यों को भी फैलती है, इसलिए हम जूनोसिस की कैटेगरी में रखते हैं। विषाणु की बात करें तो वो जो सबसे प्रमुख बीमारी है जिसको देख नाम से ही हमको डर लगता है वो है रैबिस। रैबिस जो है कि हमारे पैट एनिमल्स उसके माध्यम से हमारे, इसके अलावा मैंने फंगस के बारे में बताया, फंगस में जैसे रिंगवर्म, तो ये इसके और भी देखें तो जैसे ये तो हम बड़े जानवरों की बात करें, अब हम छोटे कीड़े कीड़े मकोड़ों की बात, तो इसमें पाएंगे कि वेक्टर बोन जो कि कीड़ों के माध्यम से जैसे उसमें मच्छर आते हैं, मच्छर के माध्यम से हमको मलेरिया होता है, ये चुनौती बीमारी के माध्यम से। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, ऐसे एनिमल पशु कीड़े हैं जिसके माध्यम से ये बीमारियां हम तक पहुंच पाती
1: हैं। जी, तो दीपक सर आपने बहुत अच्छे से जूनोसिस से जो बीमारी है उसके बारे में हमारे युवा साथियों को आकाशवाणी के श्रोताओं को बताया, वो कैसे फैलती है और उसके क्या क्या प्रकार हैं, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो या कवक जो फंगस आपने बताया। अब सर यहाँ सबसे जरूरी बात आ जाती है कि यदि किसी संक्रमित पशु के संपर्क में कोई व्यक्ति आया है और उससे उसको यह बीमारी हो गई है तो उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, या अपने आसपास कोई किसी प्रकार का पालतू पशु रखा है कुत्ते बिल्ली या गाय और उसके संपर्क में इस तरीके से नहीं आया है कि जिससे वो बीमार हुआ है, लेकिन वो अपने बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां अपना सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुन जी, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। तो ये हम इसके लिए सबसे पहले सोर्स पे जाएं, तो जैसे मैंने कहा कि एक संपर्क में आने पर तो सबसे अच्छा ये होगा कि हम कभी भी अगर हमारे पालतू पशु के अगर हम संपर्क में आते तो उनके जब भी हम साथ अगर खेल रहे हैं, उनको हम छू रहे हैं, हो सकता है हम उसको नहला रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कुछ भी किसी भी माध्यम से उनके हम सीधे संपर्क में आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम होता है बचाव के लिए कि हम इनसे जब उनके संपर्क में से हम हटे तो सबसे पहला काम है हम अपने हाथों को अच्छे से धोना, क्योंकि यही एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हमारे उस शरीर में आ सकता है। और खासकर हमको उन बच्चों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जिनकी आयु 5 साल से नीचे हो, क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि आप पाते हैं कि ये बच्चे पालतू पशुओं के साथ खेलने के बाद ये अपने हाथों को उंगलियों को सीधे मुंह पे रखते हैं जिससे ये सीधे बॉडी में ट्रांसमिट। दूसरा होता है कि इनडायरेक्ट जो है जैसे कि हम संपर्क में तो नहीं आ रहे हैं उनके, लेकिन होता क्या है वो जो पालतू पशु जो अपने एरिया में जहाँ निवास करते हैं जहाँ रहते हैं या रखते हैं, इसके अलावा वो हमारे घर के चारों तरफ मूव करते हैं, कभी बिस्तरों पे, कभी कालीन पे या आसपास के प्लेसेस पे जब चलते हैं तो वो एरिया भी कंटामिनेटेड हो जाता है इन्फेक्शियस। ऐसे एरिया को भी हमको क्या करना चाहिए कि उस एरिया को वाइप कर दें, हमारे पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आते हैं उससे रेगुलरली उसको मॉपिंग करते हैं अच्छा लगाते हैं तो उनसे वो कॉन्टेक्ट एरिया इनडायरेक्टली रूप से बंद हो जाता है। दूसरी चीज सेवन की बात करें तो मोस्टली हम अभी तक से बात पशुओं की कर रहे हैं, तो पशुओं के माध्यम से हमको जो उत्पाद मिलते हैं जिसमें दूध आता है, मांस आते हैं, अंडे आते हैं, तो इन चीजों को उपयोग करने से पहले सबसे मनमुख होता है कि इसको कभी भी रॉ फॉर्म कच्चे फॉर्म में उपयोग नहीं करना
1: चाहिए।
0: आपको बता दूं कि हम तो मांस अंडे और दूध की बात कर रहे हैं, कच्चे जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं सब्जियां भी होती हैं इसको भी वाश करके खाना चाहिए क्योंकि इसमें परजीवी पाए जाते हैं। कुछ परजीवी आपको बता दें कि सब्जियों के माध्यम से भी पेट में आते हैं जो कि बैक्टीरिया या परजीवी जो है, ये पेट जैसे कि साल्मोनेलोसिस होता है, साल्मोना करके बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमारा पेट खराब होता है, ये कहीं ना कहीं वो माध्यम से आते हैं। कुछ परजीवी हैं जो जैसे टेपवर्म होते हैं जिसको कीटा कृमि कहते हैं, ये भी आते हैं, और भी परजीवी हैं जैसे कि अगर हम फैट है अगर बिल्ली है उसके संपर्क में तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस करके एक बीमारी होती है, तो ये कुछ बीमारियां होती है। तो हम बात कर रहे थे बचाव की, तो इनसे बचने का एक उपाय ये है कि जो भी एरिया में वो रहते हैं जहाँ जहाँ उनका उस एरिया को प्रॉपर साफ करें, अगर उनके यूटेंसिल्स वगैरह या बर्तन वगैरह को

0: साफ कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारे हाथ अच्छे से खुले होना चाहिए। उनके यूटेंसिल जो यूज की है वो कभी भी रॉक होंगे पड़े नहीं होने चाहिए, वो हमेशा वॉश करके साफ सुथरे रखने चाहिए। खाने की बात करी थी तो दूध को हमेशा पॉस्चुराइजेशन जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहें कि अच्छे से उबाल के पीना चाहिए। कच्चे मांस को अगर उपयोग कर रहे हैं तो मांस को अच्छे से पका के उसके बाद उसका सेवन करना चाहिए। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे कि ये मनुष्य के उपयोगी के हिसाब से, अब हम बात करें पशुओं के बारे में जिसको हमने अपने घर पे रखा
1: जी,
0: तो ऐसे पशुओं के लिए हम क्या करना चाहिए, जैसे पशु हैं या पालतू मैंने जैसे डॉग है कैट वगैरह पाला है, तो उनके नियमित कृमिनाशक दवाओं का सेवन और टीकाकरण, ये दो महत्वपूर्ण चीजें निरंतर रूप से करानी चाहिए, क्योंकि जो नजदीकी जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पे आपको जैसा बताया जाएगा जैसा वहाँ पे निर्देश दिया जाए उसके हिसाब से उसको कराते हैं। तो टीकाकरण और डिवर्मिंग से हम इन जैसे काफी सारे जो बीमारियां हैं जो जिसको
1: बच सकते हैं जी। तो सर आपने बहुत अच्छे से पूरे विषय को हमारे युवा साथियों के बीच रखा। युवा साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व जूनोसिस दिवस जो हम 6 जुलाई को पूरे वर्ल्ड भर में मना रहे हैं वो इसलिए भी महत्व हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सन 1885 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पॉस्चर ने पहली बार रेबीज के रोगी को सफलतापूर्वक यह टीका लगाया था। तो सर समय हमें इतनी की ही इजाजत देता है, विशेष यदि किसी को इस बारे में जानकारी लेना हो तो आप डॉक्टर दीपक कश्यप सर से वेटरनरी कॉलेज जो अपना बिलासपुर में है उनसे संपर्क कर सकते हैं। सर आपने कीमती समय इस विषय के लिए दिया, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे वर्ल्ड जूनोसिस डे पे खास बातचीत वेटनरी कॉलेज बिलासपुर के सहायक आचार्य डॉक्टर दीपक कुमार कश्यप सर की। तो साथियों, समय हो गया है एक गाने का, आइए सुनते हैं फिल्म वीर जारा का यह गाना, जिसे अपने सुरों से सजाया है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

साथियों, अब समय हो गया है आज के क्रम कौशल विकास को सुनने का। आपके सामने पेश है कौशल विकास पर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न रिसर्च स्कॉलर्स के विचार।

0: युवा साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी शुभम पाठक। साथियों आज बात करेंगे कौशल विकास एवं उद्यमिता की। साथियों कौशल विकास केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला है। साथियों किसी भी व्यक्ति का कौशल उसके ज्ञान के साथ उसके आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे बड़ा आधार बनता है। आज के समय केवल शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करना ही नहीं बल्कि ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक कौशल, तकनीकी दक्षता और नवाचार की क्षमता उतनी आवश्यक है। साथियों आज इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी शशिकेश राज और प्रकृति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए शशिकेश राज से बातचीत करते हैं। शशिकेश, आप हमारे युवा साथियों को यह बताएं कि आज के समय में कौशल को यदि सरल शब्दों में समझना हो तो वो क्या है।
1: नमस्कार शुभम जी, आज के समय में कौशल एक सतत प्रक्रिया के रूप में आप देख सकते हैं जिसमें प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुभव के माध्यम से व्यक्ति की तकनीकी, व्यावसायिक, प्रबंधकीय और जीवन उपयोगी क्षमताओं का विकास किया जाता है, जिसमें बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल आपको तैयार किया जाता है, आपको रोजगार योग्य बनाया जाता है ताकि आप स्वरोजगार भी कर सके, उद्यमिता को बढ़ावा दे सके, आपके अंदर कार्य कुशलता है ताकि आप बेहतर तरीके से आय और जीवन स्तर में सुधार कर सके।
0: तो शशि जी, आप एक शोधार्थी के रूप में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, तो यदि कोई विद्यार्थी आपके पास कुछ कौशल सीखने आना चाहते हैं तो वो क्या क्या उसके पास ऑप्शन है, आप क्या क्या उसे सिखा सकते हैं?
1: अगर हमारे संस्थान में कोई कौशल सीखना आना चाहता है तो वो यहाँ पर हमारे रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मशरूम की ट्रेनिंग ले सकता है, मशरूम उत्पादन, मशरूम से तमाम तरह के बाय प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग ले सकता है, पैरा आर्ट बनाने की ट्रेनिंग ले सकता है, डोकरा आर्ट बनाने की ट्रेनिंग ले सकता है और जोला उत्पादन की ट्रेनिंग ले सकता है, साथ ही साथ वह केचुआ खाद और तमाम तरह के ट्रेनिंग को ले सकता है।
0: आपने बहुत अच्छे से हमारे युवा साथियों को, आकाशवाणी के श्रोताओं को शशि आपने बताया। तो हमारे साथ युवा साथियों एक छात्रा, वो भी शोधार्थी है, प्रकृति निषाद वो जुड़ी हुई है, आइए उनसे बात करते हैं। प्रकृति जी, आप सबसे पहले हमारे युवा साथियों को बताएं कि आप किस विषय पे रिसर्च कर रही हैं।
2: नमस्ते, मैं प्रकृति निषाद, मेरा रिसर्च जो टॉपिक है वो क्लाइमेट चेंज पे है, जो फार्मर्स लोगों के ऊपर है
0: जी।
2: कि उन किसानों को क्लाइमेट चेंज आजकल जो हो रहा है उनसे उनको क्या समस्याएं आ रही है
0: जी।
2: और समस्याओं से अगर वो जूझ रहे हैं तो क्या प्रयत्न कर रहे हैं अपने अच्छे उत्पादन के लिए।
0: अच्छा, बहुत अच्छे विषय पे शोध का कार्य आप कर रही हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रकृति जी कौशल के ऊपर, बहुत सरल शब्दों में शशिकेश ने कौशल क्या है वो हमारे युवा साथियों को बताया। प्रकृति, आप हमारे युवा साथियों को यह बताएं कि कौशल विकास के क्या क्या फायदे हैं।
2: कौशल विकास का सबसे बड़ा फायदा देखा जाए तो हम जी सबसे कहलाता है रोजगार
0: जी।
2: आजकल के बच्चे रोजगार पे ज्यादा खोजते हैं इधर उधर, तो सबसे होता है कि अब रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जैसे उनको नए कौशल सीखने से नौकरी मिलने की संभावना होती है। दूसरा देखा जाए तो उनके अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ती है
0: जी।
2: जैसे वो खुद का काम, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे वो थोड़ा बड़ा करते करते कहीं आगे जा सकते हैं
0: जी।
2: और इन सबसे उनको आय में वृद्धि होती है
0: जी।
2: उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और आने वाले उन समय में बाजारों में क्या नई मांग आ रही है, ये सब होते हैं।
0: तो बड़े अच्छे से प्रकृति ने बताया कि कौशल विकास के कई फायदे हैं, आप आत्मनिर्भर बनते हैं, आपको नौकरी मिल सकती है, आप बिजनेस कर सकते हैं और इन सबको करने के बाद आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। साथियों हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक और शोधार्थी असीना इक्का जुड़ी हुई है, आइए उनका स्वागत करते हैं। असीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुभम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकाशवाणी में बोलने का मौका दिया।
0: आप हमें ये बताएं असीना जी कि आप कौशल विकास को लेकर के क्या समझते हैं और किस तरीके का कौशल विकास आपका हुआ है?
3: हमारे यहाँ बहुत सारे कलाओं का ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे पैरा आर्ट, बैम्बू आर्ट से बहुत सी चीजें बनाने सिखाते हैं और पैरा आर्ट जो वेस्ट होता है उसे हमारे यहाँ बहुत सारे चीज बनाते हैं।
0: और पैरा आर्ट जो आपने कहा कि जो वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब धान वाला आप कह रहे हैं ना?
3: हाँ, धान वाला।
0: और उससे बहुत सारी कलाकृतियाँ बनती है और उसका मार्केट रेट क्या होता है?
3: ये 1000 तक की बिकती है।
0: 1000 रुपए तक बिकता है। और किसी को असीना ये सीखना हो तो कैसे सीख सकते?
3: तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यहाँ रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों हमारे साथ इस विषय पर आगे बातचीत करने के लिए एक और शोधार्थी खीर सागर पटेल जुड़े हुए हैं, तो खीर सागर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद शुभम जी।
0: तो सबसे पहले खीर जी आप ये बताइए कि आपका किस विषय पर रिसर्च चल रहा है?
4: मेरा शोध का विषय नदियों के उद्गम स्थल पे है, उनका संरक्षण और उनका संवर्धन कैसे किया जाए उसके ऊपर है, ताकि पुरानी जल स्रोतों को संयोज कर नदियों का संरक्षण किया जा सके।
0: नदियों के संरक्षण के ऊपर आपका कार्य है। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं खीर सागर जी, कौशल विकास

0: के ऊपर में। तो आपने इन गर्मियों के छुट्टी में क्या कौशल सीखा?
1: शुभम जी, इन गर्मियों के छुट्टी में मैंने तो बहुत सारी कौशल सीखे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे पुराने समय में प्राचीन काल से ही ज्ञान का जो प्रसार है कौशल के ट्रांसफॉर्मेशन से होता था, जिससे स्किल जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँचती थी। अभी वर्तमान समय में ऐसा होता है कि कोई किसान घर का अगर कोई लड़का या बेटा है तो उसको किसानी नहीं आएगा बल्कि अन्य काम सीखेगा या फिर पढ़ाई में व्यस्त हो जाएगा, जिससे कारण हमारी जो पीढ़ियां हैं वो स्किल को आगे तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाती है। तो अगर कौशल के माध्यम से अगर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अगर स्किल को बढ़ाया जाए तो उससे समाज में भी सभ्यता आएगी और
0: अच्छा रहेगा समाज के लिए। बहुत अच्छे से आपने खीर सागर जी विषय को रखा और आपने बहुत जरूरी विषय बताया, कौशल विकास, खेती करना और खेती में नए नए आयाम जो हैं उसको सीखना अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, अपने पूर्वजों से, अपनी माँ से, अपनी नानी से, और नए नए जो प्रयोग हैं खेती में, मजदूरी में, ये भी एक प्रकार का कौशल है। तो साथियों, हम लोग कौशल विकास पे और बातचीत करें। साथियों, अभी आप सुन रहे थे आज के क्रम कौशल विकास पर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न रिसर्च स्कॉलर्स के विचार। साथियों, इसी के साथ घड़ी की सुइयां अब आपसे विदा लेने की ओर इशारा कर रही है। आपको आज का यह विशेष कार्यक्रम युवा जगत कैसा लगा, आकाशवाणी बिलासपुर को पत्र अथवा ईमेल के माध्यम से जरूर बताएं। और अब अपने साथी शुभम पाठक को आज्ञा दें। नमस्कार।

अभी हम प्रस्तुत कर रहे थे युवा जगत, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आइए, आपको हमारे आज और कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें। सबसे पहले हमारे आज के शेष आकर्षण, अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें। आज शाम 7:20 का समय होगा ग्राम सभा का, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा दलहनी तिलहनी फसलों के रकबा मां बढ़ाओ। साथ ही श्रीमती नीलिमा रमन, सहायक संचालक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर, जानकारी देंगी कृषक उन्नति योजना धान के बदले अन्य फसल विषय पर। भेंटकर्ता होंगे मेंगू भैया। इसके अलावा सुनिएगा मौसम मंडी और सामायिक सुझाव और गीत। आज रात 8 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम चल पढ़े लजाबो। प्रायोजक होंगे कलेश्वर साहू, जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा। रजनीगंधा का आनंद लीजिएगा आज रात 8:15 पर। 9:15 से रात 11 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के शेष आकर्षण।

आइए अब आपको हमारे कल के कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल यानी मंगलवार सुबह 6:05 पर सुनिएगा देशवंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खेती की बात का समय होगा कल सुबह 6:30 का, जिसमें सुनिएगा कम लागत में अधिक मुनाफा, आधुनिक बागवानी की नई दिशा। वाचन स्वर होगा चित्रलेखा तिवारी का। रामचरित मानस गान आप सुनेंगे कल सुबह 6:35 पर, और चिंतन का समय होगा 6:55 का। विषय होगा भक्ति। आलेख और वाचन स्वर होगा आत्मानंद का। कल सुबह 7:05 पर सुनिएगा आज सुबह सदाबहार नगमे हम आपके लिए लेकर आएंगे कल 7:30 पर। कल 8:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां, और 10:00 आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से ही रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। नए तराने आप सुनेंगे कल 10:30 पर। कल 11:00 सुनिए

0: का प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल शाम 5 बजे का समय होगा सीए वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का हमर हाथी हमर गोट। कल शाम 5:05 पर अमृतधारा में डॉक्टर राजेंद्र जोशी जानकारी देंगे नाक कान गले की सामान्य बीमारियां और बचाव विषय पर। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। कल शाम 5:35 पर सुनिएगा महिला सभा, जिसमें आप सुनेंगे वन महोत्सव का समापन और क्रम पर्यटन स्थल में मंदिर दर्शन के साथ सामाजिक जिम्मेदारी। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। ईमेल करें गीत सुने हम आपको सुनवाएंगे कल शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे। कल 7:20 पर सुनिएगा ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा कृषि विकास में सरकारी योजना मन के योगदान। किसान वाणी आप सुनेंगे कल शाम 7:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे आत्मनिर्भर भारत मीठी क्रांति। साथ ही सुनिएगा स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी में ग्राम बहरा डी विकासखंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा के कृषकों के मध्य ध्वनियांकन किया गया कार्यक्रम। संयोजन और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। कल रात 8 बजे सुनिएगा आशा भोसले को सुगम संगीत में। रजनीगंधा पेश करेंगे कल रात 8:15 पर। तो ये थे हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण अभी आपने सुना। FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हम
1: छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहें कि सहकारी आंदोलन सुधार डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम ले विस्तार के एक नवा चरण में प्रवेश करत है। मुख्यमंत्री आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपया ले ज्यादा लागत के आने आने विकास काम के भूमि पूजन करें। और राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन पर रासायनिक खाद के पर्याप्त भंडार मौजूद। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता मंत्रालय के 5वां स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई। ये मौका में ओमन किहिन के सहकारी आंदोलन सुधार डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम ले विस्तार के एक नवा चरण में प्रवेश करत है। श्री शाह किहिन के राष्ट्रीय स्तर के 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाए गए है। ओमन किहिन के सहकारिता मंत्रालय पाछू 5 साल ले सहकारिता के माध्यम ले समृद्धि के मंत्र के पालन करत है, जिखे से मंत्रालय डहार ले लाखों लोगन के जीवन में बदलाव आए है। केंद्रीय मंत्री है किसान मन ले जैविक कृषि उत्पाद के उत्पादन बढ़ाए और रासायनिक उर्वरक के संग्रह कीटनाशक के उपयोग कम करे के अपील करें। श्री शाह कहें कि पाछू 5 में सहकारी प्रणाली ला आधुनिक पारदर्शी प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाए के दिशा में सराहनीय काम करे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में रखे गए एक ठिन कार्यक्रम में 103 करोड़ रुपया ले ज्यादा लागत के आने आने विकास कार्य के भूमि पूजन करें। इमा छात्र छात्रा मन पर आधुनिक छात्रावास कैंसर भवन के विस्तार और चिकित्सक मन के संग्रह कर्मचारी मन के आवासीय परिसर समेत आने आने निर्माण काम शामिल है। कार्यक्रम ला संबोधित करत मुख्यमंत्री हकीन के स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण करी। ये परियोजना प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा ला नवा ऊंचाई दीही और मरीज विद्यार्थी और चिकित्सक मन ला एक हर फायदा मिली। कार्यक्रम ला उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ह घलो संबोधित करें। बता दें कि परियोजना के पहली चरण में 200 सीटर आधुनिक छात्र छात्रावास बनाए जाही, उन्हें दूसरा चरण में कैंसर भवन के विस्तार करे जाही। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती में श्रद्धांजलि अर्पित करत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है डॉ मुखर्जी के जयंती में ओमनला श्रद्धांजलि देवत ओमनला साहस राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा के शाश्वत प्रतीक बताए हैं। श्री मोदी है एक दिन आलेख में कहें कि डॉ मुखर्जी के जीवन अखंड भारत पर उखर अटल प्रतिबद्धता के प्रमाण है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका आज लोकभवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती में ओखर चित्र में पुष्पांजलि अर्पित कर

0: के श्रद्धांजलि दिन। राज्यपाल हकीम है कि डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र के एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्य पर समर्पण जम्मू देशवासी मन पर प्रेरणा स्रोत है। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में डॉक्टर मुखर्जी ला श्रद्धांजलि अर्पित करें। ए मौका में मुख्यमंत्री कहिन कि डॉक्टर मुखर्जी के दिखाए गए रद्दा में अग्रसर होवत हमन विकसित और सशक्त भारत के निर्माण करबो। रायपुर में रखे गए दो दिन के चिंतन शिविर 3.0 काली सिरागे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन कि शिविर ले मिले सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन ला नवा दिशा दीही। उमन कहिन के पाछू चिंतन सिवन के सुझाव के आधार में मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसे पहल सफलतापूर्वक लागू करेगे है। मुख्यमंत्री कहिन के इहुदारी मिले सुझाव ला जल्दी ही नीति और प्रशासनिक सुधार के रूप में लागू करे जाही। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकास परक राजनीति जैसे विषय ऊपर विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी मन विचार विमर्श करें। गनियारी के शासकीय हाई हायर सेकेंडरी स्कूल के नाव अब डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय गनियारी हुई। ये घोषणा काली स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव व विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई के गृहग्राम गनियारी में रखे गए अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान करें। ए मौका में उमन कहिन कि डॉक्टर तीजनबाई अपन कला के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नवा पहचान दिलाए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो माझे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हा मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाए के आदेश जारी कर दे है। योजना के तहत निम्न दाब घरेलू, BPL और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ता मनला बिजली बिल के मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दे जाते। पावर कंपनी हा पात्र उपभोक्ता मनले 30 सितंबर तक योजना के फायदा ले के अपील करी है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के बेरा एक महीना बढ़ाए के घोषणा करे रहें। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन पर रासायनिक खाद के पर्याप्त भंडार मौजूद है। 30 जून तक 13,16,000 मीट्रिक टन ले ज्यादा उर्वरक भंडारण करे गए है जो पाछू साल के तुलना में ज्यादा है। जुलाई में छत्तीसगढ़ ला 46,500 टन DAP के अतिरिक्त आपूर्ति घलो मिले है। अब तक किसान मनला 7,27,000 मीट्रिक टन ले ज्यादा खाद बांटे जा चुके हैं जबकि लगभग 5,89,000 मीट्रिक टन उर्वरक के भंडार अभी भी मौजूद है। सरकार कहे है कि खरीफ सीजन में किसान मनला खाद के कोनो कमी नहीं होए दे जाही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG के आवेदन फीस लौटाए बर बैंक खाता विवरण अपडेट करे के आखिरी तारीख बढ़ा के 7 जुलाई कर दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA बताइस कि जौन उम्मीदवार मन अपन बैंक खाता विवरण के पुष्टि कर दे है उमन पर रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुके है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवार मन ही अपन बैंक विवरण में सुधार या अपडेट करीन है। नगरीय प्रशासन विभाग प्रदेश के जम्मू निकाय में बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल में कराए के निर्देश दे है। विभाग इस संबंध में जम्मू नगर निगम के आयुक्त, नगर पालिका और नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मल्ला परिपत्र जारी करे है। प्रदेश के अधिकांश जिला मन में पाछू दो दिन ले होवत सरलग बारिश के सेति सामान्य जनजीवन प्रभावित हुए है। उन्हें कई ठिन नदियां नरवा उफान में है। दुर्ग जिला में शिवनाथ नदी के जल स्तर बाढ़े के सेति महमरा एनिकट के तीर 5 फीट ऊपर पानी बोहा थे जिसका सेति नदिया तीर के जगह मन में सतर्कता बढ़ा दे गए है। सुरक्षा ला देखत प्रशासन है महमरा गांव जाने वाला रद्दा और पुलगांव स्थित छोटे पुलियाला अवई जवई बर बंद कर दे है। उन्हें थनौद ले लेके अरसनारा तक नदिया तीर बसे गांव के लोगन मल्ला नदियाले दूर रहे बर चित्त

तय गे हे। कोनो भी आपात स्थिति ले निपटे बर SDRF की टीम न तैनात हे। उहें रायगढ़ जिला में पाछू 36 घंटा ले रुक रुक के होवत बारिश के सेती कई जगह मन में सड़क मन में पानी भरे के संगे संग निचला बस्ती मन में स्थित घर में पानी भर गे हे। पानी भरे के सेती प्रशासन हा केलो बांध के 4 गेट खोल दे है, जेखर ले नदी के जल स्तर बाढ़ गे है। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में काली 7 जुलाई के संभाग स्तरीय रोजगार मेला के

जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में काली 7 जुलाई के संभाग स्तरीय रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। ई मेला के माध्यम ले निजी क्षेत्र के आने आने कंपनी के लगभग 1500 ले ज्यादा पद ऊपर भर्ती करे जाही। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करके जरूरी दस्तावेज के साथ मेला में शामिल हो सकत हैं। कोरबा पुलिस पाछू 1 जुलाई के छुरीकला स्थित सोनार दुकान में हुए लूट के मामला में 2 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। उन्हें 1 जिन दूसर आरोपी अभी भी फरार है, जेखर तलाश करे जाते। जिला के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी आज एक दिन पत्रकार वार्ता में बताएं कि तीनों आरोपी पहली हत्या, दुष्कर्म और दूसर गंभीर मामला में जेल की सजा काट चुके हैं। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की हिंद के सहकारी आंदोलन सुधार, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम ले विस्तार के एक नवा चरण में प्रवेश कर रहे। मुख्यमंत्री आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपया ले ज्यादा लागत के आने आने विकास काम के भूमि पूजन करें और राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन पर रासायनिक खाद के पर्याप्त भंडार मौजूद। इखरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 हुए हैं। पेश है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें। ईमेल करें, गीत सुनने में लीजिए सुनिए पहला गीत। फिल्म है रात और दिन, आवाज लता मंगेशकर की है। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। इस गीत के लिए हमें ईमेल किया है नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप, राजेश राशि और शीतल राजेश, चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेणु, प्रियंका, रजनी, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभीजे, राधिका, अनिष्का और तन्मय, मजनू काटिला से कमल बालूजा, मधुसागर और सोंगर मंगरलोट से फणीश्वर कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार चंदन, अकलतरा से दिलीप चंदन, चौराम यदु, निखिल वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, कोलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा चंदन, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पिता, गर्व और हिमाक्ष, पांडर कड़वा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे, बटिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, वीरेंद्र कुलदीप, सीमो एकमन, दमन और अभिजोत, तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जय मानसी, सुरेश मरकाम, मोहन सिंह, सहोदरीबाई मनमोहन सिंह, गिरजाबाई चंद्रपाल मारावी और लक्ष्मी, दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना चैतन्य और मेघा मस्किन, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता, सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहां नास, तलत फरहत, शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूर नाज, चिरिमिरी कुर्सिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद

लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बहरुद्दीन और मोहम्मद यूसुफुद्दीन, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हेना, हर्षित खुशी गोस्वामी, पटियाला से मुकेश पित्ता, नीलम पित्ता, जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुचा सिंह पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज, ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जय और दर्शन भाई। इसी गीत के लिए हमें ईमेल किया है कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश, आशीष देवांगन, रवि शनि, रेयांश कान्हा और आदित्य देवांगन, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांत प्रजापति, अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरप्रीत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, जालंधर से संदीप, ज्योति, मन्नत और कमल सहानी, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग, बरेली कैंट से विनेश कुमार, रागनी और मुस्कान, सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन पल्लवी वर्मा और राजेश्वरी वर्मा, सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घूर्णी करिश्मा, सोमारा साया, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्य पैकरा, भिलाई से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जिशान, शहनवाज अहमद सिद्दीकी, बटसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, नीरज रावत, शुभम और सौरव रावत, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लाविया, आरव खुराना, एस के पप्पी, महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार, करजत मुंबई से अहमद भाई, दुखीन सदाफ, आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद, अमाना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंताशा, आशु अहमद, दिल्ली से प्रमिला, हेमा और अंतरा सिंह, डुमराव से वसीमुल्ला अंसारी, सोमन वली और अस्मा वली। तो आइए सुनते हैं इन सब के द्वारा पसंद किया गया फिल्म रात और दिन का ये गीत।

आप सुन रहे हैं ईमेल करें गीत सुने। अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म रात और दिन का ये गीत। बोल हसरत जयपुरी के थे और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर से लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना गुलजार के हैं और संगीतकार हैं आरडी वर्मन। फिल्म है घर। इस गीत के लिए हमें ईमेल किया है तखतपुर से मिशुलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, श्रीरामपुर महाराज से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, शादुल सहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, निवान सौरव, सानिया मैंडी शर्मा, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, गुमला झारखंड से नजमुल हौदा, एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, किशनगढ़ बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव भानु, प्रिया माधुरी और किरण, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता रजत, मंजू भाटिया और मयंक भाटिया, चिरीमिरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे, हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लव प्रिया और करमजीत कौर, बहादुरा नागपुर से वैशाली, टुकटु गुआरकर।

प्रिंस एकांश सुमित ध्वनि ग्वारकर, पटियाला पंजाब से सोमदत्त ज्योति रानी गुरमीत कौर मानू, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा रोजी पर्ल विलियम्स डिकोस्टा, तिलहरा से प्रकाश पोहरकार नर्मदा और सुजाता, कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाला से भारत राम जयंती हेमंत उमंग और मोक्ष, करनाल से सुधीर नूतन संदीप प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा, जाफराबाद से सुधाकर राज जाघव प्रशांत संचित प्रथमेश प्रणाली सर्वदा और सनावी देशमुख, दिल्ली से अजीम वक्कार माहिरा अजीम और नगमा आजिम, गंडई टीकरी पारा से जागेश्वर देवांगन कचरीबाई दीपक जयश्री देवांगन ऋषभ और ऋचा देवांगन, कैदीमुरा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह ओषा सिंह ऋषभ सिंह, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली और धनंजय कटनकर, दिल्ली से सोमन सना और आदिबा, मलौत से रमेश कुमार जजौरिया गीता रानी और गुड्डू जजौरिया, दुर्ग से सीआर कामड़े करुणा मीना अश्वनी और विपुल कामड़े, जालंधर से रोशन जहां मन्नत जहां इशरत जहां और मक्कार जहां, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है राजकोट से जूली जगदीश गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी, जमनिया गाजी यूपी से सुरेश जायसवाल और मिला दीपक स्वाति जायसवाल, सहारनपुर से सैयद मशरूर शाइना हसन नाजिया इब्राहिम, गुजरात से परवीन सोनी पूजा पायल और जगदीश, भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर प्रमिला आसमा, लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज, ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनार सिंह गुरलाल सिंह अविराज सिंह, कवर्धा से अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी लीलमा खुशांत साहू और निशांत साहू, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज अहद मिफिक्र और नवाज शाहद, पलारी से नीतीश कुमार देवांगन दुर्गा देवांगन पराग टेलर पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन, लुत्रा खमरिया से अकरम अमीन अर्श और आतिका, बलौत से देवशंकर तामोरिया अजय देव तामोरिया अलबीर, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद हबीब मोहम्मद इरफान मोहम्मद, बाग बहारा भदरसी से पन्नालाल सेन खुशबू सेन तारा कौशी सेन, दिल्ली शहर से आसमा परवीन आमना परवीन और वली भाई अंसारी, सावतपुर से ऋषि सेन रितेश सेन कंचन सेन माही सेन, बरकाकाना से अफजाल ताज शाहीन सुल्ताना सोनू तस्नीम निप्पी सहानी मोहम्मद अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे नंदा और हनुमान बोड़खे, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेश विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम विश्वकर्मा आशीष विश्वकर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू पंकज तिरुपति साहू, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम सावीर राही मेहराज जहां, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ति प्रियंका प्रशांत प्रियम थांदी वामिका और वाणी, मुंबई से फातिमा नसरीन अंसारी आलिया और शबा अंसारी, पूना जंक्शन मस्तानपुर से अनंता भगत अरुणा सुलोचना और चेतन भगत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन और अपरा ढींगिया, पलारी से प्रकाश वर्मा निखिल यशस्वी अन्नपूर्णा वर्मा, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे वीना विनय और शंकर पांडे।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म घर का ये गीत। शब्द रचना गुलजार के थे और धुन बनाई थी आरडी वर्मन ने। ईमेल करें, गीत सुने का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। अभी आप सुन रहे थे ईमेल करें गीत सुने, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: escuchar.
1: Comprimión, zyada bonus, apno ke liye sabse sahi, RPLI, isse behtar kuch nahi.
2: Apne paribar ko dijiye surakshit jeevan, Rural Post Life Insurance, RPLI ki life insurance policies ke saath. Apne nazdiki daakghar se aaj hi sampark karein ya indiapost.gov.in par log on karein.
3: Papa, college ki fees zyada hai.
4: Beta,
5: yaad hai, bonus ke kuch paise humne dusre khate mein rakhe the?
4: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
3: कहाँ?
6: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
0: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
9: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
10: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
11: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
10: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
11: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
10: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
11: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
9: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
12: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
11: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
12: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
11: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
12: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर,

0: अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से राज्य के अधिकांश जिलों में जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर। और समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करने की अपील की। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इनमें छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार और चिकित्सकों तथा कर्मचारियों के आवासीय परिसर सहित विभिन्न निर्माण कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। यह परियोजनाएं प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्रदान करेगी तथा मरीजों, विद्यार्थियों और चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा।
3: निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को लाभ होगा, क्योंकि मेकाहारा एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर पूरे प्रदेश से लोग इलाज के लिए आते हैं। तो यहां पर छात्रावास का भी आज भूमि पूजन किए हैं और कैंसर के लिए ये मेकाहारा बड़ा फेमस है और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बाहर से भी लोग यहां पर इलाज के लिए आते हैं।
1: कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री अरुण साहो और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी संबोधित किया। गौरतलब है कि परियोजना के पहले चरण में 200 सीटर आधुनिक छात्र छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में कैंसर भवन का विस्तार किया जाएगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकभवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के दिखाए पथ पर अग्रसर होते हुए हम विकसित और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 5 संभाग मुख्यालय और सभी जिलों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके लिए करीब 10 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3

0: 2.0 का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहलें सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी प्राप्त सुझावों को शीघ्र नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के अनुरूप लागू किया जाएगा। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकास परक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कई नदी नाले उफान पर हैं। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण महमरा एनीकट के करीब 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे नदी किनारे के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने महमरा गांव जाने वाले मार्ग और पुलगांव स्थित छोटे पुल को आवागमन के लिए बंद कर दिया है। वहीं थनौद से लेकर अरसनारा तक नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। वहीं रायगढ़ जिले में पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कों में जलजमाव के साथ ही निचली बस्तियों में स्थित घरों में पानी भर गया है। जलभराव के कारण प्रशासन ने केलो बांध के 4 गेट खोल दिए हैं, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इधर बलौदाबाजार जिले में महानदी पर रोहासी और अमेठी गांव को जोड़ने वाले एनीकट में 2 से 2.5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसके कारण अमेठी और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का पलारी क्षेत्र और बलौदाबाजार से संपर्क टूट गया है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर संभाग के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
1: आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बिलासपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की चांसेस है। अति भारी वर्षा के साथ साथ सीमांत भारी वर्षा भी होने की चांस है, मतलब लगभग 200 mm से ऊपर भी 1-2 स्थानों पर होने की चांस है। बिलासपुर संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे के पश्चात येलो अलर्ट जो है वो सरगुजा संभाग में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जारी किया है।
0: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत निम्न दाब घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है। पावर कंपनी ने पात्र उपभोक्ताओं से 30 सितंबर तक योजना का लाभ लेने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 1 महीने बढ़ाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कल 7 जुलाई तक किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रुपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित IIIT NR में संचालित की जा रही है। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में कल 7 जुलाई को संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों के लगभग 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ मेले में शामिल हो सकते हैं। कोरबा पुलिस ने बीते 1 जुलाई को छुरी कला स्थित ज्वेलर्स दुकान में हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि तीनों आरोपी पूर्व में हत्या, दुष्कर्म और अन्य गंभीर मामलों में जेल की सजा काट चुके हैं। जेल में ही उनकी दोस्ती हुई और रिहाई के बाद उन्होंने चोरी की मोटरसाइकिल और देशी कट्टे की मदद से लूट की योजना बनाई। नगरी प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी निकायों में बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन टेकन ने आज

भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित प्रणवानंद अकादमी में रोबोटिक्स लेबोरेटरी का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता वितरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है और गनियारी के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम अब डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय गनियारी होगा। यह घोषणा कल स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई के गृहग्राम गनियारी में आयोजित अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से राज्य के अधिकांश जिलों में जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर और समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए, ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। ईमेल करें गीत सुने में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म है शिकारी, आवाज कुमार शानू की है, बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत से सजाया है आदेश श्रीवास्तव ने। इस गीत के लिए हमें ईमेल किया है महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, राजेश और प्रीतेश संघई, यवतमाल से सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, मनवर और प्रियांशी, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे, महाराष्ट्र से ही सोपान ताइडे, वसंत राव और निवृत्ति, नेपानगर महाराष्ट्र से सुदर्शन साह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विनी साह, मंगला बहन और राजेंद्र शाह, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनीता, कृष्टि पटवा, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, उमरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत गवारकर, सरिता, प्रिंस और एकांश गवारकर, पैठन से सुरेश जाघव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया और जाघव, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकाम खत्री, मोहम्मद अल्तमाश खत्री, रमेश, मोहम्मद शदाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, जलानो उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, रायगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, यवतमाल पंजाब से रामटेक, यशोधरा, श्राव्या रामटेक, पाटन से परमेश्वर साहू, राजपत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन और अब्दुल सलाम राइन, लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, राजनंदगांव से बबलू साहू, जाम देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपला छिपा, पूजा परिहार, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, और श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले।

ईमेल करें, गीत सुने में लीजिए, सुनिए। आखिरी गीत फिल्म है दयावान, आवाज़ें अनुराधा पोडवाल और पंकज उदास की हैं। गीत के बोल लिखे हैं अजीज कासी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह डूडी, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र, जोई यामनी और उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी, बबलू डब्लू बबीता मिगलानी और सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग, भाटापारा से प्रमोद साहू, नवीन और युवराज साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन सुहाना, अरनाज अब्बासी और अबान अब्बासी, खमरिया से सविता खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिका और बलवीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू पप्पू भाटिया, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, बुलढाणा वाशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से अपूर्वा सिंह, अनुपम, राकेश कुमार, पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल और भारती बघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण गुजराती, यवतमाल से जयराम, दिशांत और अर्पिता, रायपुर से नीलू, मेघना, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, पंजाब से सुभाष गोदरा, विमला इंदु, पार्वती और हिमांशु गोदरा, नरवेला महाराज से पीएस नौआरकर, निर्मला और विशाल, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश साहू, डॉली और पुरसेवा साहू, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चौराम वर्मा, सूरज बोरके, नारायण यदु, भुवन कामरी, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी,

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: और इसी के साथ ईमेल करें गीत सुने से सुजाता राय को आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगी साथी भाई बहनी मल्ला जीवन भैया के राम राम जय जोहार। किसान किसान भाई बहनी हो देखो अगोरा रे से पानी के जम्मो किसान संगी साथी भाई बहनी मल्ला भाई खेती किसानी के काम है बिना पानी के होना नहीं है ना। और ऐसा बेरा मा हमर किसान भाई मन के बिल्कुल समय है जेन एक एक मिनट बहुमूल्य हवे काहे खेत ले घर घर ले बारी कोठार जिन थरहा दहे कोठार मा या बारी मा जिन खेत में लगाना है ये सब को तो चेत हवे चेत है। इति लेकिन बच्चन की स्कूल घला खुल गए है ना सब को ती तो भाई हमला चेत तो समय के साथ साथ सबोला करना है अपन स्वास्थ्य के चेत करना है। बरसात के बेरा थे तो खान पान और बरसाती जिन मंगसा माछी ये मन के संख्या है बढ़ जाते हैं ना तो बेरा हमला सफाई के चेत करना है। अब बात कर वो किसान भाई हो हमन घेरी बेरी अपन खेत में धान लगाथन अब जेखर से हमन के धान उत्पादन पहले ले ज़्यादा खर्चा लगत जाते और हमार महंगाई है बढ़त जाते एक सेती हमार सरकार मन घलक इसे भाई के बदल के देखो दलहनी तिलहनी फसल के रकबाला बढ़ावा काहे एमा जिन खेती किसानी होते वह सस्ता होते और कम खर्चा और जमीन हला बढ़िया उपजाऊ बनाते कौन है ये दलहनी तिलहनी के जिन फसल होते ओहर एकर से का होते जिन इखर जड़ी में नाइट्रोजन के मात्रा ला जिन बढ़ाए के क्षमता रखते नान्हे नान्हे जीवाणु रथे उखर जड़ी में ते है ओखर से जमीन बढ़िया उपजाऊ बनते तो जमीन ला खाद भरपूर मात्रा में मिले लागते एकर से किसान मन के जेन पाकिट के पैसा है जेन खातु में लगात रहे हैं रासायनिक खातु के उपयोग ज़्यादा करें उखर से बाँचते और ये खेती हर सस्ता होते तही पाए के दलहनी तिलहनी फसल के खेती कोती हमारे किसान संगवारी मन ला आगू बढ़ना है। फिर भाई देखो खाना पीना में बढ़िया पौष्टिक तभी मानते पौष्टिक भोजन जब दाल है ना भात के संग दाल है रोटी के संग दाल है और हरियर साग भाजी बढ़िया मिलते तो निश्चित रूप ले शरीर स्वस्थ रहते और बढ़िया पौष्टिक भोजन मिलते तो जम्मो काम बुताला समय बेरा बखत मापन करे के क्षमता से उत्साह रहते है ना। किसान भाई हो एकरे पाए लेके हमला रकबा बढ़ाना है जैसे देखन पहली बारी कोला में आसपास उड़द है मूंग है ना हिरवा है कुल्थी है और राहेर है तिली है सोयाबीन है कतका हमन आसपास देखन बोए मात्रा में है ना खेत के पार में है तालाब के पार में है बांधा के पार में है जम्मो कोती दलहनी तिलहनी फसल के उत्पादन ज़्यादा होते से फिर अब खेत के पार है तो बिल्कुल नदाज जाते दिनों दिन है ना। अब एकर फसल अब काम अब किसान भाई टिकरा है टार है भर्री है इस सब आप मन अपन दलहनी तिलहनी

के खेती ला करके बढ़िया सस्ता खर्चा में कम खर्चा में ज़्यादा फायदा के खेती अगर कहे जाए तो दलहनी तिलहनी फसल से अपन कमा सकत हो। बात करवो फिर एक संदेश सुन लेता।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो किसान भाई हो, खेती में अपन देखी दलहनी तिलहनी फसल के बढ़िया उन्नत किस्म जैन पास के कृषि विस्तार अधिकारी है, कृषि केंद्र है, वहाँ से आप ले लाओ ओला राजोबियम कल्चरल उपचारित करके बढ़िया दलहनी के जैन बीज है ओला आप लगाओ और उखर से बढ़िया आपके जैन फसल है, उत्पादन बढ़िया निरोगी फसल बढ़िया रही और जेखर से आपके जमीन के उपयोग हो ही खेती किसानी में सस्ता माध्यम से अच्छा फसल आप मल्ला मिल ही। धान के खेती तो हमार होते रहते और हमेशा एक ही फसल बोले जैन जमीन के उपजाऊपन है वह दिनों दिन घटत जाते, रासायनिक खातू ज़्यादा उखर उपयोग करेल पड़ते, तही पाए के फसल चक्र घला अपना के खेती किसानी के जैन जमीन है ओला हमन ज़्यादा बेरा तक खेती किसानी करे बर, टिकाऊ खेती करे बर, उपजाऊ बना सकत हन, है ना। एखर बर हमन शासन से जैन भी फायदा मिलते उखर जानकारी लेके आप मन एखर बढ़िया फायदा ले सकत हो और कृषि विस्तार अधिकारी से या कृषि केंद्र से जाके आप मन जानकारी ले लेके बढ़िया उन्नत दलहनी तिलहनी फसल के खेती ला करो और खेती ऐसे करो कि बिल्कुल खर्चा कम आवे। खर्चा कब कम आही? जब हम सही तरीका ले सही जानकारी लेके करबो तब हम सही खेती ला कर पाबो। सही बेरा में कौन सा खातू डालना है या कौन नहीं डालना है जमीन के हिसाब से ये सब मात्रा हमला जानकारी मिल ही और चतुरा किसान हो ही होते जैन आगू ले आगू खेती किसानी के जानकारी ला रखत रहते और जैसे बेरा आते वो बेरा में फिर अपन खेती किसानी करके वो ज्ञान ला वो माँ उपयोग करके अपन उत्पादन ला ज़्यादा से ज़्यादा पाए के प्रयास करते और निश्चित रूप ले ऐसे किसान मन सफल होते जेखर सफलता के कहानी ला फिर आगू गला दूसर किसान से बांटे जाते। तो हम यही कहबो कि आप कोई भी जमीन हो टिकरा टार है ओमा छोड़ना नहीं है, बारी है कोला है खाली नहीं रखना है, सब में दलहनी तिलहनी फसल की बढ़िया बुवाई करो और उखर से फिर आप मन के खाना पीना जैन पौष्टिकता है दाल सबूल मिल ही। आप खुद अपन उत्पादित सामान ल जब खाओ निश्चित रूप ले आपके शरीर स्वस्थ रही और आपके उत्पादित सामान जैन बाजार में जाही तो दूसर गला खा के स्वस्थ रही। किसान भाई हो चेत करते रहना है और अपन खेती किसानी के और बढ़िया ध्यान दे के चलना है, काहे एक एक बेरा अभी के बहुमूल्य है कीमती है, पानी गिरत है तो किसान भाई मन के बिल्कुल भाई खाए पिए फुर्सत भला नहीं है, कौन खेत में कौन सा फसल बोना है और कौन टिकरा में तिलहनी दलहनी फसल बोना है ये सब बात के चेत बढ़िया सोच विचार के करियो तो निश्चित रूप ले आपके जिन खेती है बढ़िया हो।

आओ भाई, अब हमन सुनबो एक ठो भजन जेला स्वर दिए हे नवल दास मानिकपुरी, अनसुईया मानिकपुरी। आवा सुनी इंकर स्वर में ये भजन गीत।

जाने नहीं कोनो तुर पीरा रे माटी के हीरा ये गीत लस्वर दे रिन्हे नवलदास मानिकपुरी अनसुया मानिकपुरी। किसान भाई हो आज अपन में जानकारी लाए हैं कृषक उन्नति योजना धान के बदले अन्य फसल। ये जानकारी देते श्रीमती नीलिमा कोरी सहायक संचालक कृषि कार्यालय संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर। एंकर से गुड बात कर रहे थे हमारे महंगू भैया, तो सुनी ये जानकारी।

0: किसान भाई हो, कृषक उन्नति योजना, धान के बदला अन्य फसल, ए विषय में जानकारी दे खातिर आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हवें श्रीमती नीलिमा कोरीजीमन, जौन हवें सहायक संचालक कार्यालय संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर में। तो सबले पहले तो स्वागत कर लेथन श्रीमती नीलिमा कोरी जी, आप मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत हुआ है। आप मन ला राम राम।
1: राम राम महंगू भैया।
0: सबसे पहले जानना ये चाहतन कि जैसे कि ये अभी के समय में देखे जाए तो पानी की कमी हवे, बरसात अभी अबेर ले आए हवे, वर्तमान वर्षा के स्थिति ला देखत हुए हमारे किसान भाई मल्ला कौन कौन बात के ध्यान देना चाहिए, ये बात ला थोड़ा बता दे।
1: देखिये, अभी जैसे वर्तमान में अभी वर्षा में देरी हो चुकी है, ये क्या किस कारण से हुई है, यहाँ अभी एल नीनो का प्रभाव है, तो यह स्थिति साल भर बनी रहेगी, कभी बारिश कम कभी ज्यादा, मतलब इस साल बारिश पे थोड़ी अनिश्चितता टाइप से है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपना भूमि का प्रकार और जल के, अपना खेत में जल का उपलब्धता उनके पास कैसा है, साधन को देखते हुए ऐसे फसलों का चयन करना पड़ेगा उनको। जैसे अगर किसान के पास थोड़ा उचहन भूमि है जहाँ पानी नहीं ठहरता, वहाँ उनको धान के जगह दलहन तिलहन पे जाना होगा। धान हो, दलहन तिलहन, कोदो कुटकी रागी मक्का, ऐसे फसल लेने जो कम वर्षा कम पानी पे भी पैदा हो जाते हैं।
0: कम वर्षा की जैसे बात करे छन, है ना भाई, करते छन, तो ऐसा स्थिति में धान के जगह में कौन कौन से ऐसे फसल ले जा सकत हवे और एकर ले फायदा का है तो बता दे।
1: जैसे धान के बदले अगर हम अभी की वर्तमान की स्थिति देखेंगे कि वर्षा अभी कम है या लेट से हो गई है, तो अपन दलहन तिलहन की ओर जाएंगे और धान पे भी जाते हैं तो जल्दी अवधि जो जल्दी पकती है ऐसे किस्मों का चयन करेंगे, जैसे MTU 10-10 है, MTU 11-56, इंदिरा बरहानी, सहभागी धान, IR 64, ऐसे बहुत सारा विभिन्न किस्में हैं जो जल्दी पक

0: जाती है, जो देरी से पकती है, ऐसे किस्मों का चयन ना करते हुए हम लोग धान के जल्दी पकने वाली किस्मों पे जाएंगे। और अपने भूमि की स्थिति को देखते हुए, जैसे उच्चहन भूमि है वहां आप धान के स्थान पे आप दलहन तिलहन लीजिए,
1: अच्छा
0: जैसे हो गया अरहर, मूंग, उड़द, तिल हो गया, और मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अन्य फसल लें।
1: आज के जैसा विषय है कृषक उन्नति योजना। तो ये कृषक उन्नति योजना का है और एकर मुख्य उद्देश्य का है, तेला बता दे बाप।
0: देखिए, अभी हमारा अधिकांश, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित है ना, इस पे खेती वर्षा आधारित खेती होती है। तो वर्षा आधारित होने से अपन थोड़ा मौसमी अनुकूलता एवं कृषि जो आदान लागत है उसमें वृद्धि के कारण कृषि आय में थोड़ी अनिश्चितता बनी रहती है, जिसके कारण फल स्वरूप फसल उत्पादन के लिए जो आवश्यक आदान है, जैसे उन्नत बीज हो गया, उर्वरक, कीटनाशी या जो भी यांत्रिकी है और नई तकनीक है, उस पे थोड़ा सा किसान भाई पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते। तो ये राज्य सरकार इसी कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्ट लागत में राहत देने के लिए यह योजना को वर्ष 23-24 से प्रारंभ की गई है। योजना इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि फसल का क्षेत्र आच्छादन, उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि करना, और क्या है जो अपन इस पे से आदान सहायता राशि मिलती है उससे कृषकों के द्वारा उन्नत बीज और वो समन्वित द्वारा पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत नाशी जी प्रबंधन सहित बहुत सारे नई जो कृषि तकनीकी है उसको के निवेश पे भी प्रोत्साहन मिलता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि फसल विविधीकरण प्रोत्साहन देते हुए कृषि को लाभ के व्यापार के रूप में भी प्रतिस्थापित करना है।
1: अच्छा अच्छा ये फसल विविधीकरण काबर आवश्यक है, ये लो बता देता आप मन।
0: फसल विविधीकरण आज की आवश्यकता है, क्योंकि केवल अगर अपन धान एक ही फसल पे किसान भाई निर्भर रहेंगे तो किसानों की आय, मिट्टी और जन संसाधनों पे एक दबाव पड़ता है। यदि किसान धान के स्थान पे अन्य फसल लेंगे, जैसे दलहन तिलहन, मोटे अनाज और जैसे सब्जी वाले फसलें होते हैं, तो किसान की आय का एक स्रोत बढ़ता है।
1: अच्छा,
0: है ना। और जैसे आप तो जानते हैं धान के फसल के लिए सबसे ज्यादा पानी लगता है, है ना, 120 से 150 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम अभी तो कम वर्षा की स्थिति है उसको भी मद्देनजर रखते हुए अगर हम धान के स्थान पर ये उड़द, मूंग, तिल, दलहनी तिलहनी फसलें लेंगे, जैसे दलहन तिलहन पे जैसे मोटा मोटा बताऊं आपको 25 से 30 सेंटीमीटर, जहां यहां 120 से 150 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता है, तो यहाँ 25 से 30 सेंटीमीटर प्रति पानी की जरूरत पड़ती है। तो आप अगर धान की तुलना पे देखेंगे तो दलहन तिलहन में कम पानी पे भी इसका उत्पादन हो जाता है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और इस पे क्या होता है, अपना दलहन फसल आप लगाओगे तो आपका जमीन का उर्वरता भी बढ़ता है। कैसे?
1: अच्छा।
0: दलहनी तिलहनी फसल क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके उसको जमीन में पौधे के लिए उपलब्ध करता है, तो अन्य फसल पे भी हमारा ये उर्वरता बनी रहती है।
1: अच्छा, ये कृषक उन्नति योजना के हम चर्चा करत हैं, बात करत हैं, योजना के प्रबंधन के बारे में बतावा अपन, और किसान भाई मन ये योजना के लाभ कैसे ले सकत हमें तिहल बता दे।
0: इस योजना में हमारा इस कृषक उन्नति योजना अंतर्गत अगर किसान भाई दान के बदले अन्य फसल लगाएंगे,
1: अच्छा,
0: जैसे विगत खरीफ, जैसे पिछले बार अगर वो धान लिया है तो इस वर्ष अगर खरीफ पे धान के स्थान पे अन्य फसल जैसे दलहन तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास, ये सब लेता है, और वो इसके लिए क्या करेगा, अपने वो जो संबंधित सहकारी समिति है वहाँ पंजीयन कराएगा। हमारे कृषि विभाग का एक पोर्टल है, एकीकृत किसान पोर्टल।
1: अच्छा।
0: हाँ, वहाँ पंजीयन कराएगा।
1: अच्छा।
0: और इस पे क्या, धान के बदले अगर वो अन्य फसल लिया, जो अभी जैसे मैं फसल का नाम लिया आपको, ये फसल लेता है तो 15,000 प्रति एकड़ उस पे प्रावधान है।
1: अच्छा।
0: अगर किसान पूर्व से ही दलहन तिलहन फसल ले रहा है तो अच्छा। इस स्थिति में उसको 10,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रावधान है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ये एग्रीकृत किसान पोर्टल काए और एग्रीटेक पोर्टल के बारे में थोड़ा बता देता हमारे किसान भाई मल्ला।
0: देखिए, मैं एक बात विशेष रूप से बताना चाहूंगी कि ये जो योजना है कृषक उन्नति योजना, इसका लाभ तभी मिलेगा कृषकों को जब वह एकीकृत किसान पोर्टल एवं एग्रीस्टेक पोर्टल पर भी पंजीयन कराएगा।
1: अच्छा अच्छा।
0: अपना जो एकीकृत किसान पोर्टल है ये हमारे राज्य शासन कृषि विभाग की पोर्टल है।
1: अच्छा।
0: जिसपे क्या होता है, हमारे जो विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं,
1: हाँ।
0: उसका लाभ प्राप्त करने हैं तो क्या होता है, किसान को बार बार आवेदन करना पड़ता है, पंजीयन कराना पड़ता है। अच्छा। तो उससे क्या, समय का बर्बादी होता है, संसाधन का भी बर्बाद होता है। तो इस

0: क्रिया को सरल करने के लिए और सभी विभिन्न योजनाओं के जो पंजीयन है सबको एक एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए राज्य शासन आपके द्वारा ये एकीकृत पोर्टल बनाया गया था।
1: अच्छा,
0: इस पे क्या होता है, कृषक उन्नति योजना और जो अपन धान उपार्जन मक्का और उपार्जन सब योजना इस पे सम्मिलित है।
1: अच्छा,
0: इसी तरह ये जो एग्रीस्टेक पोर्टल है वर्तमान में एग्रीस्टेक फार्मर आईडी अभी धान विक्रय करने के लिए भी और ये कृषक उन्नति योजना का भी लाभ तभी मिलेगा जब किसान एकीकृत किसान पोर्टल और ये एग्रीस्टेक पोर्टल दोनों में पंजीकृत रहेगा। एग्रीस्टेक पोर्टल है अपने भारत सरकार द्वारा एक गतिशक्ति योजना है, उसके तहत ये एक फार्मर आईडी डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रही है, डिजिटल एक इन्फॉर्मेशन बना रही है। हाँ, तो इस पे क्या है, किसानों का जिसका मुख्य उद्देश्य है देश भर के कृषकों को का एक व्यापक और एकीकृत पंजीयन डेटाबेस बनाना है। हाँ ना, ये पंजीयन यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि सरकारी योजना है, जितनी भी हमारी सरकारी योजना है उसका लाभ सही लाभार्थियों तक डिजिटली पहुंचे।
1: अच्छा।
0: तो यह एक पारदर्शी है और पे क्या होगा, आगे के समय में सारी योजना इसी पे मिल जाएंगी।
1: अच्छा।
0: एग्रीस्टेक फार्मर आईडी सब चीज के लिए अनिवार्य हो जाएगा, इस पे बीमा हो गया, अन्न वितरण प्रणाली सारे जितने हैं ना सब इसी पे है, जुड़ जाएंगे।
1: जैसे आप बताया था कि किसान एग्रीस्टेक पोर्टल जो उन्हें बहुत जरूरी है, एक पंजीयन कराना है ना भाई, तो कैसे ढंग से अगर पंजीयन कराए, का कागजात लगत हो ही, आवश्यक दस्तावेज कुछ तो लगता होगी, तेला बता दे बात।
0: देखिए, राज्य शासन ने पिछले वर्ष जब धान खरीदी के समय एग्रीस्टेक आईडी फार्मर आईडी को अनिवार्य किया था, हाँ उस समय से समिति स्तर से भी बनाया गया था, समिति को भी आईडी पासवर्ड दिया था। और अभी किसान क्या कर सकते हैं, अपने नजदीकी सीएससी जाके है ना, जो लोक सेवा सुविधा केंद्र होता है वहां जाके, और किसान स्वयं भी एक मोबाइल ऐप भी आ गया है, सीजी एग्रीस्टेक मोबाइल ऐप, उसके जरिए भी किसान स्वयं भी एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कर सकता
1: अच्छा।
0: है। हाँ, तो इसके लिए उसको दस्तावेज ये लगेंगे कि अपना भूमि संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, जैसे आपका ऋण पुस्तिका हो गया, B1 खसरा, और आपका आधार कार्ड लगेगा और आधार से लिंक मोबाइल नंबर रहेगा।
1: अच्छा।
0: तो जो दो माध्यम बताए मैं, सीएससी के माध्यम से प्लस ये अपना खुद से ही स्वयं से भी पंजीयन कर सकता है कृषि विभाग पे, हमारे कृषि अधिकारियों की मदद से पंजीकृत कर जाता है, तो फिर उनका पंजीयन हो जाएगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। फिर घूम फिर के फसल विविधीकरण के बात करबो, जैसे ना आप बताया रहा फसल विविधीकरण ला बढ़ावा दे खातिर शासन द्वारा कौन कौन से ऐसी योजना संचालित करेगी है भाई?
0: देखिए, मुख्य रूप से तो जैसे हम कृषक उन्नति योजना की ही बात कर रहे हैं, तो कृषक उन्नति योजना पे जैसे मैंने आपको बताया कि धान के बदले अन्य फसल अगर किसान लेता है तो उसको 15,000 प्रति एकड़ का प्रावधान है। अगर वो पूर्व से ही अगर खरीफ पे दलहन तिलहन पहले से ही ले रहा है तो उसको इस कंडीशन में 10,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रावधान। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे अभी हम पिछले ही वर्ष से, इस वर्ष से हम पीएम आशा अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत दलहन तिलहन की भी खरीदी की व्यवस्था शासन ने की है।
1: अच्छा।
0: तो जैसे इस पे अगर वो धान के स्थान में दलहन तिलहन में जाता है तो इनको यहाँ पर 15,000 और 10,000 तो मिलेगा ही, प्लस जो दलहन तिलहन के उत्पादन है अब उसको समिति पे जाके वो MSP पे भी बेच सकता है। तो मतलब किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य वहां से भी प्राप्त हो जाएगा। तो शासन उसके लिए ये योजना लागू की है और विभागीय हमारे कृषि विभाग में और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है, और इस पे क्या है, तिलहनी फसलों पे भी बहुत सारे अनुदान, आपको 100% बीज वितरण में 100% के अनुदान से आपको बीज उपलब्ध कराते हैं। अगर किसान भाई अब कृषि विभाग के प्रदर्शन लेते हैं तो वैसे 11,000 प्रति क्विंटल का उनको प्रति हेक्टेयर उनको प्रावधान मिलता है, राशि मिलता है। ऐसे इसी तरह अपना आत्मनिर्भरता दलहन मिशन है।
1: अच्छा।
0: इस पे भी बीज वितरण पे आपको 3,000 और 6,000 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान मिलता है, या जो बीज का लागत हो उसका 50% आपको अनुदान मिलता है।
1: अच्छा।
0: और प्रदर्शन के अंदर किसान अगर चयन प्रदर्शन लेते हैं तो 10,000 रुपए उनको प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: जिसपे आप वो सीड ले सकते हैं उसके लिए, और कीटनाशक ये सब ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: ऐसी और भी योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन है, उसपे भी जैसे मक्का प्रदर्शन है, मक्का प्रदर्शन में 11,500 रुपए प्रति हेक्टेयर से किसान को प्रावधान है, और बीज वितरण करते हैं मक्का प्रदर्शन तो 10,000 प्रति क्विंटल या जो बीज का लागत है उसका 50%, जो भी कम हो।
1: अच्छा।
0: वो मिलता है। इसी तरह अपन पोषक अनाज, इसी पे ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पे एक पोषक अनाज, इस पे अपन कोदो

0: खुट की रागी लेते हैं,
1: अच्छा
0: तो रागी के अंदर भी जो अपन प्रदर्शन पे अगर किसान
1: हाँ
0: भाग लेते हैं तो उसको 7500 प्रति हेक्टेयर
1: हम्म,
0: और 3000 और 1500 उसको बीज वितरण पे अनुदान
1: अच्छा
0: मिलेगा।
1: अच्छा अच्छा
0: तो ऐसे बहुत सारे शासन की योजनाएं हैं जो फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है।
1: बढ़िया हाँ
0: तो
1: हाँ
0: किसान भाइयों से ये सलाह है कि आप ये धान के बदले या धान के साथ आप अन्य फसल लगाए, फसल विविधीकरण की तरफ जाएं।
1: बहुत अच्छा, मतलब कहे जाए तो लाभकारी ही है। देखे जाए तो हमारे किसान भाई मल्ला धाने धान नहीं करना चाहिए, अगर विविधीकरण ला अपनाओ थे फसल विविधीकरण ला तो ज्यादा करके देखो लाभ ही इतका कन लाभ आप बताए है गिनाए हैं। अब थोकन और जानना चाहबो, जैसे किसान भाई मल्ला आप तो बता था कि धान के बदला में लगावा है ना दूसर फसल, थोड़ा कन फुरिया के बता कि कैसे ढंग से धान के बदला में ज्यादा आमदनी मिल सके।
0: देखिए, धान की जगह जैसे अभी कम वर्षा की स्थिति को लेकर मैं बताती हूँ, जैसे अभी अब किसान भाई का थोड़ा सा उच्चहन भूमि है, अगर वहां वो धान लगा देता है
1: अच्छा
0: तो देखिए अभी जैसे कम वर्षा की स्थिति बन रही है,
1: हाँ हाँ
0: तो ऐसे में उच्चहन भूमि में अगर वो धान लगा देगा तो उसकी धान की उत्पादकता घटकर केवल 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ रह सकती है। हाँ, और पर्याप्त पानी ना मिलने से भी दाना उसका भरेगा उतना नहीं
1: हाँ
0: भरेगा, उसका पैदावार में थोड़ा गिरावट और आय में भी गिरावट हो जाएगी।
1: अच्छा अच्छा
0: लेकिन अगर यही अपना भूमि की स्थिति को देखते हुए इस भूमि में जो उच्चहन भूमि है और वहां पर असिंचित जो भूमि है उस पे अगर वो धान के स्थान में अरहर, मूंग, उड़द या सोयाबीन लगाता है
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: देखिए कैसे, अब अगर धान लगाता तो मैं बताई जैसे कम वर्षा में थोड़ा उत्पादनता में
1: हाँ
0: थोड़ा सा
1: हाँ
0: उत्पादकता में कमी आती है तो 8 से 10 क्विंटल और प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त करता। हाँ, और उसकी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अगर ये धान बेचते हैं तो 2600 वगैरह होता है,
1: हाँ हाँ
0: तो इस तरह से उसका एक आय बनता है,
1: हाँ
0: प्रति एकड़ आय बता रही हूँ 20,000 से 24,000
1: अच्छा
0: तक। लेकिन अगर वो अरहर लगाता है तो देखिए अरहर का उत्पादकता आपका आ जाएगा 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़। और अभी जैसे आपको मैं बताई हूँ पीएम आशा प्राइस सपोर्ट स्कीम,
1: हाँ
0: इसके
1: हाँ
0: तहत शासन ने व्यवस्था कर दी है इनका खरीदी को, अपन खरीदेंगे है ना एमएसपी पे, तो अरहर का है एमएसपी है 8,000। तो
1: अच्छा
0: इस हिसाब से अगर आप देखें तो उसको जहां धान में उसको 20,000 से 24,000 प्रति एकड़ आय प्राप्त हो रहा था तो
1: अच्छा
0: यहाँ हो जाता है उसको 32,000 से 40,000 के
1: बड़ा से
0: बीच। हाँ,
1: हाँ
0: तो देखिए इस पे अंतर है। वैसी मूंग भी आपको 3-4 क्विंटल प्रति एकड़ देगा, इसका भी आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग है ना 8768 रुपये है। तो
1: अच्छा
0: इस तरीके से देखेंगे प्रति एकड़ के पीछे आपको 26,000 से 35,000 तक इसका भी आय है।
1: बताइए
0: सोयाबीन
1: बतावा
0: पे
1: हाँ
0: भी ऐसे, मतलब कुल मिलाकर अगर आप अभी की स्थिति में उच्चहन भूमि में धान की जगह अगर आप इन फसलों को ले
1: हाँ
0: लेते
1: हाँ
0: हैं, दलहन
1: हाँ
0: तिलहन को, तो आपको देखिए कम पानी पे आपका ये बहुत अच्छा उत्पादन एक आय का स्रोत है, तो
1: अच्छा
0: आपको उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा,
1: ठीक ठीक मतलब ये प्रकार कह जाए तो सभी में लाभ ही लाभ दिखा थे
0: लाभ
1: तो
0: दिखा है।
1: किसान भाई मल्ला अपनाना है। अच्छा ये तो बतावा जैसे फुरिया के थोड़ा बुटाया जाए कि किसान भाई मन जैसे धान के बदला में धान पाछू बसर में लगाए रहने तो वो धान के रकबा ला कम कर ही तब फायदा मिली
0: हाँ,
1: कि कैसे ढंग से थोड़ा सा
0: ठीक
1: स्पष्ट कर
0: ठीक
1: देवा
0: ठीक
1: ये बात
0: मैं
1: ला भाई।
0: इसको थोड़ा स्पष्ट कर देती हूँ उस
1: हाँ
0: पे। जैसे कि ये कृषक उन्नति योजना पे पिछला खरीफ, खरीफ 25-2025 पे जिस खसरा में वो धान लगाया था,
1: अच्छा
0: अगर इस वर्ष खरीफ 26 में उसी खसरा में
1: अच्छा
0: जहां वो पिछले वर्ष धान लगाया था, अगर वो धान की जगह धान
1: अच्छा
0: के स्थान में वो दलहन तिलहन जो मैं आपको बताई हूँ जितना बहुत सारा फसल है उस पे, कोदो, कुटकी,
1: हाँ
0: रागी,
1: हाँ हाँ
0: कपास सब ले सकता है जो भी ले है ना, वह लगाता है तब उसको 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से उसको,
1: मतलब शर्त यही
0: हाँ
1: है कि
0: सहायता,
1: धना फसल ला
0: हाँ
1: थोड़ा सा
0: ओखर
1: कम
0: रकबा
1: करके
0: थोड़ा सा कम करके। हाँ,
1: दूसर
0: लेकिन
1: फसल
0: अगर
1: में
0: वो पूर्व से ही खरीफ खरीफ मौसम में वो दलहन तिलहन लगा रहा है तो
1: अच्छा
0: उस स्थिति पे 10,000 प्रति
1: वो
0: एकड़ तो
1: कहूं नहीं जाए
0: मिले
1: कहे
0: कहीं
1: जाए
0: नहीं जाएगा,
1: हाँ
0: लेकिन अगर धान को छोड़कर वो दूसरा फसल लेता है तो 15,000 उस स्थिति।
1: बने
0: देखिए
1: बनाए
0: शासन ने इस पे बहुत महत्वपूर्ण पहल लिया है, पिछले वर्ष ये जो अभी 15,000 रुपये बढ़ा है, पिछले वर्ष ये 10,000 रुपये
1: अच्छा
0: था,
1: अच्छा
0: अगर
1: अच्छा
0: धान के स्थान में लगाता तो 10,000 प्रति एकड़ मिलता।
1: हाँ
0: तो अभी शासन ने भी फसल विविधीकरण पे जोर दिया है ना, तो उसको 10,000 से बढ़ा के 15,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रावधान इस वर्ष से लागू किया गया है।
1: अच्छा आखिर में हमारे किसान भाई मल्ला का संदेश देना चाहता हो का बताना चाहता
0: किसान भाइयों और बहनों से मैं कृषि विभाग की तरफ से यह संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने खेत की भूमि एवं उसका जल उपलब्धता के अनुसार फसल विविधीकरण को अपनाएं, धान के स्थान में दलहन तिलहन लगाए, और अभी जैसे वर्षा की कम स्थिति है उस पे भी मैं कुछ मुख्य रूप से बताना चाहूंगी। जैसे अभी अपना लेट हो गया है,

0: क्रॉप लेट हो गए हैं, अपन फसल कुछ देरी हो गया है, तो अपन सीधा बुवाई करें, कम अवधि में पक जाती है, ऐसे किस्मों का चयन करें, ऐसे फसलों का चयन करें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी चाहे धान खरीदी हो, चाहे इस योजना का लाभ लेना हो, तो हमको अभी कृषक उन्नति योजना के लिए एकीकृत कृषि विभाग की एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना है। पंजीयन कराने की तिथि अभी है 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक
1: अच्छा अच्छा
0: पंजीयन होगा, ये
1: बढ़िया।
0: समय होगा,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो वो किसान अवश्य करा ले। और इसी साथ ही हमारे पिछले वर्ष बहुत सारे किसानों का एग्रीस्टेक फार्मर आईडी बन गया है, लेकिन अगर यदि किसान जो छूट गए हैं, जिनका नहीं बना है, वो तत्काल ही मतलब एग्रीस्टेक पंजीयन अवश्य रूप से करा लें। ये
1: अच्छा अच्छा
0: आगे हमारे धान खरीदी के लिए भी इस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है।
1: अच्छा अच्छा
0: इसके साथ ही जो पहले कुछ छूटे थे, जहां जैसे अधिया रेघा वन
1: हाँ
0: पट्टा कोटवार किसान, जो उनको पिछले वर्ष ये एग्रीस्टेक फार्मर आईडी के लिए छूट थी,
1: अच्छा
0: लेकिन ऐसे किसानों को भी इस वर्ष अनिवार्य कर दिया है
1: अच्छा
0: फार्मर
1: अच्छा
0: आईडी।
1: अच्छा
0: तो मेरा
1: अच्छा
0: सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि वो एकीकृत किसान पोर्टल और ये एग्रीस्टेक पोर्टल में अभी पंजीयन अवश्य
1: अभी
0: कराएं।
1: पंजीयन कराही तभी योजना के लाभ ले पाही,
0: हाँ
1: यू बात
0: पंजीयन
1: है
0: कर,
1: ना भाई?
0: जी।
1: तो बहुत बढ़िया जानकारी दे आप मन हमारे स्टूडियो में आया। अच्छा विषय रही सब है कृषक उन्नति योजना, धान के बदला आने फसल, ये विषय में जानकारी दे हमारे स्टूडियो में आया। बेरा वक्त में सने जानकारी देते रही। आज जो जानकारी दे विस्तार जानकारी दे कर बर श्रीमती नीलमा कोरी जी, आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी सुने कृषक उन्नति योजना धान के बदले अन्य फसल, श्रीमती नीलिमा कोरी, सहायक संचालक कृषि कार्यालय, संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर। इनका से गोट बात करते हैं महंगू भैया। और भाई आज के जब बिलासपुर के तापमान देखी तो अधिकतम 27.0 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम है 24.0 डिग्री सेल्सियस। एक सूचना है कार्यक्रम संबंधी किसान भाई हो, प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार संध्या 7:30 ले फोन इन आधारित कार्यक्रम प्रसारित करे जाते हैं। मैं किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए के लिए विशेषज्ञ के लिए फोन में सवाल पूछ के समाधान पाते। अही कड़ी में गुरुवार दिनांक 9 जुलाई 2026 के स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री जयंत साहू उपस्थित रही। एखल सुबह 10:30 ले 11 बजे तक सवाल पूछे के विषय है जैव नियंत्रण कारकों को खरीफ फसलों में उपयोग एवं महत्व। और सुबह 11 बजे ले 11:30 के जन विषय है जैव उर्वरकों का खरीफ फसलों में उपयोग एवं महत्व। इन विषय ले संबंधित समस्या और जिज्ञासा का समाधान पाए के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026, एसटीडी कोड है 07752। ये कार्यक्रम के प्रसारण ये रिकॉर्डिंग के 9 जुलाई और 10 जुलाई संध्या 7:30 ले 8 बजे तक आप मन इला सुन सकत हो। और भाई सलाम यही कहबो को किसान भाई हो, आप मन जिन किसान भाई के धान के थरहा तैयार हो गई है उमन ने लगाए बदेरी झन करो, काहे जितेक जल्दी लगा हो उतके जल्दी आप मन के जिन फसल ल समय मिलही जेखर से उखर विकास होही। और जल्दी जल्दी ये खेती किसानी के जिन काम है, कतको किसान भाई मन के जैसे धान पहली बोहे जिन माँ बाढ़ा थे ओला निंदवाओ के बाद फिर ब्यासियों करे बार फिर पानी भरही तो उका कर सकत हो। अभी बरसात के बेरा है, साग भाजी है, खेती किसानी जिन करें है, बारीक कोला खेत ले उजरत है, ऐसा बेरम बढ़िया जोत फांद के ओला सड़ा के जल्दी तैयार करो खेत ला और आगू खेत धान लगाए के या जिन भी फसल बोना चाहत तो होकर तैयारी करो। पशु मन की बात करबो तो पशुधन में बरसात के बेरा में खूब रोग रहिया थे उखर चेत करो, मंगसा माछी बाढ़ते खल ले घर में उखर धुआं करो जेखर से मंगसा माछी लोला बचाओ। स्वास्थ्य संबंधी बात करबो तो आप मन बरसात के बेरा में खान पान विशेष चेत करो, काहे ऐसा बेरा में हमन के रोग राय है आनी बानी के पकड़ते जेखर से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाते, जिन बेरा खेती किसानी के काम हमला करना है वो बेरा अपन शरीर ला स्वास्थ्य ला बढ़िया बना के रखना है। और चेत करबो कि भाई बरसात के बेरा में अहिरू बिछरू के बहुत प्रकोप आते तो घर के तीर आस पास में लाइट प्रकाश के बढ़िया व्यवस्था करो। अब एक संग देखो आज के कार्यक्रम ले जाए के बेरा हो गए, तो दव विदा जीवन भैया ला ग्राम सभा कार्यक्रम ले जाए के जय जोहार।

ग्राम सभा अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम चल पढ़े लजाबो। प्रायोजक हैं कमलेश्वर साहू, जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा।

नमस्कार श्रोताओं, मैं कलेश्वर साहू जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं शाला प्रेस उत्सव के इस दौर में सरकारी स्कूलों के कुछ बातें। बदल रहा है देश हमारा, बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, अब हर बच्चे के सपने को मिल रहे हैं पंख अनुकूल। आज के सरकारी स्कूल पुराने जमाने वाले सरकारी स्कूल नहीं रहे, सरकार के विशेष प्रयासों से अब इन स्कूलों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। आज हमारे सरकारी स्कूल हाईटेक और आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। आइए नजर डालते हैं उन प्रमुख सरकारी योजनाओं पर जो आपके बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए तैयार की गई है। शिक्षा का अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को बिल्कुल मुफ्त और विश्वसनीय शिक्षा दी जा रही है, कोई फीस नहीं, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं। सत्र शुरू होते ही हर बच्चे को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, वर्क बुक और स्कूल ड्रेस दी जाती है ताकि पढ़ाई में कोई रुकावट न हो। सरकार अब स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदल रही है, जहां स्कूल लैब, स्मार्ट क्लासरूम और खेलकूद की आधुनिक सुविधाएं हैं। यह आपको पीएम श्री स्कूल और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय जैसे विद्यालय में सुविधाएं प्रदान की जा रही। बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए हर दिन स्कूलों में गर्मा गर्म पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मध्यान्ह भोजन के रूप में दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत छात्राओं को मुफ्त साइकिल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आवासीय सुविधाएं और उच्च शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति और नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, प्रयास विद्यालय, सैनिक स्कूल, उत्कृष्ट योजना, सरकारी विद्यालयों में प्रवेश के अवसर, जो गरीब से गरीब बच्चों को भी देश के शीर्ष स्तर पर चमकने का मौका देते हैं। सुखद आश्चर्य यह भी है कि आज ग्रामीण अंचल के मध्यम और निम्न वर्ग के विद्यार्थियों सैनिक स्कूलों में अध्ययन करने में रुचि ले रहे हैं। कुछ स्कूलों में इन प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराए जाते हैं। जैसे दोस्तों, हमारे जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा में शाम 4 बजे छुट्टी के बाद बिल्हा और बिल्हा के आसपास के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी तरह से निःशुल्क कराई जाती है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक, ये शिक्षक देश में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके आते हैं। वे उच्च शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं और बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हैं। जितना अनुभव और योग्यता सरकारी शिक्षकों के पास है, उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। यही नहीं, सरकारी स्कूल में बच्चों को रटने के बजाय अनुभव आधारित शिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जिससे बच्चे स्वयं करके सीखते हैं और स्वयं करके सीखा हुआ ज्ञान हमेशा मन मस्तिष्क पर स्थायी छाप छोड़ जाते हैं। बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सीखने को कैसे सीखना है, इसके लिए भी तैयार किए जा रहे हैं। बच्चों के बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत मिशन चलाए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल का उद्देश्य यह भी है कि 21वीं सदी के अनुरूप कौशल विकसित करना, तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच, रचनात्मक कौशल,

समग्र विकास करना है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियां, विभिन्न सामग्रियां जैसे जादुई पिटारा, एफएलएन किट जैसे सहायक सामग्रियों की उपयोग किए जा रहे हैं। मेरी अपनी मानना है कि सरकारी स्कूलों में निर्मित जन भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, जिसमें महिलाओं की सहभागिता को नकारा नहीं जा सकता। पालक, शिक्षक और बालक का यह त्रिकोण तभी प्रभावी होगा जब इसका मूल केंद्रक बिंदु शिक्षा होगा। वस्तुतः सरकारी स्कूलों में नवाचार से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बाल मनोविज्ञान की नवीनतम सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए वर्तमान समय के मांग के अनुरूप सीखने की नई और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि आज की परिस्थितियों एवं पर्यावरणीय आयामों से समवाय करते हुए आजकल के बच्चे तेज और बुद्धिमान होते जा रहे हैं। यह उन्नत भविष्य का महत्वपूर्ण संकेत है, जिसमें शिक्षक के सशक्त भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सरकारी स्कूल की एक और विशेषता यह है कि यहाँ अध्ययन बच्चों को स्वतंत्र, भयमुक्त और उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल वातावरण मिलता है, जो उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास में सहायक है। फिर देर किस बात की, भारी भरकम फीस, डोनेशन और महंगी किताबों के बोझ तले खुद को क्यों दबाना, जब आपके अपने टैक्स के पैसे से आपकी सरकार आपके बच्चों के लिए बेहतरीन इंतजाम कर रही है। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाकर आप न सिर्फ अपने पैसा बचाते हैं, बल्कि अपने बच्चे को एक ऐसा माहौल देते हैं जहां वह समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखता है। आइए आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्कूल में जाइए, वहां की व्यवस्था देखें और गर्व के साथ अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराइए। याद रखिए, शिक्षित बच्चा, सशक्त परिवार और यही है आत्मनिर्भर भारत का आधार। खिड़की खोलो पढ़ाई की, कसम खाओ देश की भलाई की।

0: अभी हम प्रस्तुत कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम चल पढ़े ल जावो। प्रायोजक थे कमलेश्वर साहू, जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए एक सूचना। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 9 जुलाई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री जयंत साहू उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय है होगा जैव नियंत्रक कारकों का खरीफ फसलों में उपयोग एवं महत्व, और सुबह 11 बजे से 11:30 का विषय होगा जैव उर्वरकों का खरीफ फसलों में उपयोग एवं महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 9 जुलाई 2026 और 10 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और

0: किसी का हवा महल, 22 करोड़ की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
2: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
5: FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं। पेश है रजनीगंधा।

श्रोताओं, आज 6 जुलाई है और आज ही के दिन जन्म हुआ था रणवीर सिंह का, जो भारतीय फिल्म उद्योग के बहुत लोकप्रिय और ऊर्जावान अभिनेताओं में से एक हैं। जी हाँ, आज ही के दिन 1985 में इनका जन्म मुंबई में अंजू और जगजीत सिंह भवनानी के सिंधी परिवार में हुआ था। रणवीर सिंह के दादा विभाजन के दौरान कराची से मुंबई चले आए थे। इनका पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है, जिसमें बाद में इन्होंने अपना उपनाम भवनानी हटा लिया क्योंकि ये इन्हें काफ़ी लंबा लग रहा था।

बचपन से ही रणवीर अभिनय, नृत्य और मंच प्रदर्शन करने का शौक रखते थे। वे स्कूल और कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने अमेरिका के इंडियाना विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान भी उनका सपना अभिनेता बनने का ही था। भारत लौटने के बाद उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया और लंबे समय तक ऑडिशन देते रहे। शुरुआत में उन्हें कई बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और यही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। साल 2010 में उन्हें बैंड बाजा बराती में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिला। इस फिल्म में उनकी शानदार अभिनय क्षमता को दर्शकों ने दिल से सराहा।

पहली ही फिल्म के लिए रणवीर को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसके बाद रणवीर सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में लुटेरा, गोलियों की रासलीला, रामलीला, दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सिम्बा, गली बॉय, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी शामिल है। पद्मावत में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का नकारात्मक किरदार निभाया, जिसमें उनके अभिनय की दर्शकों ने काफ़ी प्रशंसा की, जिसके लिए उन्हें क्रिटिक्स का सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

रणवीर सिंह हर किरदार के लिए खुद को पूरी तरह बदल लेते हैं। 1916 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी में उन्होंने मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव का दमदार अभिनय किया। रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और मेहनत है। वे हर फिल्म के लिए महीनों तक तैयारी करते हैं। वे अपने किरदार को समझते हैं और उसके अनुसार ही बोलने, चलने और रहने का अभ्यास करते हैं। इसी कारण से उनके अभिनय में वास्तविकता दिखाई देती है।

रणवीर सिंह का पहनावा और फैशन हमेशा चर्चा का विषय रहा। वे अलग अलग तरह के कपड़े पहनने से कभी नहीं हिचकिचाते। वे आलोचनाओं से डरने की बजाय अपनी अलग पहचान बनाने में विश्वास रखते हैं। 2018 में रणवीर सिंह और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण परिणय सूत्र में बंध गए। दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय जोड़ी मानी जाती है।

रणवीर सिंह ने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी शामिल हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने लाखों युवाओं को अपने सपने के पीछे मेहनत करने की प्रेरणा दी। उनके जीवन से कई बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कीजिए, असफलता से कभी मत डरिए। हर असफलता कुछ नया सिखाती है। अपने व्यक्तित्व पर विश्वास रखिए, दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाइए, और सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बने रहना बहुत आवश्यक है। हाल में ही आई उनकी फिल्म धुरंधर में भी उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा।

0: और इसी के साथ रजनीगंधा से ही सुजाता राय को आज्ञा दीजिए। रजनीगंधा अभी हम प्रस्तुत कर रहे थे, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। रात के 8:45 होने को हैं। समाचारों का अनुप्रसारण थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने

0: देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरि ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
4: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
5: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

0: मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई ये 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया।

0: Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in the round of 16 match at Arlington in US tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे, माफ कीजिएगा, दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 9:15 होने को हैं। थोड़ी देर में हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।
2: के साथ ही
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आपके लिए इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं गाइड फिल्म का गाना। आवाज मोहम्मद रफी की है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है एसडी बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं कोहिनूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद।

एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। राजा मेहंदी अली खां के बोल, संगीतकार ओपी नैयर।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हसरत जयपुरी का लिखा हुआ और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी ने गाया है। फिल्म का नाम लाल पत्थर।

0: लाल पत्थर फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का कार्यक्रम आपके लिए संपन्न होता है।
1: यह है विविध भारती। आज के फनकार प्रोग्राम सुनिए थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम जरी हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं 2 दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षत कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहाँ पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। मेरे पिताजी और माताजी वहाँ काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रही थी। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
0: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
1: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में।

0: परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पूना में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना असीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं अपने डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो असीत सेन साहब एक दिन मिल गए, और मुझे याद आया कि तो मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, हम 24 दिन में ख़त्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को

निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था और उस जमाने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ नहीं था ज्यादा। डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूँ, क्योंकि जिंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौटकर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादा मुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे, तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तो गलत जगह पे पॉज लेता है, ये गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर असित सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोल रहा है उट पटांग, लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो। और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूं मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई। मनोखी रात्रि

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस जमाने में भी ज्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी. मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी दिलचस्पी थी मेरी. मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर. ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए. ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज्यादा आसान है. पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे, वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है. जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था, वो प्लेस किया करते थे उस जमाने में, और जो उससे मेरा तलफ्फुज ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज ठीक हुई. और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूं मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज के जरिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूं.

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

इस दिल की मंजिल तो तय है, जहां दिलदार का हसीन साया है। तेरे जलवों में गुम हैं आंखें, तुझे देखें या जमाने को, दिल इसी में भरमाया है।

दिन रात इसी सोच में डूबा है दिल कि कैसे मिलें और कब मिलें उनसे, और मिलने पर बस यही सोचने लग जाता है दिल कि अब क्या कहें उनसे।

बड़े खूबसूरत हो, हसीन हो, हमने तो कह दिया जहां से, ए यार करते रहेंगे तेरी तारीफें हैं जब तक ये सांसें।

में गूंज रहे हैं तेरे मेरे उल्फत के अफसाने। खुश हैं ये जमीन और ये आसमान, लगे हैं मुस्कुराने।

0: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 11 बजने को हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से

0: प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए तीन सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia